0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज सख संवत 1948 के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तदनुसार 2 अगस्त 2026 आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।

स्वयं से बात करना मन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अतः कम से कम अपने लिए रोज आधा घंटा अवश्य निकालें। भले ही आपको लगता हो कि आप अपने बारे में बातचीत करने के लिए मुद्दे खोज नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना समय जरूर निकालें। जब आप स्वयं से एक स्पष्ट सरल बातचीत करते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं। एकांत मिलते ही आप स्वयं से बातें करें, यह एक तरह का स्वस्थ मनोविज्ञान है। इससे आपको इस बात का सच्चा ज्ञान मिलता है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। इससे आपको एकाग्रता खोजने में भी मदद मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से आप खुद के नियंत्रण में आ जाते हैं। स्वयं से पूछें, बार बार पूछें कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। इस बारे में पता लगाने का रहस्य यही है कि आप खुद से प्रश्न पूछें और स्वयं से इसका जवाब भी दें, क्योंकि आप स्वयं ही अपने गुरु हैं।

0: जीवन सौरभ।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है हार का महत्व। सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पर्यावरण संरक्षण और कानून पर जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत आप सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है टेरिटोरियल आर्मी। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज का विषय है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। सुबह 10:30 पर पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती के अवसर पर आज सुनिए आजाद हिंद कार्यक्रम का विशेष अंक। सुबह 11 बजे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा और 11:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का 8वां भाग सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 179 से वाचन। ऋषि हैं लोपा मुद्रा, अगस्त्य मैत्रावरुणी, अगस्त्य शिष्य ब्रह्मचारी, देवता हैं रति, छंद है त्रिष्टुप और बृहति।
3: पूर्वी रहम शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तो रुषसो जरयंती ही मीनातिश्रियम जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीर वृषणो जगम्युः। देवी लोपा मुद्रा कहती हैं, हम विगत जीवन के अनेक वर्षों से उषा काल सहित दिन रात श्रमनिष्ठ तपरत रहे हैं। वृद्धावस्था शरीरों की क्षमताओं को क्षीण कर देती है, इसलिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की दृष्टि से समर्थ पुरुष ही पत्नियों के समीप जाएं। ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंत साकम देवे भीरवदन ऋतानि ते चिदवासुर नह्यन्तमापुः समूनु पत्नीर वृषभिर जगम्युः। पूर्वकाल में जो सत्य की साधना में प्रवृत्त ऋषि स्तर के व्यक्ति हुए हैं, जो देवों के साथ सत्य बोलते थे, उन्होंने भी संतानोत्पत्ति का कार्य किया, अंत तक ब्रह्मचर्य आश्रम में ही नहीं रहे। उन श्रेष्ठ समर्थ पुरुषों को पत्नियां उपलब्ध कराई गईं। नम्रशा श्रांतम यदवंती देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव जया वेदत्र शतनीथ माजिम यत सम्यंचा मिथुना वभ्यजाव। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि हमारा अब तक का तप बेकार नहीं गया है। देवता श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के कारण हमारी रक्षा करते हैं, अतः हमने विश्व की सारी स्पर्धाएं जीत ली हैं। हम दंपति यदि अब उचित ढंग से संतान उत्पन्न करें तो इस जीवन में 100 वर्षों तक जीवन की चुनौतियों में विजयी होंगे। नदस्य मारुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित लोपा मुद्रा वृषणम् नी ऋणाति धीरमधीरा धयति श्वसंतम्। लोपा मुद्रा नदी के प्रवाह को सब ओर से रोक लेने वाले संयम से उत्पन्न शक्ति को संतान प्राप्ति की कामना की ओर प्रेरित करती हैं। यह भाव इस शारीरिक स्वभाव अथवा उस कर्तव्य बुद्धि या किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ता है। श्वास का संयम रखने वाले समर्थ धीर पुरुष अधीरता को नियंत्रण में रखते हैं। इमं नु सोम मंतितो हृत्सु पीत मुपब्रुवे यत सीमागाश्चक्रमा तत्सु मृडतु पुलुकामो हि मर्त्यः। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद शिष्य के भाव हैं कि सोम औषधि रस जो विशेष रूप से है उसके निकट जाकर भावना पूर्वक उसका पान करते हुए वह प्रार्थना करता है। मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं वाला है, यदि मेरे मन में कोई विकार आया हो तो यह सोम अपने प्रभाव से उसे शुद्ध कर दे। अगस्त्य खनमानः खनित्रैहि प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः उभौ वर्णा वृषिरुग्रह पुपोष सत्या देवेश्वाशिशो जगाम। उग्र तपस्वी अगस्त्य ने शोध क्षमता से नए नए शोध कार्य करते हुए संतान उत्पन्न करने वाले तथा तप द्वारा शक्ति अर्जित करने वाले दोनों प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों का पोषण किया और इस प्रकार देवताओं के सच्चे आशीर्वाद को प्राप्त किया।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 179 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। आइए शुरुआत करते हैं भक्ति गीतों के क्रम की।

कुछ लोग उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो उनके पास नहीं है या उनकी नहीं है। ऐसी स्थिति में तनाव बना रहता है। जो चीज हमारी नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए।

किसी काम से डरना नहीं चाहिए। डर की वजह से जब तक हम किसी काम से बचने की कोशिश करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती।

दूसरों के बारे में सोच विचार करने से बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने काम पर दें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी और जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। दूसरों के लिए गलत विचार रखने से अपना तनाव बढ़ता है।

बड़े लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो ज्ञान, अनुशासन, संयम और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। इनकी वजह से बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है और इन गुणों के अभाव में हमारा मन लगातार इधर उधर की बातों में उलझा रहता है और हम सफलता से दूर रह जाते हैं।

हमारे आसपास कुछ लोग शुभचिंतक हैं, तो कुछ लोग आलोचक भी हैं। हम काम करेंगे तो आलोचना तो होगी ही, इसीलिए आलोचनाओं से डरे नहीं। आलोचनाओं में छिपी सलाह को समझकर अपने काम में सुधार कर लेंगे तो मुश्किल लक्ष्य भी पूरा हो सकता है।

समस्या के बारे में सोच विचार करते रहेंगे तो परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। समाधान के बारे में सोचेंगे तो समस्याओं के हल भी आसानी से मिलते जाएंगे।

जो लोग अपने समय की कदर नहीं करते, वे दूसरों के समय की भी कदर नहीं करेंगे। समय बर्बाद करने वाले लोगों का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सांध्यकालीन सभा में भक्ति संगीत शाम 5:10 से आप एक बार फिर सुन पाएंगे।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर केंद्रित है।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान रसायन शास्त्री, उद्यमी और शिक्षक थे। आचार्य राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता ही नहीं, रसायन उद्योग के संस्थापक भी थे। सादा जीवन और उच्च विचार वाले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि शुद्ध भारतीय परिधान में इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। आचार्य राय की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट के प्रकाशित होने पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखा था कि लिपिबद्ध करने के लिए संभवतः प्रफुल्ल चंद्र राय से अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र किसी और का नहीं हो सकता। आचार्य राय भारत में केवल रसायन शास्त्री नहीं, आधुनिक विज्ञान के भी प्रस्तोता थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के खुलना जिले के ररूली कतिपरा गांव में 2 अगस्त 1861 को हुआ। उनके पिता हरिश्चंद्र राय संपन्न गृहस्थ और फारसी के विद्वान थे। अंग्रेजी शिक्षा की ओर उनका आकर्षण था, इसलिए उन्होंने अपने गांव में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया। इसी स्कूल में प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की।

प्रफुल्ल जब 12 साल के थे तो दूसरे बच्चे परियों की कहानी सुनते थे, लेकिन वे गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की जीवनियां पढ़ते थे। रसायन शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन के व्याख्यान सुनने के लिए जाते थे। इसके बाद विज्ञान के विषयों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी मेहनत और अध्ययन के बल पर उन्होंने एफए के साथ इंग्लैंड के एडिनबरा विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप परीक्षा पास की और 1882 में वे बीएससी के छात्र बनकर एडिनबरा गए। इसी विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हुए उन्होंने 1887 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद स्कॉलरशिप पाकर वे वहीं पर एक साल तक शोध करते रहे। सन 1888 में जब वे भारत लौटे तो यहां रसायन का उच्च अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। एक वर्ष के अंतराल के बाद उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंसी कॉलेज के रसायन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे तब उन्होंने देखा कि उनसे कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों और कहीं अधिक वेतन पर कॉलेज में नियुक्त थे। उन्हें जब इस अन्याय का पता चला तो उन्होंने शिक्षा विभाग के तत्कालीन अंग्रेज डायरेक्टर से इसके प्रति विरोध दर्ज किया। तब अंग्रेज डायरेक्टर ने व्यंग करते हुए कहा था कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते। शायद इन तीखे शब्दों का ही प्रभाव था कि राय ने आगे चलकर वर्ष 1892 में 800 रुपए की अल्प पूंजी से अपने रहने के कमरे में विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया, जो कंपनी आज भी करोड़ों का व्यापार करती है। इसी से प्रेरणा लेकर देश में इस तरह के अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ।

प्रोफेसर राय पहले भारतीय थे जिन्हें किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राय एक समर्पित कर्मयोगी थे। उनके मन में विवाह का विचार कभी नहीं आया और पूरा जीवन उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक कमरे में काट दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में कार्य करते हुए उन्हें तत्कालीन महान फ्रांसीसी रसायन शास्त्री बर्थेलॉट की पुस्तक द ग्रीक एल्केमी पढ़ने को मिली। उन्होंने बर्थेलॉट को पत्र लिखा कि भारत में भी अति प्राचीन काल से रसायन की परंपरा रही है। बर्थेलॉट के आग्रह पर डॉक्टर राय ने नागार्जुन की पुस्तक रसेंद्र सार संग्रह पर आधारित प्राचीन रसायन के विषय में एक लंबा लेख लिखकर उन्हें भेज दिया। बर्थेलॉट ने इसकी एक अत्यंत विद्वतापूर्ण समीक्षा जर्नल डे साइंस में प्रकाशित की, जिसमें आचार्य राय के कार्य की प्रशंसा की गई। इससे उत्साहित होकर आचार्य ने अंततः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का लेखन किया, जो विश्व विख्यात हुई और जिसके माध्यम से प्राचीन भारत के विशाल रसायन ज्ञान से समस्त संसार पहली बार परिचित हुआ और आश्चर्यचकित रह गया। 1912 में इंग्लैंड के अपने दूसरे प्रवास के दौरान डरहम विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें अपने विश्वविद्यालय की मानद डीएससी उपाधि प्रदान की। रसायन के क्षेत्र में आचार्य ने 120 शोध पत्र प्रकाशित किए। मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट नामक यौगिकों के प्रथम विरचन से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर राय ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया था और पारद नाइट्रेट नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1896 में उन्होंने ही तैयार किया। इसके बाद से ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने इस यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए और कई महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं को सुलझाया। उन्होंने अमोनियम, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेटों के संबंध में भी महत्वपूर्ण खोजें की और एमाइन नाइट्रेटों को विशुद्ध रूप में तैयार करके उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पूरा विवरण दिया। उन्होंने ऑर्गेनोमेटैलिक यौगिकों का भी विशेष रूप से अध्ययन कर कई उपयोगी तथ्यों का पता लगाया और पारद, गंधक और आयोडीन का एक नवीन यौगिक तैयार किया तथा दिखाया कि प्रकाश में रखने पर इसके क्रिस्टल्स का रंग बदल जाता है और अंधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग में वापस आ जाता है। सन 1904 में बंगाल सरकार ने उन्हें यूरोप की विभिन्न रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए भेजा तो विदेश के विद्वानों और वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। संयमित जीवन जीने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की मृत्यु 83 वर्ष की उम्र में 19 जून 1944 को हुई। वे भारतवासियों के लिए हमेशा वंदनीय रहेंगे।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, मैं हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर केंद्रित था।
0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है हार का महत्व। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी ज्योति पांडे।
2: जी, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, मैं हूँ ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे हार के महत्व की।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों, अब आप कहेंगे हार का भी कोई महत्व होता है? हमने जब देखा है, हमने जब सुना है, तो बात जीत की हुई है, सक्सेस की हुई है। फेलियर, असफलता, हार भी कोई बात करने की चीज है। कोई होगा जो कभी हारना चाहे? हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी हार का अनुभव जरूर किया है, हार या असफलता का। मैं अपनी बात बताऊं तो कितनी ही बार मैं क्लास में, टेस्ट में, एग्जाम में फेल हुई, वह हार थी। कई कंपटीशन में भाग लिया, वहां भी सेलेक्ट नहीं हुई,

0: छोटी छोटी हार या असफलता छुपी हुई है। जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है, छोटे छोटे कदम लेता है तो गिरता है। हर कोई हो, आप हो, मैं हूँ या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसे हार मान लेंगे? तो क्या चलना छोड़ देंगे? कभी नहीं। कहते हैं जिंदगी में सक्सेस का मजा लेने के लिए हार बहुत जरूरी होती है। हार आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। थॉमस एल्वा एडिसन जब उन्होंने बल्ब बनाया तो उससे पहले पता नहीं कितनी बार असफल हुए, और किसी ने उनसे पूछा कि आपने हिम्मत नहीं हारी जब आप असफल हुए? उन्होंने हंसकर कहा, मैंने केवल सक्सेस ही देखा है, मैंने सीखा कि क्या क्या चीजें हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं करती। तो माने तो हार का जीवन में महत्व है। अब दुनिया में हर कोई इस चीज को नहीं समझता, इसलिए हम सब कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं, कहीं हार ना जाएं, कहीं असफल ना हो जाएं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा हमारे साथ? आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना? सारे लोग केवल कछुए के जीतने की बात करते हैं। हर कहानी जो हमने पहले सुनी होगी, चाहे वो लोमड़ी की हो जो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, कि वो कोशिश करती रही और फिर यह कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे थे। मैं इस कहानी में ये देखती हूँ कि लोमड़ी ने कोशिश तो की, और देखा जाए तो हार जैसी शायद ही कोई चीज़ दुनिया में होती हो। हार का हम मतलब क्या लेते हैं? हार का मतलब लेते हैं कि हम उस चीज़ को जो चाहते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम सोचते हैं हमारी हार हो गई। हमें जितने मार्क्स चाहिए थे एग्जाम में वो मार्क्स नहीं आए। हम किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, तो हम समझते हैं हमारी हार हो गई है। लेकिन हार होती नहीं है। जब भी आप कोई काम करते हो उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो, और शायद हार से ये सीखते हो कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? ये कहानी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। एक बार क्या हुआ कि एक फादर अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने, उसका नाम केशव था, क्लास में टीचर के पास गए। अब केशव पढ़ने लिखने में शायद उसका ज़्यादा ध्यान रहता नहीं था, क्लास में मस्ती, इधर उधर घूमना, और हर बार केशव की माँ उसे समझा के कहती, बेटा पढ़ लिया कर, जिंदगी में करेगा क्या आगे, सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। वो हंसता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती तो हम में से जैसे कई लोग होते हैं, मन नहीं लगता था, कभी टीवी देखने लगता, कभी कुछ खाने लगता। अब टाइम आ गया था एग्जाम के रिजल्ट का, और जैसा आप सबको पता है कि जब इम्तहान का रिजल्ट आता है तो माँ बाप को बुलाया जाता है। उस दिन सुबह सुबह पिताजी तैयार हो गए, केशव का हाथ थामे कि चलो रिजल्ट लेके आते हैं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन केशव को कोई टेंशन नहीं था, वो टेंशन लेने वाले लोगों में से था ही नहीं। क्लास में जब पहुंचे तो काफी भीड़ थी, सारे बच्चे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड टीचर से ले रहे थे, सारे पेरेंट्स उनको गले लगा रहे थे, कितना अच्छा किया है, कितने अच्छे नंबर आए हैं, अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब जब केशव की बारी आई तो टीचर ने केशव के पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा। टीचर का ही दिल धड़क रहा था कि ये रिपोर्ट कार्ड कैसे उनके पिताजी को दे। नंबर बताऊं? मैथ्स में 100 में से 20 नंबर, इंग्लिश में 100 में से 24 नंबर, हिंदी में 30 नंबर मिले थे, साइंस में 100 में से 14 नंबर मिले थे, ड्राइंग में ग्रेड अच्छा आया था। उसने धीरे से रिपोर्ट कार्ड केशव के पिता के आगे कर दिया। केशव के पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा, रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा। ये नंबर लेकर वो घर जाएंगे तो केशव की मम्मी का क्या हाल होगा? उन्होंने कितनी मेहनत की थी केशव को पढ़ाने में। केशव ने पिताजी की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि नहीं भाई, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ है। उसने पिता की आंखों में दुख देखा। जब वह रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर निकले तो एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई, केशव भैया, केशव भैया, ये लो अपनी पेंसिल। और उसने पेंसिल केशव के हाथ में रख दी। अंकल, जब मेरे पास पेंसिल नहीं होती है ना, तो केशव भैया अपनी पेंसिल मुझे दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए केशव रोज घर से पेंसिल लेकर जाता है, वो पेंसिल देकर दूसरों की मदद करता है। पिताजी थोड़ा आगे चले, एक आदमी दिखा। अरे केशव बेटा, तुम जो रोज कुत्ते को रोटी खिलाते हो, देखो कितना बेहतर हो गया ये कुत्ता, पहले कितना दुबला पतला था। केशव के पिता को बात समझ में आई कि इसलिए केशव अपनी माँ से ज्यादा रोटियां बनवा कर ले जाता है, क्योंकि वो रोटियां कुत्ते को खिलाता है। थोड़ा और आगे चले तो एक पड़ोस वाले अंकल जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा, बेटा तू रोज दवाई लाता है मेरी और रोज पूरे के पूरे पैसे गिन कर वापस करता है, जीता रह बेटा, जीता रह। पिता को समझ में आया कि इसलिए केशव को स्कूल से आने में थोड़ी देर होती है। केशव के पिता घर पहुंचे, माँ ने पूछा, कैसा रहा रिजल्ट? रिपोर्ट कार्ड देखा तो सब्जेक्ट्स में तो नंबर कम थे, पर जिंदगी में जो चीजें जरूरी हैं, लोगों पे दया, लोगों की सहायता करना और जानवरों की रक्षा करना, उनको खाना देना, उसमें केशव के नंबर बहुत बहुत बहुत ज्यादा थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप किसी एक चीज में हार गए हैं, जीवन के बहुत से पहलू होते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, पर आप गाना अच्छा गा लेते हो सकता है आपके मैथ्स में मार्क्स कम आते हों, पर आप दूसरों की सहायता करते हो। तो जब भी कभी आप हारें, जब भी कभी आपको ये लगे कि जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है और आपको हार महसूस हो रही है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे कर पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप वो क्या कर पा रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। हार हमेशा अकेली नहीं होती। जब भी कभी आप हारें तो एक चीज ध्यान रखिए कि हार कभी फाइनल नहीं होती है। हार केवल सफल मार्ग तक पहुंचने का केवल एक रास्ता होती है। और कहते भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तब तक आप हार ही नहीं सकते। आपने हैरी पॉटर किताब का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत चर्चित किताबों में से एक है। इस हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके राउलिंग, उनको कितनी बार वो अपनी किताब लेके गई लोगों के पास छापने के लिए और सबने मना कर दिया। तो क्या वो हार मानकर बैठ गई? उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वह कोशिश करती रही और फिर एक दिन हैरी पॉटर दुनिया की सबसे चर्चित किताब बन गई। अमिताभ बच्चन की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अमिताभ बच्चन जी का जीवन अगर आप कभी पढ़ें तो फिल्मी दुनिया में उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था। उनको पिक्चरें नहीं मिलती थी, लोग कहते थे ये इतने लंबे हैं, उनको कास्ट नहीं करते थे लोग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने उनकी प्रतिभा देख ली। तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी? हार तब होती है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करना छोड़ दें। वह आपने कविता सुनी या पढ़ी होगी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार गिरती है और फिर चढ़ती है, लेकिन वो दाना ले जाना नहीं छोड़ देती। तो करना क्या है, हमको केवल कोशिश करते रहना है, हर बार देखना है कि पिछली बार हमने क्या ऐसी भूल की थी, कौन सी ऐसी छोटी सी चीज की थी कि जो हम सफल नहीं हो पाए, और फिर उस चीज पे ध्यान देनी है। मान लीजिए आप कभी स्टेज पर गए, माइक पकड़ा और जो आप तैयार कर कर आए थे आप बोलना भूल गए, आप घबरा गए, आप उतर कर आए और आपको लगा कि मैं तो हार गया हूँ, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं असफल रहा। लेकिन अगर आप इस चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचें तो शायद अगली बार आप वो चीज़ें करके जाएंगे जो आपको बोलने में फ़ायदा दे। तो शायद अगली बार आप वो सब चीज़ें तैयार करके जाएंगे जो आप पहली बार नहीं कर पाए। जैसे छोटी सी चीज़ है कि स्टेज में जाने से पहले 2-3 बार डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना जिससे आप नर्वस ना हो, या फिर 2-3 बार जिन जगह आप अटके हों उन चीज़ों को और ध्यान से पढ़ना, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप मैथ के एग्जाम में, मान लीजिए मैं इसलिए बार बार मैथ कह रही हूँ क्योंकि मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मान लीजिए आपको मैथ का कोई सवाल नहीं आता है और आपके कई स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में मेरी गलती हुई है, दोबारा उसको जा सकते हैं या कोई और दूसरा तरीका अपना सकते हैं याद करने का, समझने का, तो बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो कुछ लोग होते हैं जो दुनिया जिनको देखती है कि ये कभी कोई गलती ही नहीं करते, ये तो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको देख के लगता होगा कि शायद इनमें दिमाग ज़्यादा है या इनमें काबिलियत ज़्यादा है। हो सकता है कि उनमें दिमाग ज़्यादा हो सकता है कि उनमें काबिलियत ज़्यादा हो सकता है कि वो चीज़ें 2 बार में कर पाएं जो कोई दूसरा 4 बार में करे, पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप कोशिश करते रहें और कर ना पाए। एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, उस लड़की की कहानी जो कभी कोई गलती करती ही नहीं थी। सारे लोग स्कूल में, उसका नाम वृंदा था, उस नाम से नहीं जानते थे, वह जानते थे ऐसी लड़की जो कभी गलती नहीं करती। परफेक्ट काम होता था उसका, सुबह उठती थी, अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी, दोनों मोजे पहनती थी, पानी की बॉटल लेती थी, अपना टिफिन अच्छे से बैग में रखती थी, उसने क्लास में होमवर्क किया होता था, वो क्लास में सब चीज ध्यान लगा के सुनती थी, टीचर को गुड मॉर्निंग करती थी, जब शांत होने को बैठा जाए, बोला जाए, तो शांत होके बैठती थी क्लास में। माने कोई गलती नहीं, परफेक्ट स्टूडेंट। सारे घर में लोग भी उसे कहते थे वृंदा तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। वृंदा कोई गलती नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी कि सारा काम मुझे ठीक ठाक तरीके से ही करना है। कभी हंसती नहीं थी, उसका सारा दिमाग लगा रहता था कि अब इस काम को परफेक्ट ढंग से बिल्कुल ठीक से कैसे किया जाए। वहीं पर उसका छोटा भाई बंटू, बंटू से कोई काम ठीक से नहीं होता था। पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता था, रिमोट बिस्तर के नीचे रह जाता था। जब स्कूल पहुंचता तो देखता मोजे दूसरे अलग अलग पहने हुए हैं। होमवर्क अगर हिंदी का कर लिया तो इंग्लिश का भूल जाता था। क्लास में हंसता ही रहता था। और वृंदा बिल्कुल चुपचाप। एनुअल फंक्शन वाले दिन वृंदा बहुत नर्वस थी। उसको एक सोलो सॉन्ग यानी एकल गीत गाना था। सबको पता था वृंदा ने बहुत मेहनत की होगी, वो गलती तो कर ही नहीं सकती। बंटू उसको पेड़ बनाया गया था क्योंकि लोगों को लगता था पेड़ थोड़ा बहुत हिल भी गया तो चल जाएगा। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सारे स्कूल के पेरेंट्स बैठे हुए थे और वृंदा हाथ में माइक लेके स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, कहीं से एक चूहा आके तार के पीछे और भड़ाम, वृंदा स्टेज में गिर गई। वृंदा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई काम उससे गलत होगा या कोई काम वो कर नहीं पाएगी। वो थोड़ी देर तक खड़ी हुई, तभी बंटू जो पेड़ बना हुआ था चलता चलता आया और बोला, वृंदा दीदी उठो। और सारा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज गया। वृंदा भी हंसने लगी, वह पहली बार हंसी थी। अब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में किसी भी छोटी चीज को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वह पहली बार हंसी थी और वो भी अपनी हार पर। तो एक चीज बताऊं, जिस दिन आप अपनी हार पर हंसना शुरू कर देंगे, जीवन की परेशानियां वैसे ही कम हो जाएंगी। और एक और तरीका बताऊं आपको, जब भी कभी आप किसी चीज में असफल हों तो अपने आप से वैसे ही बातें करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड रेस में हार गया तो आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार और कोशिश कर लेना, अरे तू दौड़ा तो अच्छा था ना। तो यही चीज आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी। हो सकता है कोई कमी रह गई हो सकता है एक दो बार करने के बाद मुझे ये चीज आ जाए। तो जिंदगी में हार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कई चीजें सीखते हैं। तो बच्चों, जब हम हार पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जरा आंखें बंद करिए और उन अनुभवों को याद करिए कि जब आप कभी हारे हों। आंखें बंद करिए, हो सकता है कोई क्रिकेट मैच हो सकता है स्टेज पे कुछ बोलने में, या कि कभी क्लास में असफल हुए हों, या खाना बनाना सीखा हो, घर में कोई नई डिश बनानी सीखी हो और आप उसमें असफल हो गए हों, या म्यूजिक क्लास में या किसी कोचिंग में। सारी चीजों को याद करिए। बड़ा खराब लगता है ना जब हारते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम सबसे कमतर हैं, हमें कोई चीज आती नहीं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। हमको अपनी ये सेल्फ टॉक बदलनी है। जब भी आप कभी हारें तो 3-4 चीजों पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं कर सकता था, या जिस पर मैं ध्यान देता तो शायद बेहतर कर लेता। आगे मुझे ऐसी कौन सी स्किल या खूबियां डेवलप करनी है अपने आप में कि मैं जब वो काम करूं तो उसे अच्छे से कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस असफलता से क्या सीखा। आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मान लीजिए कि आप एक मैच हार गए तो आप की क्या क्या सीखे रही होंगी। हो सकता है आपने सीखा हो कि टीम वर्क जरूरी है, हो सकता है आपने सीखा हो कि शांत रहकर खेलना जरूरी हो, या कि धैर्य रखना जरूरी है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। आप ध्यान देंगे तो आप उन सब चीजों को ढूंढ पाएंगे जो आपको और बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक हो जाएं। मान लीजिए आपने मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती थी जो आपकी इस सफलता में बाधक हुई। हो सकता है आप नर्वस हो रहे हों, तो जैसा मैंने पहले बताया, गहरी सांसें लेकर स्टेज पर जाएं। हो सकता है अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार नहीं 20 बार प्रैक्टिस करते तो आप स्टेज पर और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। सीखे आपकी हो सकती हैं, लेकिन सीखे होती जरूर है। हर हार में, हर असफलता में कुछ न कुछ सीख हमें जरूर मिलती है जो हमें जिंदगी में हमेशा काम आती है। वो कहते हैं ना, जीत खुश करती है पर हार समझदार बनाती है। तो समझदार तो सबको बनना है ना, तो हार में कभी भी दुखी नहीं होना है। हाँ, जरूर हमें थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन हमें उन ख्यालों को सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है, जब तक कि हम वो चीज़ थोड़े और बेहतर ढंग से ना कर पाए। वो कछुए की बात याद है ना आपको? कछुआ तो बेचारा इतना धीमे धीमे चलता था, पर उसने खरगोश से बाजी मार ही ली क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। बस हमें यही करना है, जिंदगी आसान हो जाएगी। हार के सामने हार नहीं माननी है, बस यही कहना चाहूंगी आपसे आज। तो प्यारे दोस्तों, आशा करती हूं कि आज आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि जीवन में हार का कितना महत्व है और हारना क्यों जरूरी है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज का विषय था हार का महत्व। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया ज्योति पांडे ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है।
3: रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और कानून। इस विषय पर पर्यावरण संरक्षण और कानून विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव से मनीषा चतुर्वेदी चर्चा करेंगी।
1: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
1: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
2: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
1: जी।
2: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो। इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की, अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
2: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है। हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर हैं।
1: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
2: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था क्योंकि वो सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास एक मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके। वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं, उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है, अब लोग सजग हो गए।
1: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
2: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
1: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
1: जी।
2: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
1: जी।
2: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल इक्विटी
1: जी।
2: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, और बच्चों की क्या, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं?
2: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है, और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है
1: जी।
2: भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है
1: जी। आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
2: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेशा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी, अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं, जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देखकर ही वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहां पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
1: जी।
2: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
1: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
2: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं, आज की तारीख में बहुत सिंपल आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
1: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्वजिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
2: एकदम सही बात,
1: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
2: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
1: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
2: एकदम सही।
1: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
2: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं
1: जी।
2: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें, ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
2: एकदम।
1: अगर हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दांव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े, लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
2: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है, बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें।
1: जी,
2: स्वयं लिखे और भेजे।
1: जी, पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
2: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि ये माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया।
1: जी।
2: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है, कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है, लोग मुझे शंकरगढ़ की पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
1: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहाँ खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
2: जरूर।
1: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
2: आपका भी धन्यवाद और आभार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। चर्चा का विषय था पर्यावरण संरक्षण और कानून। जानकारी दे रहे थे विषय विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव और इनसे बातचीत कर रही थी मनीषा चतुर्वेदी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8
2: मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है टेरिटोरियल आर्मी। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: श्रोताओ, हर सुबह जब हम उठते हैं तो उठते हैं एक लक्ष्य को लेकर कि आज हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। फिर चल पड़ते हैं अपने उन गंतव्यों की ओर, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो हमने अपने भविष्य को लेकर देखे हैं या जो हमारे वर्तमान को संवार रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, हमारे बीच ही हम में से ही कुछ लोग थोड़ा अलग हटकर सोचने वाले होते हैं, जो होते तो हैं हमारी ही तरह समाज का एक हिस्सा, लेकिन जब देश को जरूरत पड़े तो एक वर्दीधारी सैनिक भी बन जाते हैं। कौन है ऐसे लोग जो समाज के सामान्य नागरिक जीवन को जीते हुए भी भारतीय सेना के एक वीर सिपाही की भूमिका भी निभा लेते हैं? तो श्रोताओं, ये हैं भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी के सतर्क और शूरवीर सैनिक, जो कि जब जब भी देश को उनकी जरूरत हो देश की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि किस तरह हमारे देश की टेरिटोरियल आर्मी काम करती है और किस तरह हम भी इसमें शामिल होकर देश सेवा के सपने को पूरा कर सकते हैं और इसमें

0: कहा जी, रिजर्व मिलिट्री फोर्स होती है जो कि वॉलंटियर्स के द्वारा, मतलब जिसमें जो भी उसमें सर्विस करते हैं
1: जी।
0: तो टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर भारतीय को एक मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि वो देश की सेवा यूनिफॉर्म में कर सके
1: जी,
0: वर्दी देश की सेवा तो हर एक कोई करते हैं
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: वर्दी पहन के
1: हाँ।
0: देश की सेवा कर सके
1: जी।
0: तो टेरिटोरियल आर्मी जो होती है वो इंडियन आर्मी की जो रेगुलर आर्मी है एक तरह से उसका ही हिस्सा है। और इनका जो मेन काम होता है
1: जी।
0: वो होता है कि जो रेगुलर आर्मी है जब जरूरत पड़ती है देश को तो उनको वो स्टैटिक ड्यूटीज जो होती हैं उससे रिलीव करके आगे, मतलब वॉर में अपना जो है योगदान देने के लिए रिलीव कर रहे सकती है
1: जी।
0: और बाकी जो काम बॉर्डर के ऊपर होते हैं उसके लिए मतलब रिलीव कर सकती है।
1: यानी सर जब सेना को सीमा पर आवश्यकता है तब जब सेना के जो पुराने ठिकाने हैं या जो पहले जो कार्य कर रही थी, जो कर्तव्य कर रही थी, उनमें अब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है,
0: जैसे हमारे एमिनेशन डंप्स पे ड्यूटीज होती हैं
1: हाँ जी।
0: या जैसे अगर सीआई हम काउंटरसेंस जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उसमें रोड ओपनिंग पार्टीज लगती हैं
1: जी।
0: और गैरिसन ड्यूटीज होती हैं, तो ऐसी काफी सारी महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती हैं
1: जी।
0: ब्रिज गार्डिंग वगैरह होता है तो जिसके लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और इनसे जो है सेना को बहुत बड़ी मदद मिलती है, ये सेना का एक तरह से अभिन्न अंग है। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मदद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: अच्छा।
0: कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मतलब इनकी सहायता ली जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आती है वहाँ पे भी मतलब जो है ये लोग कार्य करते हैं। अब इसके बारे में क्या है कि डीए जो होती है वो रेगुलर जॉब नहीं होती है, इसलिए क्या है कि जो डीए में जो लोग सर्व करते हैं टेरिटोरियल आर्मी में उनके लिए एक मैंडेटरी होता है कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हो
1: जी।
0: आर्मी और पुलिस को छोड़ के, मतलब
1: अच्छा,
0: आर्मी
1: अच्छा,
0: पुलिस सीएफ को छोड़ के या सेमी गवर्नमेंट जॉब में हो या पीएसयू में हो या कहीं प्राइवेट भी हो सकता है, कोई वो नहीं
1: का है। पेशा हो उसका,
0: हाँ, मतलब वो उनकी जो रोजी रोटी है
1: हाँ, जी।
0: वो उनके लिए मतलब वो कहीं ना कहीं कार्यरत होने चाहिए,
1: यानी उनके जीवन निर्वाह का कोई ना कोई साधन इसके अलावा होना चाहिए।
0: इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है,
1: कोई व्यवसाय भी हो,
0: कोई व्यवसाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक बड़ा अच्छा मौका सबके लिए होता है
1: जी,
0: जो भी मतलब चाहते हैं
1: जी।
0: इसमें जो इंडियन सिटीजंस हैं जिनकी की एज ग्रुप 18 to 42 के बीच में होती है,
1: अच्छा जी,
0: वो एलिजिबल होते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए।
1: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि यदि किसी को टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं, हम कब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कौन व्यक्ति इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं?
0: कोई भी इंडियन सिटीजन
1: जी
0: ज्वाइन कर सकता है। पहले ये सिर्फ मेल्स के लिए होता था, अब 2019 में जो है इवन फीमेल्स had started coming, तो अभी पहले initially they had joined as officers, as a officer जो join कर रहे थे, but even अब soldier के तौर पे भी join कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके अलावा क्या होता है कि और जो सर्विस के क्राइटेरियास होते हैं जैसे फिजिकल फिटनेस जो है उस लेवल की होनी चाहिए, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो मेडिकली फिट होना चाहिए, उनकी हाइट वगैरह जो है, वेट जो भी रहता है, वो सब रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि हर साल
1: जी
0: उनको जो है ट्रेनिंग के लिए आना होता है।
1: अच्छा।
0: और अगर उनको गवर्नमेंट बुलाती है, एम्बॉडीमेंट होता है, तो कंपल्सरीली दे हैड टू पार्टिसिपेट इन इट। ये शर्तें जो होती हैं
1: जी जी,
0: अगर ये मंजूर होती हैं तो उसमें कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है।
1: अच्छा।
0: इसमें आप मतलब एज ए ऑफिसर, एज ए जेसीओ, एज ए ओआर
1: जी जी
0: जो है मतलब ओआर मतलब अदर रैंक्स
1: जी जी
0: ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सर्विस दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जब ये डीए में जब आप सर्विस कर रहे होते हैं तो आपकी जो पेज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं
1: जी,
0: वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इंडियन आर्मी में।
1: अच्छा, मतलब समकक्ष होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता?
0: कोई अंतर नहीं होता है। इवन यूनिफॉर्म भी वो लाइव ग्रीन ही पहनते हैं, आर्मी की ही यूनिफॉर्म पहनते
1: अच्छा,
0: हैं
1: जी।
0: इसके बारे में हम और जिक्र करेंगे आगे चल के।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो जैसे किसी ने अगर एज ए कैप्टन कोई सर्विस कर रहा है तो उसकी पे पर्क्स जो है, अलाउंसेस हैं, वो सारे के सारे उसको एज ए कैप्टन ही मिलते हैं। लेकिन इसमें एक फर्क ये होता है, ये पेमेंट, ये जो पे है उसको सिर्फ वो एक्टिव सर्विस में जितने दिन रहते हैं, जैसे अगर उन्होंने वहां पे 6 महीने सर्विस करी है तो वो 6 महीने के लिए ही मिलेगी
1: जी, जितनी सेवा की अवधि होगी उतना ही पेमेंट होगा,
0: बिल्कुल वैसे ही होगा। और अगर जैसे वो साल में जब अपनी ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उस अवधि में भी उनको जो उस रैंक के ऊपर जिस पे वो ट्रेनिंग करने गए हैं उसकी पूरी पेमेंट वैसे ही मिलती है जो आर्मी में ऑथराइज्ड है। ये एक मतलब इनका प्रिंसिपल रहता है। और टीए जो होती है, बटालियंस होती है, इनका ना एम्बॉडीमेंट होता है। एम्बॉडीमेंट मतलब होता है जरूरत पड़ने पे बुलाया जाके मतलब वो यूनिट रेस होती है। अगर वो जरूरत नहीं होती है तो इवन इनका डिसएम्बॉडीमेंट भी हो जाता है। दैट्स व्हाई बोलते हैं कि परमानेंट जॉब नहीं है,
1: इसीलिए एक दूसरे व्यवसाय का होना आवश्यक
0: है ना। तो जब एम्बॉडीमेंट डिसएम्बॉडीमेंट होता है उसमें भी क्या होता है, उस दौरान भी जो न्यूक्लियस होता है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक
1: संगठन का केंद्र
0: जो है वो यूनिट का वो तो मेंटेन रहता है।
1: अच्छा।
0: और जो टीए बटालियंस होती हैं इनको रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं कर्नल्स होते हैं वो कमांड करते हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो सर मैं यही पूछ रही थी कि इसका जो टेरिटोरियल आर्मी का जो संगठन है वो किस तरह का होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है।
0: टीए जो है ये जो बनी थी ये 10 सितंबर 1948 को टीए बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में।
1: अच्छा।
0: उसके तहत जो है एग्जिस्टेंस में आई थी
1: आजादी के बाद
0: जी। और जो फर्स्ट टीए कैंप था वो उसका इनॉग्रेशन किया था हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, श्री सी राजगोपालाचारी सर जो है उन्होंने 9th अक्टूबर 49 को किया था। तो इसलिए 9th अक्टूबर को जो है टीए डे मनाया जाता है, टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है। और इसकी जो जरूरत महसूस हुई थी क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आजादी के मिलते ही 47 में अक्टूबर में जो है पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, पर्सन वॉर हुआ था, तो उस समय एक रियलाइजेशन आया था कि हमारे पास एक रिजर्व फोर्स होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: जो कि समय पे अगर मतलब रेगुलर आर्मी को मदद करने के लिए आ सके। दैट वाज द बेस,
1: मुख्य उद्देश्य यही था
0: जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बनी। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टर जनरल टीए टेरिटोरियल आर्मी होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं वो इसको कमांड करते हैं।
1: तो सर इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है
0: और ये इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्मी, ठीक है। और जो ये है इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स।
1: अच्छा।
0: डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
1: अच्छा।
0: और इसमें फिर इसके नीचे जो है ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
1: अच्छा जी।
0: तो इनके जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं जनरली मतलब दे आर अलाइन विद द कमांड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के जो 5 कमांड्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एंड सेंट्रल कमांड। वैसे हमारे पास 7 हैं, नॉर्थ वेस्टर्न भी है ना, और उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग कमांड भी। तो लेकिन ये 5 जो कमांड्स हैं तो जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ ही ग्रुप हेडक्वार्टर्स लोकेटेड होते हैं। और ये होते हैं कि ताकि इनका कमांड कंट्रोल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए, फॉर रिक्रूटमेंट के लिए 4 भागों में मतलब 4 जोन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया।
1: अच्छा।
0: जैसे हमारा मध्य प्रदेश जो है वो जोन 2 में आता है।
1: अच्छा।
0: तो मतलब जोन वाइज जो है रिक्रूटमेंट होता है।
1: अच्छा। भर्ती जोन के हिसाब से
0: होती है। तो वो उसके लिए उन्होंने इसको 4 जोन में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम उनकी बटालियंस के बारे में बात करें, टीए की बटालियंस जो होती है, टीए की बटालियंस जो होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक डिपार्टमेंटल यूनिट्स हम बोलते हैं उनको, एक उनको बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स। आप बताइए डिपार्टमेंटल यूनिट क्या हो सकती हैं?
1: डिपार्टमेंटल सर इसका ये मतलब हो सकता है कि जो अलग अलग विभागों के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं वो विभागीय हो गई।
0: बिल्कुल सही बोला आपने। जो टीए बटालियंस जो डिपार्टमेंटल है जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या कोई स्पेशल टास्क के लिए बनाई गई है रहती हैं, उनको हम डिपार्टमेंटल बोलते हैं। जैसे एक बटालियन इनकी होती है ऑयल सेक्टर की।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी जो क्रूशियल फंक्शनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो है टीए बटालियंस है, जो 801 इंजीनियर रेजिमेंट है जो आगरा में है, 811 इंजीनियर रेजिमेंट है ONGC की जो बड़ौदा में है, उसके अलावा 414 एसी बटालियन है मार्केटिंग की जो कामटी में है नागपुर के पास। तो ये जो है स्पेसिफिकली ऑयल एंड ऑयल रिफाइनरीज ऑयल सेक्टर के लिए काम करने के लिए है। तो इसका जो विचार बना था आई थी रिक्वायरमेंट हुई थी क्योंकि कहते हैं कि 1980 में असम में जो है अनरेस्ट हो गया था, सिविल अनरेस्ट हुआ था, तो उस समय जो हमारी वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बंद हो गई थी, जिससे कि देश को बहुत भारी नुकसान हुआ था, कहते हैं 5,000 करोड़ का नुकसान, से भी ज्यादा का नुकसान हुआ
1: जी।
0: तो 1990 में तो 5,000 करोड़ बहुत ज्यादा मायने रखते थे
1: जी।
0: तो फिर उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कभी देश के ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो असेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होनी चाहिए,
1: उनकी सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए, टेरिटोरियल,
0: ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये उनके ऑपरेशंस के लिए,
1: अच्छा, संचालन के लिए जी।
0: तो इसीलिए इसमें जो लोग भर्ती भी होते हैं, जो वॉलंटियर्स भी आते हैं, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं।
1: अच्छा सर, मतलब उस संस्थान के कार्यकलापों की जानकारी रहती
0: है, जो टेक्निकल पीपल हैं वही होते हैं।
1: हाँ जी।
0: जैसे अगर ONGC है, 811 इंजीनियर रेजिमेंट है, तो उसमें आपको वो लोग मिलेंगे जो ONGC का कार्य अच्छे से जानकारी रखते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: ये इसलिए इनको स्पेसिफिकली डिपार्टमेंटल बोला जाता है। अब जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का भी जो है टीए बटालियन होती
1: अच्छा,
0: है
1: हाँ,
0: तो अभी तो फिलहाल उनके जैसे एक ही बटालियन है, एक जमाने में उनके पास 9-9 बटालियन होती थी टीए बटालियन, एंड दे हैव डन वंडरफुल जॉब। मतलब इन टीए बटालियन ने ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे जो है 65-71 में, तो रेलवे की फंक्शनिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फौज के लिए,
1: बिल्कुल सामान रसद पहुंचाना,
0: एग्जैक्टली, मतलब एवरीथिंग,
1: सब कुछ,
0: तो उस समय जो है टीए बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया था इनके लिए। तो अभी तो फिलहाल जैसे इनके पास एक टीए बटालियन है जो जमालपुर में है, बिहार में, अदरवाइज दे हैड द मोर एंड दे हैड द कैपेबिलिटी, जरूरत पड़ने पे और भी मतलब रेज कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा एक और, जैसे अभी मैंने बोला था कि स्पेशल टास्किंग के लिए ये होते हैं, तो हमारे देश में जो है एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए एसोसिएटेड इन्फेंट्री बटालियन के साथ जो है रेजिमेंट है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का है, तो इन लोगों ने मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलके स्टेट्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाई है।
1: हाँ जी सर, जैसे ही वो शिवालिक पहाड़ियों पर भी इनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहा।
0: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, आप
1: वृक्षारोपण वन संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका है सर,
0: बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो फर्स्ट यूनिट थी ये 82 में रेज हुई थी, और जैसे आपने जो बताया वो उसी के लिए रेज हुई थी शिवालिक, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जो है वापस मतलब डेवलप करने के लिए रेज हुई थी। और आज जो है 10 ETFs काम कर रही हैं इंडिया में, एंड दे आर रियली परफॉर्मिंग एन एक्सेलेंट जॉब। मतलब ट्री प्लांटेशन का, जो बहुत ही रगेड एरियाज हैं, इकोलॉजिकली डिग्रेडेड एरियाज हैं, माइनिंग्स वगैरह के कारण जो है उसमें लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं थ्रू आउट द कंट्री,
1: मिट्टी का संरक्षण,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा इनका काम रहता है। एंड इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जब शुरू में भी देखा गया था कि मतलब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर किया था, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए भी एक उनको लगा था कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है।
1: हाँ,
0: और बहुत अच्छा देश सेवा का
1: अच्छा अवसर है,
0: अच्छा अवसर है
1: जी।
0: तो कहते हैं कि अभी तक इन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा प्लांटेशन किया है,
1: क्या बात है जी।
0: और अप्रोक्सीमेटली जैसे कि दे हैड कवर्ड ऑलमोस्ट 1,80,000 एकर्स ऑफ लैंड, तो
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट है,
0: बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये अभी भी कर रहे हैं। ऐसे ही रिसेंटली अगर आपको याद होगा, गंगा स्वच्छ गंगा मिशन शुरू हुआ था
1: जी।
0: उसके लिए भी एक यूनिट 2018 में बनी थी, जिसको कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये यूनिट भी जो है ये 100% मतलब जो है ESM एक्स सर्विसमैन की है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा
1: जी।
0: उन्होंने जो है इनको ट्रेनिंग दी पूरी कि रिवर वाटर कैसे टेस्ट करते हैं, उसकी सफाई कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। तो इसमें ये लोग कार्य में दक्ष होके ये कार्य कर रहे हैं
1: जी।
0: इनका बड़ा बहुत बड़ा योगदान है।
1: हाँ जी सर, ये तो दोहरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, और जो आर्मी से रिटायर्ड जो लोग हैं या जो सैनिक है, हमारे पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कहते हैं, उनको फिर से वापस एक रोजगार।
0: बिल्कुल, बहुत सही है। और इसके अलावा ये लोग जो है रिवर बैंक्स के साथ साथ जो है प्लांटेशन भी करते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो काफी अच्छा काम है उनका। तो ये तो देखे जाए तो ये है डिपार्टमेंटल यूनिट्स जो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। अब दूसरी होती है नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स। नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो हमारी रेगुलर आर्मी जो है जैसे हमारी यूनिट्स होती हैं उन जैसी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो इन्फेंट्री के साथ एसोसिएटेड है, बटालियंस जो है टी की वो इन्फेंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, बट उसके अलावा भी हैं यूनिट्स होती हैं। इस समय जो है टीए के साथ जो इन्फेंट्री रेजिमेंट का एसोसिएटेड है कम से कम 31 बटालियंस हैं ऐसी। अच्छा, ये लोग सेम ड्रेस पहनते हैं, जैसे मैं मद्रास रेजिमेंट में था तो हमारी जो तो टीए बटालियन 710 टीए एंड 122 तो दोनों जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो मद्रास रेजिमेंट की ही यूनिफॉर्म पहनती हैं।
1: तो फिर सर भेद कैसे पता चलता है, अंतर कैसे पता चलता है?
0: हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं है, लाइक इट इज सेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, आर्मी के हमारे हिस्सा है। तो जो हमारी इन्फेंट्री की जो हमारी रेजिमेंट है जैसे मद्रास रेजिमेंट है तो उसमें जब हमारी जितनी यूनिट्स है उसके साथ हम टीएस को भी अपने यूनिट ही मानते हैं, यूनिट एज ए इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। अगर हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है बटालियन इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन तो टीए भी उसमें भाग लेती है।
1: बस यही मेरा प्रश्न था सर कि अंतर कहाँ आता है?
0: अंतर यही आता है कि जो बताया आपको कि ये वॉलंटियर फोर्स है और ये रेगुलर आर्मी है, ये प्रॉपर सर्विस में है, बाकी लोग वो लोग जो है वॉलंटियर्स होते हैं।
1: लेकिन जितने समय रहेंगे वो बिल्कुल सेना का हिस्सा रहेंगे,
0: सेना का हिस्सा रहेंगे। जितने समय रहते हैं वो अपनी बटालियन के साथ वैसे ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनको कमांड भी उनकी रेगुलर आर्मी। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे अब मद्रास रेजिमेंट है जैसे या मराठा रेजिमेंट है या राजपूताना राइफल्स है तो उन्हीं के ऑफिसर जनरली, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली उन्हीं के ऑफिसर टीए बटालियन भी कमांड करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब सिकलाई का ऑफिसर जाके मद्रास रेजिमेंट की टीए नहीं कर सकता, लेकिन 99% टू मेंटेन द कोहेसिवनेस, ठीक है, वो ऐसा रखा जाता है। तो इसी तरह से इंजीनियर रेजिमेंट्स के साथ जो है इस समय मतलब तीन बटालियन से एसोसिएटेड है। एक अभी नए कंसेप्ट पे उसको बोलते हैं होम एंड हर्थ, सन ऑफ सॉइल। ये जो कंसेप्ट होता है जो अभी हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं और इसके अलावा जो है हमारा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो चलते हैं इसमें ये देखा गया है कि जो ये लोकेशंस हैं जम्मू एंड कश्मीर हो गया तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इस यूनिट्स में शामिल किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये सिर्फ और सिर्फ वहीं के लोग उसमें शामिल होते
1: हैं, वहीं के क्षेत्र के।
0: हाँ, इसलिए उनको सन ऑफ द सॉइल बोलते हैं,
1: मिट्टी के बेटे,
0: मिट्टी के बेटे। तो मैंने खुद मतलब इसमें मैंने सर्विस नहीं करी है लेकिन मेरे साथ एक बटालियन रही है। फर्स्टली क्या होता है कि उनको उस एरिया के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उनको भाषा के बारे में ज्ञान होता है,
1: ये सबसे महत्वपूर्ण।
0: दूसरा क्या है कि उनको क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पूरी तरह से तैयार रहता है, जब वो पहाड़ी के इलाके हैं तो उनको उनको पहाड़ों में मतलब ऑपरेशन का तो बचपन से वहां रहे हुए हैं, इसलिए उनको सन ऑफ सॉइल्स बोलते हैं। उनको रास्तों के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होती है। इट हैज बीन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी अप्रिशिएटेड कंसेप्ट जो जिसको किया था। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो यूथ है उस इलाके में जो यूथ है स्पेशली दे गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी,
1: लोकल लोगों को रोजगार
0: मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। और उनको जो है मतलब एक तरह से फायदा ये रहता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलते हैं जो है,
1: ये भी सही बात है।
0: तो इट इज ए नेशन बिल्डिंग, ठीक है, एंड मतलब जो इस एरिया के जो उनकी नॉलेज होती है, इक्विटेंस होता है, इट हैज गॉट अ ट्रेमेंडस वैल्यू, तो दे बिकम वेरी गुड सोल्जर्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये लोग काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर जो बटालियंस होती हैं वो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स कमांड करते हैं, उसके अलावा जो है सीओ के अलावा 2IC या 102 स्टाफ ऑफिसर्स जो होते हैं वो जो है रेगुलर आर्मी के होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो टीए कैडर के आते हैं। तो जो कंपनीज जनरली कमांड कर रहे होते हैं वो टीए के आपको मिलेंगे, ऑफिसर्स मिलेंगे। इसी तरह से जो है एसोसिएशन के बारे में, जो जनरली जो टीए बटालियंस होती है हमारी रेजिमेंट्स के साथ जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहती है,
1: इनको फिर ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है? यदि ये अंशकालिक है, पूर्णकालिक है नहीं है, तो फिर इन्हें ट्रेनिंग का क्या व्यवस्था होती है और किस तरह से, क्योंकि हमें फिटनेस तो हमारी एक सैनिक के तौर पर बना के रखनी है, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं?
0: देखिए, इसमें जो डिपार्टमेंटल यूनिट्स और नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं,
1: जी,
0: दोनों अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है।
1: अच्छा,
0: और ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जब कोई भी बंदा जो कोई भी भर्ती होता है टीए में,
1: जी,
0: तो उसके साथ एक शर्त ये रहती है कि आपको साल में इतने दिनों के लिए आके हमारे साथ ट्रेनिंग करना कंपलसरी रहेगा, और उस दौरान जो है साल में एक महीना दो महीना जो भी वो ट्रेनिंग का उनका शेड्यूल रहता है उसमें कंपलसरी होता है उनको उपस्थित होना, उसके लिए कंपलसरी होता है। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से फिर उनकी ट्रेनिंग होती है।
1: अच्छा।
0: तो ये तो एक होता है मतलब मेथड होता है जिसमें ट्रेनिंग होती है। बाकी क्या होता है कि 99% पीपल कीप देमसेल्फ फिट बिकॉज उनको भी तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने होते हैं हर साल जो है। अगर उनको एम्बॉडेड रहना है हिस्सा रहना है तो उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है। उसके अलावा जो कोई रेजिमेंट्स जो होती हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं अलग से वो करवाते हैं। तो वो जो भी डायरेक्टरेट होते हैं वो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं।
1: तो सर प्रतिवर्ष वो ये समय बंधा हुआ है कि वर्ष में कभी भी बुलाया जा सकता है ट्रेनिंग है तो?
0: हाँ ये होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी बताया जाता है क्योंकि इसमें एक और चीज है जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे होते हैं तो उनको अपने डिपार्टमेंट से भी छुट्टी लेनी होती है।
1: हाँ जी वही
0: तो
1: जी।
0: वो अरेंजमेंट करने के लिए ऑलरेडी उनको बताया जाता है एंड आई थिंक दे आर गिवन द चॉइस आल्सो कि आप इस दौरान से इस दौरान आ सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसमें जो है वो आके उस दौरान ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो करते हैं। जैसे मुझे याद है हमारी यूनिट ट्रिवेंड्रम में थी तो हमारे साथ एक प्रिंसिपल थे वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड मतलब वेरी एजुकेटेड पर्सन तो वो उस दौरान हमारे साथ रहे थे। तो ऐसा है वो कभी मतलब आके जो अपनी ट्रेनिंग उनको वो रहता है वो पूरी कर सकते हैं।
1: अच्छा तो सर पूरा समूह को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है या हर व्यक्ति का अलग अलग समय होता है?
0: नहीं इसमें जो प्रॉपर एनुअल ट्रेनिंग होती है उसमें तो सब लोग आते हैं एक साथ क्योंकि वो जरूरी होता है कंपल्सरी होता है। फिर कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो मतलब जैसे एक ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग है अलग जो है उन्होंने अपना कमीशन की पूरी ट्रेनिंग कर ली है। अगर उनको किसी यूनिट के साथ ट्रेनिंग करना है वर्किंग सीखने तो वो अलग से आ सकते हैं।
1: विशेष प्रशिक्षण के लिए अलग समय दिया जाता है।
0: अलग समय दिया जाता है लेकिन अगर पूरा आ रहे हैं तो जैसे साल का होता है तो 99% उनको इकट्ठा ही बुलाया जाता है।
1: जी।
0: अब ये जो बटालियंस होती हैं जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि दे आर एबल टू रिलीव द रेगुलर फोर्सेस तो उनको जो एसेंशियल ड्यूटीज के लिए जो है मौका मिलता है उनको ये सपोर्ट रहता है इनसे जो है। और टीए बटालियंस ने अभी तक जो है मतलब ऑलमोस्ट सारे वॉर्स में 62 65 71 में सब जगह पार्टिसिपेट किया है।
1: अच्छा।
0: इवन जो ओपवन श्रीलंका में हुआ था और प्रक्षक पंजाब में फिर ओपरिनो और बजरंग असम में हुए थे हर जगह पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। और अभी भी जो है एक्टिवली काफी यूनिट्स हैं जो सीआई ऑपरेशंस जेएनके में नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी भी ऑपरेशनल हैं। एंड ये भी एक मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एंड उसके कारण जो है टीए पर्सनल्स जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स से काफी मतलब उनको सम्मानित किया गया।
1: अच्छा,
0: है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए उनको अवार्ड्स मिले हैं। आई थिंक ओवरऑल दे गॉट उनको कीर्ति चक्र शौर्य चक्र और इवन वीआरसी और काफी सारे जो है अदर डेकोरेशंस से ये जो है टर्टल आर्मी सम्मानित की गई है। इस समय अगर हम देखें तो इंडिया में तकरीबन 50,000 पर्सनल्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं।
1: अच्छा क्या बात है।
0: हाँ
1: जी।
0: और आपको याद होगा काफी सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज ही हैं स्पोर्ट्स पे हैं मूवीज में हैं पॉलिटिशियंस हैं इंडस्ट्रीज में हैं जो कि टीए में सर्व कर चुके हैं।
1: खिलाड़ी लोगों के ज्यादा नाम आते हैं इसमें जैसे एमएस धोनी है कपिल देव है और एक्टर में देखे तो मोहनलाल जी हैं।
0: जी करेक्ट करेक्ट है ना मोहनलाल जी हमारे मेट्रो रेजिमेंट के।
1: हाँ जी। तो सर अब मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इसके सर्विस बेनिफिट्स क्या हैं टेरिटोरियल आर्मी में जाने के?
0: सबसे बड़ा तो सर्विस बेनिफिट यही है कि आपको यूनिफॉर्म पहनने मिलती है।
1: ये तो सही बात है सर उस वर्दी का गौरव ही एक अलग ही है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: इसके अलावा क्या है कि जब आप टीएमएस सर्व करते हैं तो उस समय जैसे मैंने पहले बोला था यू आर एट पार विद द रेगुलर आर्मी। उनको प्रमोशंस जो होती हैं उसी तरह से ऑथराइज हैं अगर वो सर्विस कर रहे हैं। जैसे आर्मी में राशन ऑथराइज है सीएसडी फैसिलिटीज है मेडिकल फैसिलिटीज है आपके लिए आपके डिपेंडेंट्स के लिए वो जब ये एम्बॉडीड होते हैं उस दौरान के लिए या जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको ऑथराइज होता है। जब ये लोग एम्बॉडीड होते हैं तो जैसे नॉर्मल आर्मी को जो लीव मिलती है लीव एनकैशमेंट होता है अकोमोडेशन होता है वो सब फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो इनको भी ऑथराइज होती हैं। जितने जैसे मेडल्स हैं अवार्ड्स हैं जो सर्विसेज को ऑथराइज है वो इनको भी होते हैं।
1: प्रमोशंस भी उसी तरह से
0: ऑथराइज है उतना ड्यूरेशन अगर आपने सर्विस किया होता है तो अगर एक जवान है अगर उसने सर्विस करी है तो उसको लांस नायक जो भी है या अफसर जिन्हें करी है तो उसको प्रमोशन मिलता है, रैंक पे डीए जो है जैसे रेगुलर आर्मी का होता है वैसे ही उनको मिलता है, स्पेशल इंक्रीमेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है इनको मिलते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसके ऊपर मिलते हैं, फिर इवन जो पेंशन होती है ऑफिसर्स गेट द पेंशन आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, जेएसयूस एंड अदर रैंक दे गेट आफ्टर 15 ईयर्स, लेकिन इसमें क्या होता है एग्रीगेट होता है जैसे टीए का, क्योंकि उनका काउंट किया जाता है एक्टिव सर्विस काउंट किया जाता है,
1: अवधि जोड़ी जाती है जब तक आपने सर्विस दी है।
0: हाँ, तो आपने जितने दिन की सर्विस दी है वो अगर आपका पीरियड पूरा हो जाता है तो दे आर एक्चुअली ऑथराइज्ड द पेंशन आल्सो, उसमें वो एक्चुअल फिजिकल सर्विस काउंट होती है, जैसे कि एक नॉर्मल रेगुलर आर्मी वाला भी करता है ना, आर्म फोर्सेस में भी जो बंदा होता है वो करते हैं, वो ऐसे ही होता है। फिर अगर उन्होंने 10 ईयर्स अगर लगातार किया होता है तो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो है उनको मतलब हाउस की फैसिलिटी मिलती है, देन ग्रेच्युटी है, एक सर्विसमैन स्टेटस होता है जो रिटायर होते हैं, है ना, जो पेंशनर्स होते हैं उस तरह से ये सब चीजें उनको मिलती हैं। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो कैश अवार्ड्स वगैरह भी देती हैं, और भी जो है उनको जॉब में भी जो है फैसिलिटीज देती हैं। बाकी जो टीए के बेनिफिट्स हैं जैसे नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं वो जो है उनको ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह के फैसिलिटीज देती हैं, और अगर कोई टीए में सर्विस करते समय उसको डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन का प्रोविजन होते हैं, अगर कोई फर्टिलिटी हो जाती है तो फैमिली पेंशन के प्रोविजन है। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब जो इंडियन आर्मी को ऑथराइज है उनको सभी ऑथराइज होता है। तो I must say that it is a wonderful opportunity for the people who falls in the bracket of 18 to 42 and who are willing to serve in the uniform, and excellent opportunity for them to avail it and become part of the territorial army. Baki to hum jitna zikr kar chuke hain usse aapko laga hi hoga ki ye bahut hi garv ki baat hoti hai, isme jo hai regular army ke sath kandhe se kandha mila ke jo hai
1: bilkul kaam karna. Bas ek antim question ye banta hai sir ki bhartiya sashastra सेनाओं के तीन भाग हैं, तो ये क्या तीनों भागों के लिए टेरिटोरियल आर्मी है?
0: नहीं, ये टेरिटोरियल आर्मी सिर्फ आर्मी में ही है।
1: अच्छा,
0: एयर फोर्स और नेवी में नहीं है।
1: तो श्रोताओं, टेरिटोरियल आर्मी के गठन का मकसद ही है देश के हर नागरिक को राष्ट्र की रक्षा का सहभागी बनाना। आपदा हो या युद्ध की स्थितियाँ, राहत हो या पुनर्निर्माण, टीए हर मोर्चे पर सेवा और साहस के साथ खड़ी रहती है। ये भारतीय सेना का वो हिस्सा है जहां अनुशासन मिलता है नागरिकता से और सेवा जुड़ती है शौर्य से, इसीलिए देश के कई प्रतिष्ठित नागरिक इस गौरवशाली बल का हिस्सा रहे हैं। सलाम है देश के टेरिटोरियल आर्मी के वीरों को जो सावधानी व शूरता के मंत्र से देश की रक्षा, सेवा और सम्मान की मिसाल बने हुए हैं। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और आपने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी, थैंक यू श्रोताओं, जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज का विषय है मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और BDL के बारे में। ये किस तरह हमारी सेनाओं की आंख, कान, तकनीकी और दिमाग बनकर देश की सुरक्षा को मजबूत करती है। रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से BEL ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: लेकिन आज एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि अगर BEL सैनिकों को तकनीकी शक्ति देती है, हाल आकाश में उड़ने वाले विमान बनाती है, तो समुद्र की विशाल लहरों पर भारत की शक्ति का निर्माण आखिर कौन करता है, कौन बनाता है वो विशाल युद्धपोत जो हजारों टन वजनी होते हैं, कौन तैयार करता है वे पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराइयों में रहकर देश की सुरक्षा करती हैं?
0: इन सारे प्रश्नों के उत्तर माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में छिपे हुए हैं। आइए चलते हैं रुचि और दादू के पास। रुचि के सवाल और दादू के उत्तर से हम और बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या है। और श्रोताओं, अब हमारी रुचि बिटिया भी सियानी हो गई है, वो कॉलेज जाने लगी है। तो आइए सुनते हैं देश के संस्थान।
2: दादू, ये आप कितनी अच्छी जगह मुझे लेकर आए हैं। ये समुद्र कितना दूर तक फैला हुआ है ना, जहाँ तक नजर घुमाओ वहाँ तक बस नीला पानी। थैंक यू सो मच दादाजी मुझे यहाँ लाने के लिए, वरना मुझे तो लगा था इस बार मेरी छुट्टियाँ यूं ही बर्बाद हो जाएंगी।
3: मुझे लगा इस बार मैं बिटिया रानी को क्यों ना एक संस्थान की कहानी सुनाने की बजाय दिखाई दूं। अब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगी तो फिर तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा हैं? अपने दादू के साथ कहीं घूमने जा पाओ।
2: अरे दादू, आप भी ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ अपने ही शहर में, आपसे कहीं दूर थोड़े जा रही हूँ।
3: वो देखो बेटा, समुद्र में दूर एक जहाज भी है।
2: कहाँ है दादू?
3: अरे वो देखो, एकदम सामने।
2: हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा। वाव दादू, कितना बड़ा शिप है। अच्छा दादू, पिछली बार आपने मुझे BEL BDL के बारे में बताया था। रडार, मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन दादाजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई।
3: कौन सी बात बिटिया?
2: ये बात कि यदि कोई युद्धपोत समुद्र में तैनात हो और उस पर BEL की तकनीक लगी हो, तो सवाल ये है कि उस युद्धपोत को बनाता कौन है।
3: भाई तुमने तो आज का पूरा विषय ही पूछ लिया, यही देखने तो आज हम यहाँ पर आए हैं बेटा।
2: सच में दादू?
3: हाँ हाँ बेटा, सच में। तो चलो आज हम ऐसे संस्थान की कहानी जानेंगे जो भारत की समुद्री शक्ति का निर्माता है।
2: और उसका नाम क्या है?
3: उसका नाम है बेटा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे संक्षेप में MDL कहा जाता है।
2: सच में दादू? आज आप MDL की कहानी सुनाने वाले हैं?
3: क्या तुम जानती हो? हाँ भाई, हम तो जमीन पे रहते हैं, फिर समुद्र की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
2: ये तो मैंने सोचा नहीं दादू।
3: देखो बेटा, भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है, और ये सब तो तुम जानती ही हो।
2: आपने पहले बताया था दादू।
3: तो ये भी याद रखो कि दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता हुआ जाता है। भारत का भी बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। तेल, गैस, मशीनें, खाद्यान्न और अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं जहाजों से ही आती जाती हैं बच्चे।
2: तो दादाजी, समुद्री मार्ग सुरक्षित ना हो तो समस्याएं हो सकती होंगी।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उनके लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाता है माझगांव डॉक।
2: अब समझी दादाजी मैं। अच्छा ये बताइए ना कि ये MDL की स्थापना कब की गई थी?
3: इसकी कहानी बहुत पुरानी है। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी।
2: सच में?
3: 18वीं शताब्दी में मुंबई क्षेत्र में एक छोटे जहाज निर्माण और मरम्मत यार्ड के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी बेटा।
2: 18वीं शताब्दी दादाजी? इसका मतलब उस समय भी जहाज बनाए जाते थे?
3: बिल्कुल, समुद्री व्यापार उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे ये यार्ड विकसित होता गया, लेकिन बेटा इसके पहले ये कई विदेशी कंपनियों के अधीन भी रहा। फिर 1934 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में संगठित किया गया।
2: तो फिर आजादी के बाद क्या हुआ?
3: 1960 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद से इसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया, भारत के लिए युद्धपोत बनाना, भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
2: यानी दादाजी, पहले ये सामान्य जहाजों पर काम करता था जो समुद्री व्यापार के काम आते थे, और बाद में युद्धपोतों का निर्माण शुरू हुआ होगा।
3: बिल्कुल बेटा, और यही बदलाव इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्ड बनाता है।
2: दादू, तभी लोग इसे राष्ट्र का पोत निर्माता कहते होंगे।
3: हाँ बेटा, क्योंकि भारत के अनेक प्रसिद्ध युद्धपोत और पनडुब्बियां इसी संस्थान में बनी हैं।
2: मतलब भारतीय नौसेना की शक्ति का बड़ा हिस्सा यही बनाया गया है।
3: बिल्कुल बेटा, लेकिन बिटिया, युद्धपोत निर्माण कोई आम काम नहीं है, क्योंकि एक आधुनिक युद्धपोत में लाखों पुर्जे, हजारों किलोमीटर तक फैली तारें, अत्याधुनिक रडार, मिसाइल प्रणाली, हेलीकॉप्टर, डेक और कंप्यूटर नेटवर्क लगे होते हैं बेटा।
2: दादू, मतलब ये समुद्र में चलता फिरता कोई शहर जैसा होता होगा।
3: एकदम सही कहा बेटा, वास्तव में आधुनिक युद्धपोत एक तैरते हुए तकनीकी नगर की तरह ही होता है।
2: दादू, माझगांव डॉक का पहला बड़ा युद्धपोत कौन सा था?
3: INS नीलगिरी।
2: और उसकी खास बात क्या थी?
3: वो आधुनिक भारत में निर्मित प्रमुख युद्धपोतों में से एक था बेटा। उसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी सहयोग से हुआ था, लेकिन उसके निर्माण ने भारतीय इंजीनियरों को युद्धपोत निर्माण की बारीकियां सीखने का अवसर दिया।
2: मतलब ये भारतीय इंजीनियरों के लिए युद्धपोत निर्माण सीखने की शुरुआत थी।
3: बिल्कुल, अक्टूबर 1968 में उसका जलावतरण हुआ बेटा, और 1972 में वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
2: दादाजी, ये जलावतरण क्या होता है?
3: अरे बुद्धू रानी, नाम से समझ नहीं आया क्या?
2: क्या दादू आप भी?
3: अरे बेटा, जब जहाज पहली बार पानी में उतारा जाता है उसे जलावतरण कहते हैं।
2: अब समझी मैं। अच्छा ये बताइए, क्या उस समय लोगों को विश्वास था कि भारत इतने बड़े युद्धपोत भी बना सकेगा?
3: हर कोई विश्वास नहीं करता था। कई लोगों का मानना था कि भारत को हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने मेहनत की, दिन रात काम किया, नई तकनीक सीखी, और जब INS नीलगिरी समुद्र में उतरा तब वो केवल एक जहाज नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था बेटा।
2: वाह दादू, इसका मतलब वो दिन किसी सपने के पूरा होने जैसा था।
3: बेटा,
2: तो फिर हमारा बिना किसी बाहरी सहयोग के बनाया गया पहला युद्धपोत कौन सा था दादाजी?
3: INS गोदावरी। इसका जलावतरण मई 1980 में हुआ बेटा, और दिसंबर 1983 में इसे नौसेना को सौंप दिया गया।
2: अच्छा दादू, इसके बाद क्या भारत ने और भी युद्धपोत बनाए थे?
3: हाँ बिटिया, नीलगिरी की सफलता ने भारतीय इंजीनियरों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय नौसेना ने देखा कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक युद्धपोत बनाने में सक्षम है, इसीलिए आगे और बड़ी जिम्मेदारियां माझगांव डॉक को सौंपी गईं।
2: दादू, ये श्रेणी क्या होती है? मैंने कहीं सुना था कि नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी।
3: बेटा, युद्धपोतों में श्रेणी का मतलब होता है एक जैसे डिजाइन और विशेषताओं वाले जहाजों का समूह।
2: अच्छा।
3: जैसे किसी परिवार के कई सदस्य एक ही परंपरा से जुड़े होते हैं, वैसे ही एक ही डिजाइन पर बने कई युद्धपोत एक श्रेणी के कहलाते हैं।
2: ओह, यानी नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी अलग अलग पीढ़ियों के युद्धपोतों के समूह थे।
3: हाँ बच्चे, और हर नई श्रेणी अपने से पहले वाली श्रेणी की तुलना में कुछ नई क्षमताएं लेकर आती थी।
2: दादू, ये गोदावरी श्रेणी की जिम्मेदारी क्या थी?
3: बेटा, नई पीढ़ी के युद्धपोत विकसित करने की। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक आधुनिक, अधिक सक्षम और अधिक स्वदेशी तकनीक से बने हों।
2: दादू, तो क्या गोदावरी श्रेणी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी?
3: हाँ बेटा, क्योंकि ये केवल एक नया युद्धपोत नहीं था बल्कि भारतीय नौसेना और भारतीय अभियंताओं के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था।
2: वो भला कैसे?
3: नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों के निर्माण में विदेशी सहयोग अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन गोदावरी श्रेणी में भारतीय नौसेना, भारतीय डिजाइनरों और अभियंताओं की भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई थी।
2: यानी भारत केवल युद्धपोत नहीं बना रहा था बल्कि उन्हें खुद भी डिजाइन करना सीख रहा था दादाजी।
3: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
2: अच्छा, और गोदावरी श्रेणी की क्या खासियत थी?
3: देखो बेटा, इन युद्धपोतों का आकार पहले की तुलना में बड़ा था। इनमें अधिक हथियार और उपकरण लगाए जा सकते थे, साथ ही इन पर दो बड़े हेलीकॉप्टर संचालित किए जा सकते थे जिससे समुद्र में उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती थी।
2: वाह दादाजी, यानी ये केवल बड़े जहाज नहीं थे बल्कि चलते फिरते समुद्री सुरक्षा केंद्र जैसे थे।
3: हाँ बेटा, इनमें बेहतर रडार, उन्नत संचार प्रणालियाँ और अनेक आधुनिक सुविधाएं थी।
2: यानी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में ये भारत की एक नई छलांग थी।
3: हाँ, नए प्रकार के युद्धपोत विकसित करने की छलांग। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक आधुनिक और अधिक स्वदेशी हों।
2: दादाजी, यानी नीलगिरी श्रेणी की तरह ही गोदावरी श्रेणी भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी।
3: बिल्कुल, इसे भारतीय युद्धपोत निर्माण की परिपक्वता का प्रतीक माना जाता है।
2: फिर
3: इसके बाद INS गंगा और INS गोमती बनाए गए। इन युद्धपोतों ने वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की बेटा।
2: दादाजी, एक बात समझ में नहीं आई मुझे।
3: पूछो पूछो बेटा।
2: क्या सभी युद्धपोतों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे?
3: हाँ बच्चे, भारत की महान नदियों के नाम पर, ताकि वे हमारी संस्कृति और शक्ति दोनों का प्रतीक बन सके।
2: अच्छा, चलिए दादाजी, और बताइए ना कि युद्धपोत और क्या क्या करते हैं?
3: देखो बेटा, जरा कल्पना करो कि समुद्र में हजारों जहाज चल रहे हैं। कुछ व्यापारिक हैं, कुछ मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन उनमें से किसी में कोई दुश्मन की गतिविधि भी हो सकती है। बस इसीलिए हमारे युद्धपोत ऐसी घुसपैठ से बचने के लिए निगरानी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, समुद्री डाकुओं से मुकाबला करते हैं और आपदा के समय सहायता पहुंचाते हैं और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते हैं बेटा।
2: मतलब हमारे युद्धपोत समुद्र के प्रहरी हैं दादाजी।
3: बिल्कुल बिल्कुल प्रहरी हैं बेटा।
2: अच्छा दादू, युद्धपोत निर्माण तो मुझे समझ में आया, लेकिन इसके बाद इस डॉक को कौन सी बड़ी परियोजना मिली है?
3: इसके बाद इसे दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व मिला बेटा।
2: विध्वंसक, ये क्या होता है दादाजी?
3: देखो बेटा, हर युद्धपोत का काम एक जैसा नहीं होता। कुछ जहाज सैनिकों और सामान को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ समुद्र में गश्त करते हैं और कुछ दुश्मन पर तेज और प्रभावी आक्रमण करने के लिए। विध्वंसक, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
2: अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर।
3: हाँ, ऐसा ही एक शक्तिशाली युद्धपोत होता है बेटा वो।
2: तो उसका मुख्य काम क्या होता है दादाजी?
3: इसका काम अपने बेड़े की सुरक्षा करना होता है, दुश्मन के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों का सामना करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं आक्रमण करना होता है। इसीलिए इसे नौसेना के सबसे सक्षम और बहुउद्देशीय युद्धपोतों में गिना जाता है।
2: यानी एक ही युद्धपोत कई तरह की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
3: इसमें अत्याधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, टॉर्पिडो, हेलीकॉप्टर और उन्नत संचार प्रणालियां होती हैं बच्चे। इसीलिए इसे समुद्र का एक चलता फिरता युद्ध केंद्र भी कहा जा सकता है।
2: वाह दादाजी, यानी दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक बनाना किसी भी शिपयार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी।
3: हाँ, जब किसी भारतीय शिपयार्ड को इतने उन्नत युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी मिलती है तो ये केवल उस संस्थान पर नहीं बल्कि भारतीय अभियंताओं, डिजाइनरों और तकनीकी क्षमता पर देश के विश्वास का प्रतीक भी होता है बेटा। अंग्रेजी में इसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये सामान्य युद्धपोतों से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है।
2: सच में? कितना शक्तिशाली दादाजी?
3: लगभग 6,700 टन वजनी। उस समय एशिया के क्षेत्र में बने सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक था बेटा, और इस श्रेणी का पहला पोत था INS दिल्ली। इसका जलावतरण 1991 में हुआ और 1997 में ये नौसेना में शामिल हो गया।
2: और उसके बाद?
3: उसके बाद INS मैसूर और INS मुंबई ये तीनों भारतीय नौसेना शक्ति के प्रतीक बने।
2: दादाजी, क्या इन पर मिसाइलें भी होती हैं?
3: हाँ बेटा, आधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, हेलीकॉप्टर और भी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ।
2: दादू, मैंने कार्वेट का नाम भी सुना है, ये बताइए ना ये क्या होता है?
3: कार्वेट छोटे आकार का युद्धपोत होता है बच्चे, लेकिन उसकी गति और कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है।
2: मतलब छोटा लेकिन ताकतवर, मेरे जैसा।
3: बिल्कुल, माझगांव डॉक ने INS खोखरी और INS कुठार जैसे कार्वेट भी बनाए बेटा।
2: और दादाजी, ये मिसाइल बोट?
3: ये छोटे लेकिन बेहद तेज युद्धपोत होते हैं। इनका मुख्य हथियार मिसाइलें होती हैं बच्चे।
2: दादू, ये कितने घातक होते हैं?
3: इतने घातक कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता।
2: वाह।
3: INS विभूति, विपुल, नाशक और प्रबल जैसी मिसाइल बोट भी माझगांव डॉक ने बनाई है।
2: दादू, क्या ऐसी कोई घटना आपको याद है जिससे हमें भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा लग सके?
3: 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर साहसिक हमला किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम है?
2: ऑपरेशन ट्राइडेंट।
3: हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पूरी दुनिया को उस समय भारतीय नौसेना की क्षमता दिखाई थी।
2: क्या उस समय भी स्वदेशी जहाजों का महत्व था दादाजी?
3: हाँ बेटा, उस युद्ध ने भारत को ये समझा दिया कि समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बाद में युद्धपोत निर्माण को और अधिक गति दी गई।
2: दादू, मुझे सबसे ज्यादा पनडुब्बियों के बारे में जानना है आपसे। वो कैसी होती हैं, किस तरह से काम करती हैं?
3: पनडुब्बी समुद्र के भीतर चलने वाला युद्धपोत है। ये पानी की सतह के नीचे कई दिनों तक रह सकती है
2: और दिखाई भी नहीं देती।
3: हाँ, इसीलिए इसे समुद्र की अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है।
2: वाह दादाजी, वाह। दादू, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिक कैसे रहते होंगे?
3: बहुत अनुशासन के साथ, क्योंकि उसमें सीमित जगह होती है बच्चे। हर वस्तु का उपयोग सोच समझ कर किया जाता है। पनडुब्बी में दिन रात का अंतर भी महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए उन कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं बच्चे।
2: सचमुच दादाजी, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
3: इसीलिए तो पनडुब्बी निर्माण दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। बिटिया, आप जब भी तुम समुद्र में किसी बड़े जहाज को देखो तो केवल उसका आकार मत देखना, उसके पीछे हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डिजाइनरों और श्रमिकों की मेहनत को भी देखना।
2: जी दादाजी, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगी। अच्छा ये बताइए कि माझगांव डॉक में काम करने वाले कितने मेहनती होते हैं?
3: बहुत मेहनती होते हैं बेटा, उनकी यही मेहनत और समर्पण राष्ट्र की समुद्री शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: दादू, माझगांव डॉक ने नीलगिरी, गोदावरी, दिल्ली, खुकरी और अनेक युद्धपोतों के माध्यम से भारतीय नौसेना को नई शक्ति प्रदान की है। ये भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की नई शुरुआत थी। आगे चलकर कई प्रसिद्ध युद्धपोत श्रेणियां विकसित हुईं। इसका मतलब है कि माझगांव डॉक का भारत को दुनिया के बड़े युद्धपोत निर्माताओं की श्रेणी में पहुंचाने में एक बड़ा और सराहनीय योगदान रहा होगा।
3: लेकिन बेटा, एक प्रश्न अभी भी बाकी है जो तुम पूछना भूल गई हो।
2: अब कौन सा प्रश्न है दादाजी?
3: वो ये कि आखिर इतना विशाल युद्धपोत बनता कैसे है? क्या इसे किसी कार की तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है?
2: सच में दादू, मैं आपसे ये वाला सवाल बस पूछने वाली थी कि एक युद्धपोत को किसी इमारत जितना बड़ा होता है, उसे आखिर बनाया कैसे जाता होगा?
3: लेकिन तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछ लिया। युद्धपोत बनाना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में गिना जाता है बच्चे।
2: इसका मतलब ये किसी एक इंजीनियर के बस की बात तो नहीं है दादाजी?
3: अरे नहीं बिटिया, एक युद्धपोत के निर्माण में हजारों लोग मिलकर काम करते हैं। नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, वेल्डर, टेक्नीशियंस, गुणवत्ता विशेषज्ञ और कई सारे वैज्ञानिक।
2: दादू, जब मैं इतने बड़े बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में आपसे सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या साधारण परिवार का कोई बच्चा भी भविष्य में ऐसे बड़े संस्थान का हिस्सा बन सकता है?
3: क्यों नहीं बिटिया, ये सभी लोग एक साधारण परिवार से ही आते हैं। दरअसल माझगांव डॉक BEL, हाल DRDO, इसरो इन सभी संस्थानों की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा ही तो हैं। यहाँ काम करने वाले ये अधिकांश वैज्ञानिक, इंजीनियर और अधिकारी कभी तुम्हारी तरह ही स्कूल में पढ़ने वाले आम बच्चे थे।
2: इसका मतलब कि मेहनत करके कोई भी यहाँ पहुँच सकता है?
3: बिल्कुल पहुँच सकता है। सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा से होकर गुजरता है बेटा।
2: समझ गई दादाजी। अच्छा ये बताइए ना कि नेवल आर्किटेक्ट क्या होता है?
3: नेवल आर्किटेक्ट बेटा जैसे कोई वास्तुकार भवन का नक्शा बनाता है, वैसे ही नेवल आर्किटेक्ट जहाज का नक्शा बनाता है। वो तय करता है कि जहाज कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना वजन उठाएगा और समुद्र की ऊंची लहरों का सामना कैसे करेगा।
2: मतलब जहाज का जन्म सबसे पहले कागज पर होता है?
3: हाँ, लेकिन पहले कागज पर होता था, अब आजकल कंप्यूटर पर बेहद आसानी से कोई भी डिजाइनर मिनटों में बना जाता है।
2: सही कहा दादाजी आपने, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है।
3: CAD, CAM इसी से संबंधित है बिटिया। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर की सहायता से किसी भी वस्तु का डिजाइन या नक्शा तैयार कर सकते हो। और वहीं पर CAM का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कंप्यूटर की सहायता से उस डिजाइन के अनुसार वस्तु का निर्माण कर सकते हो।
2: यानी दादाजी CAD और CAM में अंतर है। अच्छा इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना।
3: समझाता हूँ बच्चे। मान लो तुम एक घर बनाना चाहती हो, पहले उसका नक्शा बनाओगी, फिर उसी नक्शे के अनुसार निर्माण होगा। CAD कंप्यूटर पर नक्शा तैयार करता है और CAM उसी नक्शे के अनुसार मशीनों को निर्देश देता है, ऑर्डर देता है।
2: दादाजी इससे तो किसी भी निर्माण में गलती की संभावना बहुत कम हो जाती होगी।
3: हाँ बेटा, इसीलिए तो आज आधुनिक युद्धपोत अत्यंत सटीकता से बनाए जाते हैं।
2: और जब डिजाइन तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है दादाजी?
3: फिर आती है स्टील की बारी। विशाल स्टील प्लेटों को विशेष मशीनों से काटा जाता है।
2: ये किस तरह की मशीन होती है?
3: माझगांव डॉक में CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन जैसी अत्याधुनिक मशीन है बेटा।
2: दादू CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन, ये तो कोई कमाल की मशीन लगती है।
3: हाँ बेटा, ये वाकई कमाल की मशीन है। CNC का अर्थ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें कंप्यूटर मशीन को निर्देश देता है कि धातु या अन्य सामग्री पर कहाँ कट लगानी है, कितनी गहराई तक कट लगानी है और किस आकार में काटना है। यानी कमांड देने पर सब कुछ मशीन ही तय करती है।
2: मतलब मशीन इंसानों की कमांड पर काम नहीं करती बल्कि कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करती है।
3: हाँ बेटा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए सटीक निर्देशों के अनुसार इस मशीन से कटाई और निर्माण का काम बेहद तेज, सटीक और गुणवत्ता पूर्वक होता है। माझगांव डॉक की ये प्लाज्मा कटिंग मशीन स्टील, एल्युमिनियम और कई अन्य तरह की धातुओं को काट सकती है।
2: लेकिन दादू जहाज तो गोलाकार और घुमावदार होता है, फिर एक सीधी प्लेट से ये आकार कैसे बनता होगा?
3: बेटा यहाँ काम आती है प्लेट बेंडिंग मशीन। ये भारी स्टील प्लेटों को मोड़कर जहाज के ढांचे का आकार कर देती है।
2: यानी जैसे कागज मोड़ते हैं?
3: हाँ, सिद्धांत लगभग वही है, बस यहाँ कागज की जगह कई टन वजनी स्टील प्लेट होती है।
2: और फिर इन टुकड़ों को कैसे जोड़ते होंगे?
3: वेल्डिंग के द्वारा।
2: वेल्डिंग? हाँ, ये काम तो मैंने कई बार होते देखा है दादाजी, हमारे लोहा मार्केट की कई लोहा दुकानों पर। लेकिन दादू जहाज को जोड़ने के लिए तो ये बहुत ही सावधानी से किया जाता होगा।
3: बहुत सावधानी से किया जाता है बेटा, यदि वेल्डिंग कमजोर हो तो पूरा जहाज खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए माझगांव डॉक में सैकड़ों अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीनें काम करती हैं।
2: दादू ये तो मुझे समझ में आ गया, अब आप मुझे स्टील्थ युद्धपोत के बारे में बताइए।
3: स्टील्थ का अर्थ है बेटा दुश्मन की नजर से यथासंभव छिपा रहना।
2: दादू इतना बड़ा जहाज भला छिपाया कैसे जा सकता है?
3: पूरी तरह नहीं छिपता, लेकिन उसकी डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि रडार पर उसका संकेत बहुत कम दिखाई दे।
2: जैसे कोई जादू?
3: ये जादू नहीं है बेटा, विज्ञान है। रुचि बेटा तुमको पता है भारत का पहला स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट था INS शिवालिक, इसका निर्माण माझगांव डॉक में हुआ था।
2: दादू ये हमारी विशेष उपलब्धि थी?
3: बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया के केवल कुछ ही देश ऐसी तकनीक विकसित कर पाए थे जो इसके निर्माण में उपयोग की गई थी।
2: दादू, क्या केवल इंजीनियर ही जहाज बनाते हैं?
3: नहीं, युद्धपोत निर्माण एक टीम वर्क है। इसमें नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर, इन सबके विशेषज्ञ लगे होते हैं बेटा। फिर पाइपिंग विशेषज्ञ, गुणवत्ता निरीक्षक, डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सबसे बेहतरीन टेक्नीशियंस, ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं।
2: मतलब हर व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: हाँ, एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है और एक पूरे जहाज को डुबा सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा।
2: दादू, यदि कोई छात्र ऐसे जहाज बनाने में अपना योगदान देना चाहे तो उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए?
3: उसे पढ़ना चाहिए गणित, भौतिकी और विज्ञान की मजबूत नींव बनाना चाहिए। फिर नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय चुने जा सकते हैं।
2: दादू, क्या लड़कियां भी इस क्षेत्र में जा सकती हैं?
3: क्यों नहीं जा सकती, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती बेटा।
2: सो तो है।
3: क्यों नहीं बेटा, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती। भारत की अनेक महिला इंजीनियर युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: दादू, क्या आत्मनिर्भर भारत में माझगांव डॉक की बड़ी भूमिका है?
3: बहुत बड़ी। जब हम अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां स्वयं बनाते हैं तो विदेशों पर निर्भरता कम होती है, देश का धन बचता है, नई तकनीक विकसित होती है और हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।
2: दादू, रोजगार तो समझ में आता है मुझे, लेकिन एक डॉक यार्ड देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता होगा भला?
3: बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हो। देखो बेटा, एक युद्धपोत केवल लोहे की चादरों से नहीं बनता, उसके लिए इस्पात, विद्युत उपकरण, केबल, रडार, इंजन, कंप्यूटर प्रणालियां और हजारों छोटे बड़े पुर्जों की आवश्यकता होती है।
2: मतलब एक जहाज के निर्माण से बहुत सी दूसरी कंपनियां भी जुड़ जाती होंगी।
3: बिल्कुल, जब माझगांव डॉक किसी युद्धपोत का निर्माण करता है तो देश भर की अनेक उद्योग इकाइयों, आपूर्तिकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों को भी काम मिलता है।
2: यानी लाभ केवल डॉक यार्ड को नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र को होता होगा।
3: हाँ, सही कहा बेटा, इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, नए कौशल विकसित होते हैं और देश के भीतर ही तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ती जाती है।
2: और यदि वही युद्धपोत विदेशों से खरीदा जाए तो?
3: तब बेटा अधिकांश धन दूसरे देश की कंपनियों और उद्योगों के पास चला जाता है। लेकिन जब निर्माण भारत में होता है तो वही धन भारतीय उद्योगों, भारतीय कामगारों और भारतीय वैज्ञानिकों के विकास में योगदान देता है।
2: यानी एक युद्धपोत का निर्माण केवल सुरक्षा का विषय नहीं है दादाजी, बल्कि आर्थिक विकास का भी विषय है।
3: हाँ बेटा, यही कारण है कि माझगांव डॉक जैसे संस्थान देश की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: अब समझ में आया आपकी रुचि को कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल अपने लिए कोई निर्माण करना नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए अवसर पैदा करना भी है।
3: शाबाश, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला बच्चे।
2: दादू, युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, ये भी मुझे समझ में आया है। उसमें वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और देशभक्ति की भावना भी जुड़ी होती है।
3: बिल्कुल बिटिया, और यही कारण है कि माझगांव डॉक को राष्ट्र का पोत निर्माता कहा जाता है।
2: अच्छा दादू, क्या ऐसी कोई कहानी आप मुझे सुनाना चाहेंगे जो विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सके?
3: हाँ बेटा, कई साल पहले एक युवा इंजीनियर ने शिपयार्ड में प्रशिक्षण शुरू किया। वो एक छोटे से कस्बे से आया था। शुरुआत में उसे विशाल मशीनों और बड़े जहाजों को देखकर डर लगता था। उसे लगता था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता, कुछ ना कुछ नया करता रहता। वरिष्ठ इंजीनियरों से मार्गदर्शन लिया और कुछ वर्षों बाद वही युवक एक महत्वपूर्ण युद्धपोत परियोजना की टीम का हिस्सा बन गया।
2: मतलब दादू, आत्मविश्वास और मेहनत बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल
2: दादू, सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना।
3: अब समझी बिटिया रानी, मैं बार बार क्यों कहता हूँ हाँ? अच्छा चलो अब वापस चलें, शाम होने वाली है। भाई तुम्हारे मम्मी पापा रिसोर्ट में हमारा रास्ता देख रहे होंगे।
0: और बेटा अभी तो हमें पूरा का पूरा गोवा घूमना है।
2: समझ रही हूँ मैं आपको। रिसोर्ट में क्यों ले जाना चाहते हैं आप? आपकी चाय का वक्त भी है। वैसे दादू मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अगली बार आप किस संस्थान के बारे में बताएंगे?
3: तुम विषय चुनो और उसके बारे में बताने का काम मेरा है रुचि बेटा।
2: ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं।
3: चलो बेटा।
1: श्रोताओं, माझगांव डॉग की कहानी हमें बताती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और श्रमिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। समुद्र की लहरों पर तैरते युद्धपोत केवल जहाज नहीं होते, वे भारत की शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हमने जानकारी प्राप्त की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के संबंध में। इस कार्यक्रम को स्वर दिया दीपक निमा और भगवती सक्सेना ने। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है आजाद हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं हमारे स्वातंत्र समर की कुछ जानी अनजानी घटनाएं और क्रांतिकारी शहीदों की प्रेरक कथाएं।
2: और आपके लिए इस कार्यक्रम में होते हैं मधुर देशभक्ति गीत और राष्ट्र नायकों के प्रेरक प्रसंग। तो इतिहास, आज हम किस महान हस्ती की बात करेंगे आजाद हिंद में?
1: आज हम बात करेंगे नए मध्य प्रदेश के निर्माण के सूत्रधार और प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह पंडित रविशंकर शुक्ल जी की, जिनका जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में एक समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था और 31 दिसंबर 1956 को इनका स्वर्गवास हुआ था।
2: पंडित रविशंकर शुक्ला जी के पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ला और माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। रविशंकर जी ने 4 वर्ष की आयु में सागर के सुंदरलाल पाठशाला में दाखिला लिया। ब्रिटिश राज में ये पाठशाला सीपी में स्थित 6 शालाओं में से एक थी। इसी पाठशाला से 8 वर्ष की आयु में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद रविशंकर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर हाई स्कूल से पूर्ण कर ली और जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की पढ़ाई के लिए वे नागपुर चले गए। नागपुर में पढ़ते हुए शुक्ला जी राष्ट्रीय आंदोलन के निकट आए और ऐसा कह सकते हैं कि यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई।

0: स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने नौकरी ढूंढना आरंभ की। उन्हीं दिनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भयंकर दुर्भिक्ष फैला हुआ था और शुक्ला जी को दुर्भिक्ष के विशेष अधिकारी के रूप में शासकीय सेवा में लिया गया। वोडरा कैंप में आपकी पदस्थापना की गई। यह स्थान सिरपुर से 12 किलोमीटर दूर है। वो उनका कराहती मानवता से पहला साक्षात्कार था। छत्तीसगढ़ की दुर्भिक्ष से पीड़ित जनता को सहायता पहुंचाने की बजाय शासकीय अधिकारी और ठेकेदार उसे लूटने में लगे हुए थे। ये सब देखकर पंडित जी बहुत व्यथित हुए और उनके अंतर मन में जो भावनाएं अंकुरित हुईं, उसने ही आगे चलकर राष्ट्र सेवा का विशाल वृक्ष रूप धारण किया।
1: इसके उपरांत पंडित रविशंकर शुक्ला जी कुछ समय तक गजेटियर विभाग से भी संबद्ध रहे। उन्होंने नायब तहसीलदार और मुंसिफ के पदों पर भी कार्य किया। 1901 में शासकीय सेवा छोड़ने के बाद अध्यापक का पेशा अपना लिया और जबलपुर के हितकारिणी हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार की। 1902 में आपका विवाह हो गया। जबलपुर में अध्यापन के साथ साथ आपने कानून का अध्ययन भी शुरू किया और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद खैरागढ़ हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक भी बन गए।
0: 1904 में वे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने बंबई गए। बंबई में उन्हें महात्मा गांधी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गांधी जी ने इनके व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनंद गांव में वकालत शुरू की। इनके अथक परिश्रम और ईमानदारी ने अपना रंग दिखाया और शीघ्र ही इनकी गणना रायपुर के चोटी के वकीलों में की जाने लगी। जिस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने वकालत आरंभ की, उस समय देश में राष्ट्रवाद की लहर आई हुई थी। सारे देश ने अंग्रेज शासकों के खिलाफ कमर कस ली थी। बंग भंग की याद अभी ताजा थी। बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय होता जा रहा था। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर लाल बाल पाल की तिकड़ी छाई हुई थी। सूरत के ऐतिहासिक अधिवेशन में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ठाकुर हनुमान सिंह और श्री लक्ष्मण राव जी ने तिलक के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की
1: और पंडित रविशंकर शुक्ला जी भी राजनीति में सक्रिय हो गए। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय प्रगति और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के अपने अभियान शुरू कर दिए थे और सामाजिक उत्थान के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया। असहयोग आंदोलन के समय पूरा देश महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह में भाग लेने के लिए एकजुट हो गया था। विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर आ गए और वकीलों ने कचहरियों का बहिष्कार शुरू कर दिया। अब तक पंडित रविशंकर शुक्ल जी का अधिकांश समय सामाजिक कुरीतियों से जूझने में जाता था। अब गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त कर इन्होंने राजनीति को अपनी पहली जरूरत बना लिया।

0: असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद मार्च 1922 में रायपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के समाचार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। शीघ्र ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी की गिनती प्रदेश के शीर्ष नेताओं में होने लगी। इन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। नवंबर 1933 में गांधी जी ने महाकौशल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, जबलपुर और सागर जिलों में गए और इस दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल जी महात्मा गांधी जी के साथ ही रहे। दोनों नेताओं ने 600 मील से अधिक की यात्राएं की। 1946 में जब केंद्रीय और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, जिसमें से मध्य प्रांत में कांग्रेस की सफलता का श्रेय पंडित रविशंकर शुक्ल जी को जाता है। 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: शुक्ल जी ने मध्य क्षेत्र की रियासतों के भारत में विलीनीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और विलीनीकरण के बाद नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। नया राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने शपथ ली।
0: मध्य प्रदेश के निर्माण के सूत्रधार और मध्य प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह पंडित रविशंकर शुक्ल उन महान विभूतियों में से हैं जिनका पुण्य स्मरण इस संसार में सदैव होता रहेगा। अपने आत्मीय जनों में कक्का जी के नाम से विख्यात पंडित रविशंकर शुक्ल जी अपने अंतिम क्षणों तक मध्य प्रदेश की सेवा में ही रत रहे और 31 दिसंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी का देहावसान हो गया। आज भी मध्य प्रदेश के निर्माण में उनकी भूमिका विस्मृत नहीं की जा सकती। ऐसी महान विभूति को हमारा सादर

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

जोआओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संगठनों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी-अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखले वादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।

0: नजर जब एक उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के भारतीय कूटनीति की दुनिया में एक साधारण सा उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार हो सकता था? ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक पेशेवर नौकरशाही में बदलना चाहते थे जो भारतीय समाज से अलग और उनसे ऊपर खड़ी हो। ये प्रतिबंध केवल शिष्टाचार के बारे में नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा के दम पर टिके राज्य में अंग्रेज अब अधीनस्थ दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नजर का डर हमें एक दिलचस्प सबक सिखाता है। शुरुआती राज में एक उपहार केवल एक उपहार नहीं था, ये उस साम्राज्य के कवच में एक दरार थी जो अपने दिल में राजनीतिक नाटक का एक नाजुक हिस्सा था।
1: नॉर्मन रॉबर्ट पॉक्सन, सूर्य के धब्बे और अकाल का ब्रह्मांडीय चक्र। 19वीं सदी के अंत में मद्रास वैद्यशाला की भीषण गर्मी में नॉर्मन रॉबर्ट पॉक्सन नामक व्यक्ति अपनी रातें आसमान का सूक्ष्म मानचित्रण करने में बिताता था। 1861 से 1891 के बीच उन्होंने 5000 तारों को सूचीबद्ध किया और 6 लघु ग्रहों की खोज की, जिससे पारंपरिक खगोल विज्ञान के इतिहास में उन्होंने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। हालांकि दिन का उजाला एक अधिक दबावपूर्ण और भयानक चुनौती लेकर आता था, सूर्य। ब्रिटिश राज के लिए 19वीं सदी मृत्यु के एक दुखद चरमोत्कर्ष द्वारा परिभाषित थी, क्योंकि आवर्ती अकालों में लाखों लोग मारे गए थे। औपनिवेशिक प्रशासन, जो दुनिया की अपनी सबसे बड़ी जमींदारी की रक्षा के लिए बेताब था, इन आपदाओं को एक क्रूर और चंचल प्रकृति के प्रति भारतीय संवेदनशीलता के संकेत के रूप में देखता था। पॉक्सन को विश्वास हो गया था कि भारत के सूखे का रहस्य उसकी मिट्टी में नहीं, बल्कि सूर्य की सतह पर होने वाले उग्र विस्फोटों में छिपा है। उन्होंने सौर्य कलंक की गतिविधि और स्थलीय मौसम के पैटर्न के बीच संबंध की जांच शुरू की। यह एक ऐसा अध्ययन था जिसने केवल तथ्य जुटाने वाले निम्न विज्ञान को साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदलने का वादा किया था। 1878 में पॉक्सन भारतीय अकाल आयोग के सामने खड़े हुए और क्रांतिकारी दावा पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि सूर्य के धब्बे सीधे तौर पर पृथ्वी की मौसम स्थितियों को प्रभावित करते हैं और इन सौर चक्रों पर नजर रखकर सरकार विनाशकारी सूखे की शुरुआत की भविष्यवाणी कर सकती है। 1864 के विनाशकारी कलकत्ता चक्रवात और 1866 के उड़ीसा अकाल के बाद उपनिवेशिक राज्य मौसम विज्ञान को लेकर बेहद चिंतित था। ऐसे में पॉक्सन के सिद्धांत ने एक गहरा वैज्ञानिक तार छेड़ दिया। प्रशासन को समझ आया कि सौर भौतिकी अब केवल जिज्ञासा का विषय नहीं बल्कि राज्य की वित्तीय और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि सूर्य के पास मानसून की चाबी थी तो उसका अध्ययन करना साम्राज्य का कर्तव्य था। पॉक्सन के अथक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि सौर भौतिकी के लिए सरकारी वित्त पोषण में भारी वृद्धि हुई। इसका समापन 1895 में कोडाई कनाल वैधशाला की स्थापना के साथ हुआ। इस संस्था ने तेजी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और साबित कर दिया कि उपनिवेशों में होने वाले शोध हमेशा दोयम दर्जे के या मौलिक खोजों से अलग थलग नहीं होते। 1899 तक सौर अध्ययन को औपचारिक रूप से विस्तार करते हुए मौसम विज्ञान विभाग में एकीकृत कर दिया गया, जिससे स्वयं सूर्य भी राज की नौकरशाही की नजर के दायरे में आ गया। पॉक्सन के सिद्धांत ने ब्रिटिशों के भारतीय परिदृश्य को देखने के नजरिए को बदल दिया। उन्होंने रहस्यमय आकाश को वायुमंडलीय अशांति के एक तर्कसंगत साम्राज्यवादी मानचित्र में बदल दिया। भूख के ब्रह्मांडीय चक्र की पॉक्सन की ये खोज उस समय का प्रमाण है जब अंग्रेजों का मानना था कि पश्चिमी विज्ञान के माध्यम से वे अंततः उष्णकटिबंधीय दुनिया की अप्रत्याशित लय को वश में कर सकते हैं। आगे चलकर इसी कोडाई कनाल वैधशाला में जॉन एवरशेड ने एवरशेड प्रभाव की खोज की, जिसने सौर भौतिकी की दुनिया में भारत का नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम में आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का अष्टम भाग प्रसारित कर रहे हैं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष उसके जन्म का वह रहस्य उद्घाटित किया जिसने वर्षों से दबे हुए घावों को फिर से हरा कर दिया। कर्ण की वाणी में पीड़ा थी, तिरस्कार की तपिश थी और उस पुत्र का मौन विद्रोह भी था जिसे संसार ने जन्म से पहले ही मानो किनारे कर दिया था। उसने जन्म देने वाली माँ से प्रश्न किए, समाज की कठोरता पर चोट की और राधा के वात्सल्य को अपने जीवन का सच्चा आधार बताया। अब काव्य कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां कर्ण केवल अपनी वेदना नहीं कहेगा बल्कि मित्रता, कृतज्ञता और अपने अटल धर्म पर ऐसा स्वर प्रकट करेगा जो इतिहास के आकाश में वज्र रेखा की तरह अंकित हो जाएगा। आइए सुनते हैं तीसरे सर्ग से भाग 5 को, जहां कर्ण कृष्ण को कह रहे हैं,
4: पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, थाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा,

0: जब राज्य मिला ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कुल का किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। कुल को खाते और खोते हैं।
1: श्रोताओं, दिनकर जी यहां ऐसे प्रतीत होते हैं मानो स्वयं हर पात्र की आत्मा में प्रवेश कर गए हों। कृष्ण की करुणा, कर्ण का कंपन और समय की थरथराती हुई प्रतीक्षा सब एक साथ धड़कते हैं। कृष्ण युद्ध का चित्र भी दिखाते हैं, रक्त की धार, विधवाओं की पुकार, अनाथ बच्चों की चीख और फिर शांति का स्वप्न भी रचते हैं। जैसे दो दर्पण सामने रख दिए हों, एक में विनाश और दूसरे में मिलन का आलोक। ये प्रसंग आज भी उतना ही सत्य है। जब हम अहंकार में निर्णय लेते हैं, तब कोई भीतर से हमें पुकारता है, रुक जा, अभी भी समय है। पर क्या हम उस आवाज को पहचान पाते हैं? यही प्रश्न कर्ण के सामने है और यही प्रश्न हमारे सामने भी। अब देखना है करुणा की ये गंगा कर्ण के हृदय तट को भेद पाती है या नहीं।
2: श्रोताओं, जिसके हृदय में कृतज्ञता ही धर्म बनकर प्रतिष्ठित हो जाती है, वह अपने जीवन का मूल्य भी उसी ऋण के सामने तुच्छ मानता है। ऐसा मनुष्य संबंधों को अवसर के लिए नहीं त्यागता। आगे काव्य संवाद शेष है, लेकिन बात साफ है। यहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु प्रश्न ये है कि वास्तविकता किसे कहें। हर मनुष्य अपने अपने हिस्से का कर्ण है, अपनी अपनी कर्म भूमि में खड़ा, अपने निर्णयों के बोझ और संबंधों के ऋण के साथ। आज के समय में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ की तुला पर तौले जाते हैं ना, जब विश्वास लाभ हानि की गणना में खो जाता है, ऐसे युग में कर्ण एक तीखी रेखा की तरह उभरता है। वह अडिग है, क्योंकि उसके लिए कृतज्ञता सौदे से बड़ी है। आइए हम दिनकर जी की इस भावपूर्ण काव्य कथा में कर्ण के भाव समंदर के साथ चलें। अब सुनते हैं तृतीय सर्ग का भाग 6, जहां स्वयं श्री कृष्ण साक्षी हो रहे हैं और प्रतिज्ञाओं की तरफ।
0: विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वो नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छांह गही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है तन, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी नछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरु रज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरु राज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी ना सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा।
1: श्रोताओं, सूर्यपुत्र होकर भी छाया में पला वो महापुरुष नाम से नहीं, अपने कर्म से पहचाना गया, जिसने उपकार को ही धर्म बना लिया वो साधारण नहीं रह जाता, और कर्ण उसी असाधारणता का नाम है, उसके लिए वचन ही वेद है, कृतज्ञता ही तप है और मित्रता ही उसकी मर्यादा। जन्म ने उसे पुकारा, राज्य ने उसे ललचाया, करुणा ने उसे समझाया, पर वो अडिग रहा, उसने सुविधा नहीं सिद्धांत चुना, अवसर नहीं उत्तरदायित्व चुना।
2: कर्ण के सामने अब ना राज्य का आकर्षण है और ना वैभव का स्वप्न, उसे चाहिए तो बस मित्रता का सहारा और अपने कर्तव्य की अग्नि में तपकर जीवन की प्यास बुझाने का अवसर। वह जानता है कि आगे रण है, संभव है विनाश हो, फिर भी उसके स्वर में डगमगाहट नहीं है, केवल धधकता हुआ संकल्प है। वह अपने सत्य पर अडिग है, अपने ऋण पर अटल है, और उसी दृढ़ता में उसकी महानता चमक उठती है। जिसे धूप ने पाला हो वह छांव से डर जाता है, जिसे जग ने ठुकराया हो वह नाम से डर जाता है। कर्ण हृदय में अग्नि लिए मुस्काता तो है, लेकिन भीतर कोई टूटा बचपन अब भी रोता जाता है।
1: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ कर्ण को केवल योद्धा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे मानवीय गरिमा का प्रतीक बना दिया है। जिस मनुष्य के लिए वचन ही प्राण बन जाए, उसे संसार हरा सकता है, छोटा नहीं कर सकता। कर्ण का यही तेज इस प्रसंग को कालजयी बना देता है। आइए बढ़ते हैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, जहां कर्ण का तेज, उसका त्याग और उसका अटल संकल्प इतिहास के आकाश पर अमिट रेखा बनकर उभरता है। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ।
0: तुच्छ है राज्य, क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ पल विलास, पर वो भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से भी ना कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तपशील, सत्ता क्रीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझा वातों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय चुड़ाते हैं। मैं करुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव, अब शेर नहीं कीजे केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, हां एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वैसे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में विहिरे, भूतल में दिव्य प्रकाश बने।
2: रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले
1: वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।
2: और फिर जैसे समय स्वयं ठिठक गया हो, रथ के पहिए स्थिर, दिशाएं मौन, वायु निश्वास रोके खड़ी, ऐसा लगा मानो काल भी उस क्षण के आगे नतमस्तक हो गया हो, सूर्य पुत्र की दृढ़ता के आगे आकाश स्वयं झुक गया, और पृथ्वी ने उस संकल्प को अपने हृदय में अंकित कर लिया। कर्ण का चरित्र जितना तेजस्वी है उतना करुण भी, वह जानता है कि जिस पथ पर वह चल रहा है वहां पुष्प नहीं शूल बिछे हैं, फिर भी वह लौटता नहीं, क्योंकि कुछ लोग विजय पाने के लिए जन्म नहीं लेते, वे मर्यादा निभाने के लिए जन्म लेते हैं। आज के समय में जहां मनुष्य स्वार्थ की नाव पर बैठकर संबंधों की नदी पार करना चाहता है, वहां कर्ण किसी प्राचीन शंख नाद की तरह सुनाई देता है, जैसे कह रहा हो उपकार का ऋण शब्दों से नहीं जीवन से चुकाया जाता है।
1: कृष्ण की दृष्टि गहन उठती है, वे जानते हैं ये केवल एक योद्धा का निर्णय नहीं, इतिहास की धुरी का घूम जाना है। कर्ण शांत है, पर उसकी शांति में महाप्रलय की आहट छिपी है। श्रोताओं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण की इस काव्य यात्रा में मानो स्वयं को पूरी तरह अर्पित कर दिया है। उनकी लेखनी में ऐसा ओज है, ऐसा तेज है कि कथा स्वयं केवल इतिहास नहीं रहती, जीवन का दर्पण बन जाती है। प्रत्येक पंक्ति हमें झकझोरती है, सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने संकल्प पर अडिग हो जाए तो परिस्थितियां भी उसके आगे सिर झुका देती हैं।
2: दिनकर जी चाहते तो किसी विजयी प्रतिष्ठित पात्र को अपना नायक बनाते, किंतु उन्होंने चुना कर्ण को, वंचित, उपेक्षित, परंतुत। यही उनकी दृष्टि की व्यापकता है। श्रोताओं, रश्मि रथी में कर्ण केवल पात्र नहीं, मानवीय गरिमा का प्रतीक बन उठता है। दिनकर स्वयं सारथी बनकर उसके रथ को शब्दों की दिशा देते हैं, और कर्ण उस रथ का रथी बनकर इतिहास के आकाश पर अमिट रेखा खींच देता है। इसी मार्मिक ऊंचाई पर तृतीय सर्ग का समापन होता है। यही शब्द थम जाते हैं, पर संकल्प अमर हो जाता है। अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है काव्य गुंजन में रश्मि रथी के इस अद्भुत यात्रा से आपको जीवन के कुछ अनमोल सूत्र अवश्य ही मिल रहे होंगे। यही इस काव्य की शक्ति है। ये हमें केवल कथा नहीं सुनाता, बल्कि हमारे भीतर छिपे तेज, साहस और स्वाभिमान को पहचानने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, रश्मि रथी के इस अद्भुत रथ पर सवार दिनकर जी के रचे इस ओजस्वी मार्ग से गुजरते हुए मन कह उठता है, जिसे समय ने ठुकराया था वह कालजयी बन बैठा, जो जीवन भर अकेला था वही लोक हृदय में बैठा। नभ का सूर्य ढल भी जाए तो ज्योति कहाँ मर पाती है, कर्ण सरीखे पुरुषों की गाथा अमरत्व कहलाती है।
1: श्रोताओं, जीवन केवल सुख की सरिता, केवल छाया, केवल मान नहीं, ये तो विषपान का तप भी है। ये केवल मधुमास नहीं जो विपदा के नागपाश में भी अपना धैर्य संभाल सके, जो टूटे फिर भी भीतर से अपने तेज को जगा सके। श्रोताओं, तृतीय सर्ग यहीं अपने चरम भाव पर पहुंचकर विराम लेता है, पर ये विराम वैसा नहीं जहां ये काव्य कथा थम जाए। ये तो उस श्वास जैसा है जो तूफान आने से पहले वातावरण में भर जाती है। आगे चतुर्थ सर्ग में नियति और अधिक विकराल रूप धारण करेगी, संबंधों के आवरण हटेंगे, युद्ध की छाया और सघन होगी, और कर्ण का व्यक्तित्व एक नए आलोक में प्रकट होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे रश्मि रथी की उसी महायात्रा के अगले सोपान के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे।
2: जी हाँ, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। श्रोताओं, आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
3: और मैं दीपक नेमा।
2: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा,
4: नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम शाम 5:10 पर। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा गणितज्ञ प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम बाल सभा, आज का विषय होगा हार का महत्व। शाम 7 बजे प्रकृति की पुकार कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और कानून विषय पर जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव। इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। शाम 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, आज का विषय है टेरिटोरियल आर्मी। इस विषय पर जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान, इस कार्यक्रम में आज हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और 8:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद, आज पंडित रविशंकर शुक्ल के जीवन पर केंद्रित होगा। रात्रि के 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी, तब तक आप हमारे केंद्र से सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज दिन में क्या कुछ खास हम लेकर आए हैं इसकी जानकारी आपको दे दूं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी के। 1 बजे हम आपको सुनवाएंगे भारत भारती कार्यक्रम, 2 बजे सुनिएगा नाटक अजोक, और 2:30 पर एक चर्चा पेड़ों के नाम। 3 बजे भारत भारती कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा और 4 बजे तराने आजादी के। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी के।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से, अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से प्रस्तुत है रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। कहानी का ताना बाना कुछ इस प्रकार है।

19वीं शताब्दी के रूस में एतोन चेखाव नाम के एक महान कथाकार हुए। वे कहते थे, साहित्य मेरी प्रेमिका है। उनकी कहानियाँ दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। उनकी कहानियाँ संवेदना को झिंझोर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आंखों देखी घटना सुना रहा हो। चेखव कहते थे कि लेखक को वही लिखना चाहिए जो उसने देखा और भोगा हो, वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। श्रोताओं, चेखव का साहित्य विशाल है, जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अजोक, एक मजाक। ये मजाक नायक नायिका के साथ करता है। इस मजाक का क्या अंजाम होता है, इसे जानने के लिए सुनते हैं कहानी अजोक, एक मजाक का रेडियो नाट्य रूपांतर। श्रोताओं, इस नाटक में चेखानते हैं जो कि कहानीकार हैं, और साथ ही इस कहानी में दो पात्र होंगे, चेखव और नात्या पित्रोना।

0: सर्दियों की खूबसूरत दोपहर, सर्दी बहुत तेज है, नादिया ने मेरे बाह पकड़ रखी है, उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है कि वे चांदनी की तरह झलकने लगे हैं, उसके ओंठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देती है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है, ढलान पर बर्फ की चादर बिछी है, सूरज की रोशनी उस पर ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे नज़दीक ही एक स्लेज पड़ी है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है।
1: श्रोताओं, ये रूस है जहाँ ठंड बेहद पड़ती है, यहाँ बर्फ पर फिसलने वाली बिना पहियों की गाड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम स्लीज कहते हैं। टंड्रा क्षेत्र में इन गाड़ियों को कुत्ते खींचते हैं। लेकिन ढलान पर खुद ब खुद नीचे फिसलती हैं ये गाड़ियाँ। ये खेल है, जैसे जैसे गाड़ियाँ नीचे उतरती जाती हैं, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। ऐसे में अगर कोई खूबसूरत साथी साथ हो तो फिर क्या कहने, और रोमांस दुगना हो जाता है।

0: नादिया, नादिया।
1: हाँ जेकब।
0: आओ नादिया, एक बार फिसलते हैं। आओ।
1: नहीं जेकब, मुझे नहीं फिसलना है यहाँ से।
0: अरे सिर्फ एक बार, आओ ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं आना।
0: अरे घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुँच जाएंगे। आओ।
1: उफ, देखो तो कितनी ठंड है यहाँ पे, और मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो देखो, डर के मारे पीला पड़ गया है।
1: डर के मारे पीला तो पड़ेगा ही, उफ, देखो तो कितनी ऊंचाई पर है हम।
0: अरे मैं हूँ ना, डरो मत। आओ आओ यहाँ बैठो, आओ आओ ना। आओ।
1: ठीक है, तुम कहते हो तो चलो चलती हूँ।
2: मैं महसूस करता हूँ कि स्लेज पर बैठने के नाम पर नादिया का जैसे दम निकल जाता है, लेकिन तब क्या होगा जब यह खतरा उठाकर स्लेज पर बैठ जाएगी। ये तो डर के मारे मर ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है।
0: नादिया, नादिया मेरी बात मान लो। नादिया डरो नहीं, आई नो कि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। आओ नादिया।
1: नहीं जेकब, नहीं। अच्छा अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: आओ यहाँ आओ, आ जाओ।
2: वो मान जाती है, मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूँ। साफ दिखता है कि जैसे उसने मौत का खतरा उठाकर ही मेरी ये बात मानी है। वो डर के मारे सफ़ेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बिठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूँ। हम उस गहराई में फिसलने लगते हैं। बंदूक की गोली की तरह स्लेज नीचे उतर रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा चीरती हुई सीटी बजा रही है। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदन को चीर रही है। वो जैसे हमारा सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज व ठंडी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे एक तेजी से लकीर में बदल जाती है।

0: नादिया,
1: ये कैसी आवाज है? क्या चेखा?
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। आई लव यू नादिया, आई लव यू नादिया।
1: क्या क्या चेखा ने मुझसे कहा?
0: आई लव यू नादिया, आई लव यू।
2: स्लेज की गति धीरे धीरे कम होती जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिर हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया बेहोशी हो रही है, वो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। मैं स्लेज से उतरने में उसकी मदद करता हूं।
0: नादिया, आओ नादिया, आंखें खोलो नादिया। क्या हो गया नादिया? जस्ट ओपन योर आईज नादिया, बी केयरफुल। आओ नादिया।
1: आज तो मैं मरते मरते बची हूं। चेखा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा कभी नहीं फिसलूंगी, कभी भी नहीं।
0: नादिया, डरो मत नादिया, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा नादिया, मैं हूं ना।
1: नहीं नहीं, अब मैं कभी नहीं आऊंगी।
2: जब मेरी ओर देखते उसने ये शब्द कहे तो मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ देखा, पर थोड़ी देर बाद ही वो सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच ये अल्फाज सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था कि सिर्फ हवा की गरज थी वो, और ये अल्फाज इसी गरज से पैदा हुए थे।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया।
2: क्या ये एक भ्रम? नादिया मेरे हाथ अपने हाथों में ले लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते हैं। ये पहली उसे अब भी परेशान कर रही है कि जो अल्फाज उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे सच में कहे गए थे या नहीं, ये बात वास्तव में हुई थी या नहीं, ये सच है या झूठ। अब ये सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, जैसे उसकी जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इसी बात पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का उत्तर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नादिया मुझे अपनी आशा भरी नजरों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहती हो। वो इस इंतजार में है कि मैं फिर उसे वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव हैं? मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो हिचकिचा रही है, वो डर रही है, उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है।
0: नादिया, नादिया चलो घर चलते हैं।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
0: व्हाट, तुम्हें मजा आ रहा है?
1: हाँ जेकब, बहुत ही ज्यादा मजा। क्यों ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं।
0: एक बार फिर?
1: हाँ ना जेकब, चलो ना, प्लीज चलो।
0: अच्छा चलो।
2: हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। मैं फिर से डर से सफेद पड़ चुकी नादिया को स्लेज पर बिठा देता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गर्ज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है, और जैसे जैसे शोर बढ़ता जा रहा था, मैं धीमी आवाज में कहता हूं,
0: मैं तुमसे प्यार करता हूं नादिया, आई लव यू नादिया।
2: नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नादिया एक नजर पहले ऊपर की तरफ उस दलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले थे, फिर दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डालती है। वो ध्यान से मेरे बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है, और जैसे उसके चेहरे पर लिखा है, क्या बात है, ये अल्फाज किसने कहे थे, शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगता हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दे गए हों।
0: I love you, I love you।
2: उसकी उलझन बढ़ती जाती है, वो सच्चाई से अनजान है, ये अनजानापन उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। मुझे उस पर तरस आ रहा है, बेचारी लड़की, वो मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देती, लगता है वो रोने वाली है।

0: नादिया नादिया चलो घर चलते हैं।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है।
0: क्या?
1: बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। चलो ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं, चलो ना।

0: और यह पहेली पहेली ही रह जाती है। नादिया चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि मैं शायद उसे कुछ कहूँगा, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो कुछ सोच रही है। दूसरे दिन जैकब को चिट्ठी मिलती है जिसमें नादिया ने लिखा है,
1: जैकब, ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फिर फिसलने का मन कर रहा है। अगर आज तुम पहाड़ी पर फिर फिसलने जाओ तो प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलना।
2: और चिट्ठी के आखिर में बड़े ही प्यार से उसने अपना नाम लिखा था, नादिया, नादिया।
0: उस दिन से हम दोनों फिसलने के लिए रोज पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज से मैं वही शब्द कहता हूँ,
2: I love you।
0: जल्दी ही नादिया को उन शब्दों का नशा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब या मॉर्फिन में होता है। अब वो इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह ही डर लगता है, लेकिन अब भाई और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करता है, जो पहले की तरह ही उसके लिए एक पहेली बनी हुई है और उसके दिल को तड़पाती है। उसका शक हम दोनों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अकेले ही उस पहाड़ी पर पहुंच गया। नादिया को उस दिन मैंने नहीं बुलाया। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नादिया नीचे ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं आऊं और उसे लेकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ूं, लेकिन वो मुझे नहीं पाती। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, हालांकि उसे अकेले फिसलने में डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर। वो बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है, वो कांप रही है, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझक के, बिना रुके। शायद उसने फैसला कर लिया है कि इस बार वो अकेले फिसल कर देखेगी कि वे मीठे शब्द सुनाई पड़ते हैं कि नहीं। मैं देखता हूँ कि बेहद घबराई हुई नादिया डर से अपना मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसलने जा रही हो। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ती है। नादिया को वो शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूँ कि वो बेहद थकी हुई और कमज़ोर स्ले से उतरती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूँ कि वो खुद ही नहीं जानती उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा, उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। कुछ समय बाद वसंत का मौसम आया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी रहने वाली वो सफ़ेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी बर्फ पिघल चुकी है, उसकी चमक खत्म हो चुकी है। अब सूरज की रोशनी उस पर शीशे की तरह नहीं चमकती। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नादिया भी उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला कोई नहीं। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं वहां हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। शाम के वक्त मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नादिया रहती है वो बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाड़ जो नादिया के मकान को बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ भी दिखाई पड़ती है। हरियाली अभी नहीं है लेकिन वसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाड़ के पास आता हूँ और एक दरार में से नादिया के घर की तरफ देखता हूँ। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नजरों से आसमान की ओर ताक रही है। वसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वो उस हवा से प्रार्थना कर रही हो कि एक बार फिर से उसके लिए वो शब्द दोहराएं। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूँ,
2: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, आई लव यू नादिया।
0: बुझी हुई नादिया अचानक मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद खुश और बेहद सुंदर दिख रही है। उसकी उलझन खत्म हो चुकी है, वो जान चुकी है कि ये शब्द उसे हवा कहती है। हाँ, हवा ही कहती है।

0: और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट जाता हूँ। कई साल गुजर चुके हैं, अब नादिया की शादी हो चुकी है। शादी का फैसला उसने खुद लिया था या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका पति एक बड़ा ऑफिसर है और उससे उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उस समय को नादिया अब भी नहीं भूल पाई है। हवा के वो शब्द उसे आज भी याद हैं। ये उसके जीवन की सबसे खूबसूरत और सुखद याद है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नादिया से वो शब्द मैंने क्यों कहे थे, क्यों मैंने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया था।
1: श्रोताओं, आपने सुना, एक लड़की के द्वारा एक लड़की के साथ किया गया एक छोटा सा मजाक, अ जोक। लड़के के लिए ये दिल लगी थी, एक विनोद था, लेकिन लड़की के लिए दिल का मामला। लड़की आई लव यू सुनने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, और लड़का सिर्फ अपना मनोरंजन करता रहता है। उफ, कितनी क्रूरता है ये। शादी हो जाने के और 3 बच्चे हो जाने के बाद भी नादिया इन शब्दों को नहीं भुला पाती। क्या इतना क्रूर मजाक लड़के को उसे करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी प्रसिद्ध कहानी ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार थे जवाहरलाल शाह, अंजू के आनंद, अमित कुंदानी। ध्वनांकन सचिन कुमार और अमित कुंदानी। सूत्रधार मोनिका तिवारी। निर्देशन जवाहरलाल शाह और इला शंकर गुहा। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है,
1: देश का चैनल देश के लिए।
0: मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मोनिका तिवारी।
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह।
0: हम उपस्थित हैं लेकर कार्यक्रम एक चर्चा पेड़ों के नाम।
1: और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देवदार के पेड़ पर।
2: मैं यही हूँ सदा, कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी के लिए बस्ती हूँ मैं, तो किसी के लिए सराय, किसी का घर हूँ तो किसी की छांव, किसी का मंदिर हूँ किसी का माली। मेरे फूल कहीं चढ़ते हैं तो कहीं के फूल मुझ पर भी चढ़ते हैं। कोई मुझे पूछता है तो कोई मुझ पर पत्थर फेंकता है, लेकिन देता मैं सभी को हूँ, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। यहाँ तक कि मेरी देह भी लोगों के काम आती है। मैं वृक्ष हूँ।

0: सुनीता जी, क्या आपने भी ये आवाज सुनी?
1: हाँ मोनिका, मैंने भी सुनी और हमारे श्रोताओं ने भी सुनी।
0: क्या पेड़ सच में बोलते हैं?
1: अब ये तो बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है, लेकिन सच कहूँ?
0: क्या?
1: सच ये है कि अपनी ही भाषा में, अपने ही संकेत में बहुत कुछ कहते हैं पेड़, जिन्हें हम अनसुना कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। पेड़ों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसे अनसुना कर देते हैं। हम हमारी हर जिम्मेदारी भूल जाते हैं।
1: उनके महत्व को हम समझते हैं, अपनी जिंदगी में जाने कहां कहां उनके उपयोग को हम देखते भी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतरा जाते हैं, या कहें एक बेख्याली है हमारे मन में। तो अपने श्रोताओं को इसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं।
0: बिल्कुल। सुनीता जी, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी।
1: कौन सी?
0: कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। ये तो परमार्थ के लिए ही इस धरती पर आए हैं, मगर हम क्या करते हैं इनके साथ? इनका विनाश। जी हाँ, आज की सभ्यता का यही सच है। धरती के फेफड़े कहलाने वाले जंगल कितने कटे हैं, ये हमसे छुपा नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मोनिका तुमने। आकलन किया जाए तो एक पेड़ को काटने से जितनी आय होती है, उससे कहीं अधिक योगदान वो जीवित रहते हुए देता है। वो जीवन भर हमें शुद्ध हवा देता है, फल फूल देता है ना?
0: बिल्कुल सही।
1: भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में जो भूमि

0: शायद आपने सुनी भी होगी।
1: कौन सी?
0: बहुत समय पहले की बात है कि एक नहायत ही बूढ़ा और जर्जर व्यक्ति एक आम का पेड़ रोप रहा था। किसी ने उससे पूछा कि बाबा इस पेड़ से फल कितने दिन में आएंगे। बूढ़े ने कहा, यही कोई 15-20 साल में, तो क्या तुम तब तक जीवित रहोगे? उस व्यक्ति ने बूढ़े से अगला सवाल किया।
1: अच्छा,
0: तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं जानता हूँ कि अब साल तो साल से ज्यादा मैं नहीं चलने वाला, लेकिन ये पेड़ कोई मैं अपने लिए थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूँ। ये था उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति का उत्तर।
1: क्या बात है मोनिका, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी तुमने सुनाई। वैसे मैंने सुनी थी, और सच है कि एक पेड़ जो हम लगाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लगाते। जैसे कि इस वृद्ध ने कहा कि भाई मैं 2-4 साल ही जीवित रहूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये वृक्ष मैं लगा रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे हम हैं, कुछ पेड़ हमने नहीं लगाए, हमारी पिछली पीढ़ी ने लगाए, लेकिन उनका लाभ हम लेते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: लेकिन आज ये आदर्शवाद कहीं बचा ही नहीं है मोनिका। ये परमार्थ का भाव बहुत कम दिखाई देता है। लोग अपने से बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण है उनके लिए।
1: बिल्कुल मोनिका, और एक सोचने की बात ये भी है कि जैसी सोच आज के लोगों की है, अगर ऐसी ही सोच हमारी पिछली पीढ़ी की होती तो इतने जो बड़े बड़े वृक्ष हम देखते हैं, उनका हम लाभ उठाते हैं, शुद्ध हवा हमें मिलती है, बारिश आती है, इन सब चीजों के लिए तो हम तरस जाते ना।
0: बिल्कुल,
1: सांस लेते तो दम घुटता। तो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया है वो हमें अपने बच्चों को लौटाना ही है। ये तो पितृ ऋण है ना हम पर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सब बातें बोल के आपने एक बहुत ही गहरी सोच में डाल दिया हमें।
1: मोनिका मोनिका मोनिका, अब तुम कहीं खो मत जाना सोच में, तुम्हारी ये आदत मैं देखती हूँ। तो तुम्हें मैं खींच लाती हूँ बाहर। भाई श्रोता हमारे इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो आप और हम साथ ही हमारे श्रोताओं से भी हम ये आग्रह करेंगे, निश्चय करें कि आज से हरे पेड़ नहीं काटेंगे और हर साल कम से कम एक वृक्ष तो रोपेंगे ही।
1: ये बात बिल्कुल पते की तुमने की है मोनिका।
0: न केवल रोपेंगे,
1: हाँ,
0: बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं।
1: ये और भी जरूरी है ना।
0: बिल्कुल, और ये भी याद रखिएगा कि आपके पाले बच्चे तो आपका बुरा कर सकते हैं, लेकिन ये वृक्ष संतानें कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, जैसे पहले 100 पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा जाता था, आज हमें वैसे ही 100 वृक्ष संतानों के आशीर्वाद की आवश्यकता है।
1: क्या बात है मोनिका, क्या बात कही है तुमने। बिल्कुल, हम सभी को 100 वृक्ष संतानों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और ये आशीर्वाद कोई और नहीं देगा, हमें ही 100 वृक्ष लगाने हैं और ये आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: तो चलिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं वृक्षों पर आधारित ये श्रृंखला। इसमें हम नियमित रूप से आपको विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में जानकारी देंगे, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हमारे वृक्ष देवताओं से परिचय प्राप्त करें। उनसे प्रेम तभी कर सकेंगे ना, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मोनिका।
0: क्या?
1: कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता, है ना सच?
0: बिल्कुल सही।
1: तो लीजिए, आज की कड़ी में अपने श्रोताओं का परिचय हम करवा रहे हैं एक महान वृक्ष से।
0: और वो वृक्ष कौन सा है?
1: वो वृक्ष है देवदार का वृक्ष।
0: सुनीता जी, मैं जानती हूँ इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ पहाड़ों का वृक्ष है, जहाँ ठंडक खूब पड़ती है।
1: कितने खूबसूरत होते हैं ना?
0: हाँ।
1: मैंने तो देखा भी है।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: वहाँ के पर्यावरण तंत्र और संस्कृति का यह अभिन्न अंग है। भारत का पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका मूल स्थान माना गया है। यहीं से ये वृक्ष बाकी क्षेत्रों में फैला है। हिमालय में भी अधिकतर ये 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है।
1: अच्छा मोनिका,
0: क्या
1: तुम ये जानती हो कि देवदार का वैज्ञानिक नाम क्या है?
0: नहीं, क्या आपको पता है?
1: भाई मुझे मालूम है, तभी तो मैंने पूछा। तो चलो तुम्हें भी और अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि देवदार का वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवदारा। ये जो पेड़ है ना, ये सीधे तने वाला एक शंकुधारी पेड़ है, यानी नीचे ये चौड़ा होता है और ऊपर की ओर सिकुड़ते हुए अंतिम बिंदु पर बिल्कुल नुकीला सा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना।
0: माने कि ये देवदार सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, उसका आकार भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है।
1: हाँ, आइसक्रीम के

0: कोन की तरह ये आकार में फर से मिलता जुलता है और इसकी जो लकड़ी है वो हल्की मजबूत और तीखी सुगंध वाली होती है।
1: कवियों और साहित्यकारों को देवदार सदा से लुभाता आ रहा है।
0: मोनिका बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और पता है बहुत से गीतों में भी इसका जिक्र आता है। अच्छा। वो गीत तुमने सुना है ये कौन चित्रकार है?
1: बिल्कुल सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है।
0: हाँ, उसमें भी एक पंक्ति आती है ये वृक्ष देवदार के, है ना, मुकेश ने गाया है।
1: हिमालय क्षेत्र में एक शांत तपस्वी की तरह ये मानो अपनी साधना में लीन रहता है। आधुनिक हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इसका स्मरण अपनी कालजयी रचना कामायनी में किया है। प्रसंग प्रलय का है, जब आदि पुरुष मनु महामत्स्य द्वारा बचाए जाने उपरांत हिमालय में भटक रहे थे। वे लंबे शरीर वाले थे और देवदार भी लंबा वृक्ष होता है। वे भी इस समय हिमालय में ही थे और देवदार भी हिमालय में ही मिलता है। अतः स्थान साम्य और आकार साम्य के आधार पर कवि ने उनकी तुलना देवदार से करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े।
0: हाँ मोनिका, कामायनी की ये पंक्ति मुझे भी याद आ गई। अगर रचनाकार पहाड़ी क्षेत्र का हो तो वो देवदार के वृक्ष का जिक्र करना कभी नहीं भूलता है। बात कोई भी हो, घुमा फिरा कर वो देवदार तक पहुंच ही जाता है। उसके व्यक्तित्व में जन्म से ही इतना समाया है ये वृक्ष कि किसी न किसी रूप में उसकी चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा कि हमारा सांस लेना।
1: उत्तराखंड के कवि हैं सुबीर रावत, शायद आपने उनका नाम सुना होगा।
0: हाँ मोनिका।
1: अपनी प्रियसी की याद में वे कविता लिखते हैं। शीर्षक है आना फुर्सत में कभी मेरे पहाड़ में। उनकी प्रियसी उनके कल्पना संसार में एक फागुनी शाम को पहाड़ की हरी भरी वादियों में आती हैं, वहाँ जहाँ ढेर सारे देवदार के वृक्ष हैं। तब जब शर्माकर वो दुपट्टे से अपना मुख ढांकती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूनम का चांद चीड़ और देवदार के घने वृक्षों की आड़ में छुप गया हो।
0: कितनी सुंदर कल्पना ना।
1: इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए ये कविता सुनिए। मंद मंद मुस्कान उस फागुनी शाम की, खिल उठे हूँ बसंत हजारों जैसे। रंग बिरंगे फूलों से मेरी लकदक पहाड़ में, ढक देना शर्मा कर कभी यूं ही मुंह दुपट्टे से। छिप गया हो चांद पूनों का जैसे, घनघोर मेरे चीड़ देवदारू के पहाड़ में, देवदारू के देवदारू के
0: कितनी सुंदर कविता ना मोनिका। मैं तो खो गई बिल्कुल, मुझे सारा दृश्य नजर आने लग गया। लेकिन मनुष्य की निर्मम लोभ वृत्ति ने बाकी वृक्षों के समान देवदार को भी बख्शा नहीं। हालांकि इसका परिणाम भी मिला है उसे, पहाड़ों का इकोसिस्टम हिल गया है। कितनी आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ों के सरकने की खबर हम सुनते हैं, उनके ढहने की खबर हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: खैर, देवदारों की कटाई एक कवित्री कविता वाचक नवि को विह्वल कर देती है। उनकी कुछ पंक्तियां सुनो।
1: सुनाइए।
0: वो कहती हैं, रहस्य के सारे देवदार काट डाले हैं बटोही ने, बाहें पसारे जो हिम झेलते थे पी लेते थे कोहरा।
1: सुनीता जी, हम बहुत देर से देवदार के पेड़ की बात कर रहे हैं।
0: हाँ?
1: लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम देवदार पड़ा कैसे?
0: बिल्कुल पता है मोनिका, और मैं चाहती हूँ कि ये जो जानकारी हमें है वो अपने श्रोताओं को भी हम दे दें कि आखिर इस पेड़ का नाम देवदार क्यों पड़ा।
1: बिल्कुल, शुरुआत मैं करती हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: आज हिंदी में हम जिसे देवदार कहते हैं उसका मूल शब्द है देवद्रुम, यानी देवताओं का वृक्ष। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि सत्यभामा के हट करने पर भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर उठा लाए थे। इससे कल्प तरु से हीन देवलोक श्री विहीन हो गया।
0: हाँ।
1: तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कल्प तरु के बिना देवलोक श्रीहीन हो गया है। जैसा कि कृष्ण का स्वभाव था, वे हौले से मुस्कुराए और बोले, जहाँ श्री अर्थात लक्ष्मी नहीं रहेंगी वो स्थान तो श्रीविहीन होगा ही, जब तीनों श्री लक्ष्मी, सरस्वती और काली साक्षात विग्रह रूप में सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती के रूप में धरती पर है, तो स्वर्ग में श्री कैसे रह सकती हैं?
0: बिल्कुल, तब निर्णय हुआ कि कल्पवृक्ष स्वर्ग को तभी वापस किया जा सकता है जब उसके जैसे ही प्रभाव वाला एक वृक्ष तैयार करके देवता लोग पृथ्वी लोक को प्रदान करें। इस पर समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर जो वृक्ष बनाया उसका नाम देवद्रुम पड़ा। बाद में यवन प्रभाव में ये नाम बिगड़कर देवदारू हो गया। इस देवदारू से ही आज का देवदार बना है।
1: यानी देवद्रुम ही देवदारू है
0: और देवदारू ही देवदार है। याद करो, कुछ देर पहले जयशंकर प्रसाद की कामायनी से एक पंक्ति तुमने पढ़ी ना?
1: हाँ।
0: उसमें देवदारू शब्द आया। इसमें इस वृक्ष के लिए देवदारू शब्द का प्रयोग किया था जयशंकर प्रसाद ने, न कि देवदार का। जयशंकर प्रसाद जैसे भाषाई शुद्धता के प्रति विशेष सजग कवि से यही अपेक्षा थी।
1: सुनीता जी, प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी देवदारू की चर्चा मिलती है। देवदारू देवताओं का वृक्ष है, ये हिमालय का वृक्ष है, शिव का प्रेम है इस पर।
0: बिल्कुल,
1: इन कारणों से भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही इसकी महिमा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में, किष्किंधा कांड में इसका वर्णन मिलता है।
0: हाँ।
1: प्राचीन काल में शिव भक्त आश्रम बनाकर हिमालय के जंगलों में रहते थे। उनकी पहली प्राथमिकता वे स्थान होते थे जहाँ देवदारों के घने वन होते थे।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने मोनिका।
1: शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्वीगण देवदारों के नीचे बैठकर ही तपस्या करते थे। उनका विश्वास था कि इससे शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एक विशेष शब्दावली भी मिलती है, दारू कावन, जिसका अर्थ है देवदारू के वृक्षों का जंगल।
0: मोनिका,
1: हाँ?
0: तुमने बात की प्राचीन भारतीय संस्कृति में देवदारू के जिक्र की, है ना? रूसी संस्कृति में भी देवदार का जो वृक्ष है उसका खास स्थान है। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना ही है कि देवदारू ठंडे स्थानों पर उगने वाला वृक्ष है। यही कारण है कि भारत और दुनिया के उन तमाम जगहों पर ये मिलता है जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तो पाया ही जाता है, साथ में नेपाल, तिब्बत, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और रूस तक में ये वृक्ष मिलता है।
1: रूस चूंकि एक ठंडा देश है, इसलिए ज्यादातर वृक्ष शंकुधारी होते हैं, जैसे कि सनोबर, लार्च और देवदार। यहाँ के लोग अपने घरेलू चिकित्सा पद्धति में भी इन वृक्षों का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साइबेरिया के इलाके में देवदारू खूब मिलते हैं। इसकी गोंद का इस्तेमाल इस देश में घरेलू चिकित्सा के लिए किया जाता है। रूसी भाषा में इसे जीवित्सा कहते हैं, यानी जीवन देने वाली। यहाँ रूसी भाषा और संस्कृत भाषा का साम्य देखा गया है। सुनीता जी, जीवित्सा का शब्द देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसमें हमारी संस्कृत भाषा भी मिली हुई है?
0: बिल्कुल, मुझे बिल्कुल यही लगा कि ये संस्कृत का शब्द है।
1: वही अर्थ और वही ध्वनि। इससे उस थ्योरी को बल मिलता है कि यूरोपीय आर्य और भारतीय आर्य मूलतः एक ही है, जो बाद में चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो गए। ये एकता न केवल भाषा में बल्कि संस्कृति में भी मिलती है। देवदारू का जो महत्व भारत में है, वही रूस में भी है।
0: बिल्कुल मोनिका। खैर, थोड़ा सा हम भटक गए, विषयांतर हो गया। तो चलो अपने मूल प्रसंग पर लौटते हैं।
1: बिल्कुल,
0: देवदारू के गोंद की बात हो रही थी, है ना? देवदारू के गोंद को जीवित्सा इसलिए कहा जाता है मोनिका, क्योंकि ज्यों ही किसी घाव पर तेल मिलाकर ये गोंद लगाया जाता है, घाव तुरंत भर जाता है।
1: अरे वाह।
0: घाव चाहे कैसा भी हो, चीरा लग गया हो, कट गया हो, जल गया हो, या घाव में पस पड़ चुकी हो या सड़ गया हो, कोई बात नहीं, जीवित्सा को वनस्पति तेल में घोलकर उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: यानी कि बहुत ही लाभकारी है ये।
0: बहुत ही लाभकारी। यहाँ तक कि रूस के जो पुराने लोग थे ना, वो टूटी हड्डी पर भी ये गोंद लगाते थे और इससे हड्डी जुड़ जाती थी।
1: अरे वाह, ये तो चमत्कार जैसा है।
0: प्रकृति तो अपने आप में एक चमत्कार है ही।
1: इस गोंद की खासियत ये है कि पानी डालने पर भी ये नहीं घुलती, जबकि वनस्पति तेल डालने से घुल जाती है। यहाँ तक कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, वनस्पति तेल मिलाकर इस गोंद को लगाइए, दर्द फौरन ही उड़नछू हो जाता है। गले में दर्द हो या फिर टॉन्सिल्स बढ़ गए हो, रूसी लोग जीवित सा चूस कर इसको ठीक कर लेते हैं।
0: क्या बात है, देखो प्रकृति के रहस्य कितने निराले हैं ना।
1: बिल्कुल,
0: वही गोंद पानी में नहीं घुलता और वही गोंद तेल में डालने पर घुल जाता है।
1: ये तो अचंभे में डालने वाली बात है।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत से अचंभे प्रकृति में छुपे हुए हैं मोनिका। और पता है
1: क्या,
0: साइबेरिया के लोग देवदारू की गोंद को अपने दांत दर्द और मसूड़े के दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेट में फोड़ा हो जाने पर भी इससे बहुत लाभ होता है। देवदारू की गोंद को जलाकर पैदा की गई आग को भी रूस में बहुत पवित्र माना जाता है।
1: अच्छा।
0: फिर वही सांस्कृतिक साम्य जिसकी तुमने बात की कि भाई भाषा जीवित सा एक शब्द सुनकर लगता है कि संस्कृत और रूसी भाषा बिल्कुल एक है, उसी तरह से ऐसा नहीं लगता कि इसकी लकड़ी की अग्नि को वो इतना पवित्र मानते हैं। और हमारे यहाँ यही बात तो हवन के साथ है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जाना रूस में इस पेड़ के महत्व को, आइए अब जानते हैं कि लद्दाख संस्कृति में देवदार का कितना महत्व है।
0: मतलब देवदार के वृक्ष के साथ हम अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं क्या?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। लद्दाख क्षेत्र में स्थानीय वन्य चिकित्सकों को आमची कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: ये आमची देवदार के फूलों एवं पत्तियों के एक खास कॉम्बिनेशन के एक यंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के कठिन रोग का सफल एवं स्थायी इलाज हो जाता है। पश्तो भाषा की एक किताब है विल्लाख चासू, इसमें लद्दाख क्षेत्र की एक पौराणिक मान्यता का उल्लेख मिलता है कि आईसी, मंचूक, खंच, दायला और खिचास्तो नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर इस वृक्ष के पत्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पांचों नक्षत्र संस्कृत के हिसाब से रेवती, अश्विनी, मघा और अश्लेषा हैं, जिन पर देवदार यंत्र का असर नहीं होता।
0: ये भी दूसरा रहस्य। देखो मोनिका, ये तो बात हो गई लद्दाखी संस्कृति में देवदार की।
1: हाँ।
0: अब मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें लिए चलूँ स्विट्जरलैंड।
1: स्विट्जरलैंड, वाओ।
0: कैसी बांछे खिल गई ना तुम्हारी। भाई स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही आंखों के सामने कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, प्राकृतिक छटा छा जाती है आंखों के सामने।
0: दरअसल स्विट्जरलैंड के पर्यटन को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा है देवदारू ने। स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में क्या स्थान रखता है ये हम सब जानते हैं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है। है ना, यहाँ के पर्यटन के आकर्षण के पीछे यहाँ की प्राकृतिक छटा है, जिसे यहाँ के लोगों ने बड़े जतन से सहेजा हुआ है, हमारी तरह तहस नहस नहीं किया है। खूबसूरत लैंडस्केप, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और हरी भरी वादियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं।
1: सुनीता जी, आपने ये सब बातें बोल के तो मुझे सच में स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। वैसे कहते हैं कि यहाँ केवल सूरज नहीं उगता बल्कि पहाड़ भी उगते हैं। स्विस आल्प्स का संसार जंगलों के सौंदर्य का खजाना समेटे हुए है। पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, जो आसमान में धस्ती सी नजर आती हैं।
0: फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं, है ना।
1: पर्वत से झर झर झरते झरनों का संगीत कानों को झंकृत कर देता है। और इस पृष्ठभूमि में जब हवा में झूमते पाइन व देवदारू के वृक्ष नजर आते हैं तो सौंदर्य का मानो रहस्य लोग रच जाता है।
0: और इस रहस्य लोग में हमारा जो मन है वो बिल्कुल खो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: वैसे मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि क्यों इस देवदार का आकार कोन की तरह होता है?
1: नहीं।
0: मैं बताती हूँ।
1: बताइए।
0: दरअसल प्रकृति से बढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तभी तो अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसने वहाँ के जीव जंतुओं वनस्पतियों की डिजाइनिंग की है। है ना? देवदारू के जो शंकु यानी कोण के आकार की मैं बात कर रही थी ना।
1: हाँ?
0: उसका कारण भी यही है।
1: अच्छा।
0: चूंकि ये ठंडे स्थानों का वृक्ष है इसलिए पूरे वृक्ष का एक शंकु की तरह विकास और इसकी पत्तियों का नुकीलापन इस वृक्ष को और इसकी पत्तियों को ठंडक से बचाता है।
1: ठंडक की बात हो रही है और जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था कि इसका जो आकार रहता है वो आइसक्रीम के कोन की तरह होता है, तो कहीं आइसक्रीम के कोन का आकार देने से पहले उन्होंने इस वृक्ष को तो नहीं देख लिया था?
0: ये एक दूसरा ही प्रश्न है और एक अलग चर्चा का विषय है।
1: चलिए, हमने बात की कि देवदारू के वृक्ष का आकार कोन की तरह क्यों होता है, आइए अब बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। टिम्बर इंडस्ट्री में देवदारू एक बहुउपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी लकड़ियाँ टिकाऊ होती हैं और पानी में सड़ती नहीं है, हालांकि ये उतनी मजबूत नहीं होती। न सड़ने वाले गुणों के कारण श्रीनगर के हाउस बोट्स प्रायः इसी के बने होते हैं। टिकाऊपन और न सड़ने वाले गुणों के कारण ब्रिटिश काल में तो हर तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है।
0: बिल्कुल, देवदार की लकड़ी में क्लोज ग्रेन्स होते हैं, इसकी वजह से इसमें फाइन क्लास की पॉलिश हो जाती है। यही कारण है कि इसे गोल्ड कोन भी कहा जाता है। मंदिरों को बनाने में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता रहा है।
1: देवदार के फूल बड़े ही दुर्लभ होते हैं, यही कारण है कि ऐसे इने गिने देवदार वृक्ष जिन पर फूल खिलते हैं उन्हें सरकार ने अति सुरक्षित श्रेणी में घोषित कर रखा है। यहाँ तक कि इन फूलों की कालाबाजारी भी होती है।
0: मतलब फूलने वाले देवदार के वृक्ष बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। यानी ये जो आइसक्रीम का कोन है वो देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत तरसा कर फूलता है। इस संबंध में मोनिका एक पौराणिक उल्लेख भी मिलता है।
1: और वो क्या है भला?
0: भगवान शिव ने ये कह रखा था कि लोग यदि इस देव वृक्ष का आदर नहीं करेंगे और इस पर अत्याचार करेंगे तो इस पर फूल लगने बंद हो जाएंगे।
1: यानी इससे ये पता लगता है कि इंसान ने इस वृक्ष पर कितना अत्याचार किया है, तभी तो इस पर फूल खिलने कम हो गए हैं।
0: इसे हमने कम सहेजा, ये तो जाहिर है।
1: सुनीता जी, क्या आपको पता है कि वृक्षों से हमारा करियर भी बन सकता है?
0: बड़ी गहरी बात तुमने की है।
1: आज करियर की चुनौती बड़ी है लेकिन चिंता की बात नहीं, वृक्ष प्रेम को अगर आप चाहें तो अपना करियर भी बना सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी विशेषज्ञता स्थापित हो। यदि आपने 12वीं तक साइंस पढ़ा है तो आप BSc इन फॉरेस्ट्री का कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद अवसरों की भरमार हो जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर लोगों का भी ज्यादा ध्यान नहीं है, अतः काम अभी आसानी से मिल जाता है।
0: अगर और अधिक ऊंचाई पर जाना चाहते हैं आप तो इसी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर इन फॉरेस्ट इकोनॉमी, मास्टर इन फॉरेस्ट वुड साइंस टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज इसमें उपलब्ध हैं। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं श्रोताओं, तो वृक्षारोपण के क्षेत्र में सक्रिय बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स में बतौर प्रबंधक आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। वन्य जीव और वन संरक्षण से जुड़े NGOs में भी फॉरेस्ट्री विशेषज्ञों की मांग है।
1: अगर पर्यावरण के प्रति आपकी रुचि है तब तो ये कोर्स आपके लिए एक पंथ और दो काज का काम करेगा। हरियाली के बीच करियर चलेगा और फिर क्या चाहिए, आपकी उम्र में कम से कम 10 साल का इजाफा तो हो ही जाएगा।
0: मतलब फायदे ही फायदे, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुनीता जी, चलिए हम भी चलते हैं ये कोर्स करने के लिए और फिर रहेंगे बड़े ही आराम से हरियाली के बीच में।
0: बिल्कुल, और सिर्फ कोर्स ही नहीं करना है मोनिका, कोर्स तो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं, वो जरूर करूंगी, लेकिन साथ में हमें वृक्षारोपण भी करना है ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल संरक्षित रहे, सुंदर रहे। और जो हमने शुरू में बात की थी ना कि आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, तो हम पेड़ों को गले लगाएं, अपने हाथों का बहुत ही केयरिंग स्पर्श उसको हम दें, तभी बात बनेगी।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये वादा करें कि हर साल कम से कम एक वृक्ष जरूर बोएंगे।
0: तो इसी वादे इसी इरादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह
1: और मोनिका तिवारी को।
0: लेकिन चलने से पहले श्रोताओं को बता दें कि आज का कार्यक्रम था एक चर्चा पेड़ों के नाम, जिसमें हमने चर्चा की वृक्ष देवदार की। तो श्रोताओं बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद,
1: देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, अमेजॉन पॉडकास्ट और साथ ही यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप मंडल 1 के सूक्त 189 का वाचन सुनेंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम पेश किया जाएगा 5:10 पर। वतन का राग कार्यक्रम सुनिए, शाम 6 बजे प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती पर आधारित है। हार के महत्व बाल सभा कार्यक्रम में सुनिए 6:30 पर। टेक गुरु प्रकृति की पुकार, पर्यावरण संरक्षण और कानून पर विशेष कार्यक्रम हमारा 7 बजे सुनेंगे आप। हमारी सेना हमारा गर्व पेश किया जाएगा 7:30 पर। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप इसमें जानकारी हासिल कर सकेंगे। 8 बजे सुनिए कार्यक्रम देश के संस्थान मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। आजाद हिंद कार्यक्रम 8:30 पर पेश किया जाएगा, जो केंद्रित है पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर। रेडियो रिपोर्ट 9 बजे पेश की जाएगी और 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम रश्मि रथी भाग 8। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। वेद पुराण आख्यान ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 179 से वाचन। ऋषि हैं लोपा मुद्रा, अगस्त्य मैत्रा वरुणी, अगस्त्य शिष्य ब्रह्मचारी, देवता हैं रति, छंद है त्रिष्टुप और बृहति।
3: पूर्वी रहम शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तो ऋषसो जरयंती ही मीनातिश्रियम जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीर वृषणो जगम्युः। देवी लोपा मुद्रा कहती हैं, हम विगत जीवन के अनेक वर्षों से उषा काल सहित दिन रात श्रमनिष्ठ तपरत रहे हैं। वृद्धावस्था शरीरों की क्षमताओं को क्षीण कर देती है, इसलिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की दृष्टि से समर्थ पुरुष ही पत्नियों के समीप जाएं। ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंत साकम देवे भीरवदन रितानी ते चिदवासुर नहियंतमापुः समूनु पत्नीर वृषभिर जगम्युः। पूर्वकाल में जो सत्य की साधना में प्रवृत्त ऋषि स्तर के व्यक्ति हुए हैं, जो देवों के साथ सत्य बोलते थे, उन्होंने भी संतानोत्पत्ति का कार्य किया, अंत तक ब्रह्मचर्य आश्रम में ही नहीं रहे। उन श्रेष्ठ समर्थ पुरुषों को पत्नियां उपलब्ध कराई गईं। नम्रशा श्रांतम यदवंती देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव जया वेदत्र शतनीथ माजिम यत सम्यंचा मिथुना वभ्यजाव। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि हमारा अब तक का तप बेकार नहीं गया है। देवता श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के कारण हमारी रक्षा करते हैं, अतः हमने विश्व की सारी स्पर्धाएं जीत ली हैं। हम दंपति यदि अब उचित ढंग से संतान उत्पन्न करें तो इस जीवन में 100 वर्षों तक जीवन की चुनौतियों में विजयी होंगे। नदस्य मारुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित लोपामुद्रा वृषणम् नी ऋणाति धीरमधीरा धयति श्वसंतम्। लोपामुद्रा नदी के प्रवाह को सब ओर से रोक लेने वाले संयम से उत्पन्न शक्ति को संतान प्राप्ति की कामना की ओर प्रेरित करती हैं। यह भाव इस शारीरिक स्वभाव अथवा उस कर्तव्य बुद्धि या किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ता है। श्वास का संयम रखने वाले समर्थ धीर पुरुष अधीरता को नियंत्रण में रखते हैं। इमं नु सोम मंतितो हृत्सु पीत मुपब्रुवे यत सीमागाश्चक्रमा तत्सु मृणतु पुलुकामो हिमर्त्याः। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद शिष्य के भाव हैं कि सोम औषधि रस जो विशेष रूप से है उसके निकट जाकर भावना पूर्वक उसका पान करते हुए वह प्रार्थना करता है। मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं वाला है, यदि मेरे मन में कोई विकार आया हो तो यह सोम अपने प्रभाव से उसे शुद्ध कर दे। अगस्त्य खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः उभौ वर्णा वृषिरुग्रह पुपोष सत्या देवेश्वाशिशो जगाम। उग्र तपस्वी अगस्त्य ने शोध क्षमता से नए नए शोध कार्य करते हुए संतान उत्पन्न करने वाले तथा तप द्वारा शक्ति अर्जित करने वाले दोनों प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों का पोषण किया और इस प्रकार देवताओं के सच्चे आशीर्वाद को प्राप्त किया।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 179 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान या आप कह लो भीष्म पितामह और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
3: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान रसायन शास्त्री, उद्यमी और शिक्षक थे। आचार्य राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता ही नहीं, रसायन उद्योग के संस्थापक भी थे। सादा जीवन और उच्च विचार वाले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि शुद्ध भारतीय परिधान में इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। आचार्य राय की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट के प्रकाशित होने पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखा था कि लिपिबद्ध करने के लिए संभवतः प्रफुल्ल चंद्र राय से अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र किसी और का नहीं हो सकता। आचार्य राय भारत में केवल रसायन शास्त्र ही नहीं, आधुनिक विज्ञान के भी प्रस्तोता थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के खुलना जिले के ररूली कतिपरा गांव में 2 अगस्त 1861 को हुआ। उनके पिता हरिश्चंद्र राय संपन्न गृहस्थ और फारसी के विद्वान थे। अंग्रेजी शिक्षा की ओर उनका आकर्षण था, इसलिए उन्होंने अपने गाँव में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया। इसी स्कूल में प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की।

प्रफुल्ल जब 12 साल के थे तो दूसरे बच्चे परियों की कहानी सुनते थे, लेकिन वे गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की जीवनियां पढ़ते थे। रसायन शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन के व्याख्यान सुनने के लिए जाते थे। इसके बाद विज्ञान के विषयों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी मेहनत और अध्ययन के बल पर उन्होंने एफए के साथ इंग्लैंड के एडिनबरा विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप परीक्षा पास की और 1882 में वे बीएससी के छात्र बनकर एडिनबरा गए। इसी विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हुए उन्होंने 1887 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद स्कॉलरशिप पाकर वे वहीं पर एक साल तक शोध करते रहे। सन 1888 में जब वे भारत लौटे तो यहां रसायन का उच्च अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। एक वर्ष के अंतराल के बाद उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंसी कॉलेज के रसायन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे तब उन्होंने देखा कि उनसे कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों और कहीं अधिक वेतन पर कॉलेज में नियुक्त थे। उन्हें जब इस अन्याय का पता चला तो उन्होंने शिक्षा विभाग के तत्कालीन अंग्रेज डायरेक्टर से इसके प्रति विरोध दर्ज किया। तब अंग्रेज डायरेक्टर ने व्यंग करते हुए कहा था कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते।

प्रोफेसर राय पहले भारतीय थे जिन्हें किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राय एक समर्पित कर्मयोगी थे। उनके मन में विवाह का विचार कभी नहीं आया और पूरा जीवन उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक कमरे में काट दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में कार्य करते हुए उन्हें तत्कालीन महान फ्रांसीसी रसायन शास्त्री बर्थेलॉट की पुस्तक द ग्रीक एल्केमी पढ़ने को मिली। उन्होंने बर्थेलॉट को पत्र लिखा कि भारत में भी अति प्राचीन काल से रसायन की परंपरा रही है। बर्थेलॉट के आग्रह पर डॉक्टर राय ने नागार्जुन की पुस्तक रसेंद्र सार संग्रह पर आधारित प्राचीन रसायन के विषय में एक लंबा लेख लिखकर उन्हें भेज दिया। बर्थेलॉट ने इसकी एक अत्यंत विद्वतापूर्ण समीक्षा जर्नल डे साइंस में प्रकाशित की, जिसमें आचार्य राय के कार्य की प्रशंसा की गई। इससे उत्साहित होकर आचार्य ने अंततः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का लेखन किया, जो विश्व विख्यात हुई और जिसके माध्यम से प्राचीन भारत के विशाल रसायन ज्ञान से समस्त संसार पहली बार परिचित हुआ और आश्चर्यचकित रह गया। 1912 में इंग्लैंड के अपने दूसरे प्रवास के दौरान डरहम विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें अपने विश्वविद्यालय की मानद डीएससी उपाधि प्रदान की। रसायन के क्षेत्र में आचार्य ने 120 शोध पत्र प्रकाशित किए। मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट नामक यौगिकों के प्रथम विरचन से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर राय ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया था और पारद नाइट्रेट नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1896 में उन्होंने ही तैयार किया। इसके बाद से ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने इस यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए और कई महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं को सुलझाया। उन्होंने अमोनियम, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेटों के संबंध में भी महत्वपूर्ण खोजें की और एमाइन नाइट्रेटों को विशुद्ध रूप में तैयार करके उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पूरा विवरण दिया। उन्होंने ऑर्गेनोमेटैलिक यौगिकों का भी विशेष रूप से अध्ययन कर कई उपयोगी तथ्यों का पता लगाया और पारद, गंधक और आयोडीन का एक नवीन यौगिक तैयार किया तथा दिखाया कि प्रकाश में रखने पर इसके क्रिस्टल्स का रंग बदल जाता है और अंधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग में वापस आ जाता है। सन 1904 में बंगाल सरकार ने उन्हें यूरोप की विभिन्न रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए भेजा तो विदेश के विद्वानों और वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। संयमित जीवन जीने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की मृत्यु 83 वर्ष की उम्र में 19 जून 1944 को हुई। वे भारतवासियों के लिए हमेशा वंदनीय रहेंगे।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो शह

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: छेड़ देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।
2: लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, मैं हूँ ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे हार के महत्व की।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों, अब आप कहेंगे हार का भी कोई महत्व होता है? हमने जब देखा है, हमने जब सुना है, तो बात जीत की हुई है, सक्सेस की हुई है। फेलियर, असफलता, हार भी कोई बात करने की चीज है। कोई होगा जो कभी हारना चाहे? हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी हार का अनुभव जरूर किया है, हार या असफलता का। मैं अपनी बात बताऊं तो कितनी ही बार मैं क्लास में, टेस्ट में, एग्जाम में फेल हुई, वह हार थी। कई कंपटीशन में भाग लिया, वहां भी सेलेक्ट नहीं हुई, दूसरे साथी जीत गए या सफल हुए तो भी मैं हार गई। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने हार का सामना नहीं किया हो। हम जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई लेखक हो, तो हमें केवल और केवल उनका सक्सेस या सफलता दिखती है। हमने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस सफलता के पीछे बहुत छोटी छोटी हार या असफलता छुपी हुई है। जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है, छोटे छोटे कदम लेता है, तो गिरता है। हर कोई हो, आप हो, मैं हूँ, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसे हार मान लेंगे? तो क्या चलना छोड़ देंगे? कभी नहीं। कहते हैं जिंदगी में सक्सेस का मजा लेने के लिए हार बहुत जरूरी होती है। हार आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। थॉमस एल्वा एडिसन, जब उन्होंने बल्ब बनाया, तो उससे पहले पता नहीं कितनी बार असफल हुए, और किसी ने उनसे पूछा कि आपने हिम्मत नहीं हारी जब आप असफल हुए? उन्होंने हंसकर कहा, मैंने केवल सक्सेस ही देखा है, मैंने सीखा कि क्या क्या चीजें हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं करती। तो माने तो हार का जीवन में महत्व है। अब दुनिया में हर कोई इस चीज को नहीं समझता, इसलिए हम सब कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं, कहीं हार ना जाए, कहीं असफल ना हो जाए। अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा हमारे साथ? आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना? सारे लोग केवल कछुए के जीतने की बात करते हैं। हर कहानी जो हमने पहले सुनी होगी, चाहे वो लोमड़ी की हो जो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, कि वो कोशिश करती रही और फिर यह कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे थे। मैं इस कहानी में ये देखती हूँ कि लोमड़ी ने कोशिश तो की, और देखा जाए तो हार जैसी शायद ही कोई चीज दुनिया में होती हो। हार का हम मतलब क्या लेते हैं? हार का मतलब लेते हैं कि हम उस चीज को जो चाहते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम सोचते हैं हमारी हार हो गई। हमें जितने मार्क्स चाहिए थे एग्जाम में, वो मार्क्स नहीं आए। हम किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए, तो हम समझते हैं हमारी हार हो गई है। लेकिन हार होती नहीं है, जब भी आप कोई काम करते हो उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, और शायद हार से ये सीखते हो कि हमें और क्या करने की जरूरत है। अच्छा, आप एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? ये कहानी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। एक बार क्या हुआ कि एक फादर अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने, उसका नाम केशव था, क्लास में टीचर के पास गए। अब केशव पढ़ने लिखने में शायद उसका ज़्यादा ध्यान रहता नहीं था, क्लास में मस्ती, इधर उधर घूमना, और हर बार केशव की माँ उसे समझा के कहती, बेटा पढ़ लिया कर, जिंदगी में करेगा क्या आगे, सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। वो हंसता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती तो हम में से जैसे कई लोग होते हैं, मन नहीं लगता था, कभी टीवी देखने लगता, कभी कुछ खाने लगता। अब टाइम आ गया था एग्जाम के रिजल्ट का, और जैसा आप सबको पता है कि जब इम्तिहान का रिजल्ट आता है तो माँ बाप को बुलाया जाता है। उस दिन सुबह सुबह पिताजी तैयार हो गए, केशव का हाथ थामे कि चलो रिजल्ट लेके आते हैं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन केशव को कोई टेंशन नहीं था, वो टेंशन लेने वाले लोगों में से था ही नहीं। क्लास में जब पहुंचे तो काफी भीड़ थी, सारे बच्चे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड टीचर से ले रहे थे, सारे पेरेंट्स उनको गले लगा रहे थे, कितना अच्छा किया है, कितने अच्छे नंबर आए हैं, अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब जब केशव की बारी आई तो टीचर ने केशव के पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर का ही दिल धड़क रहा था कि ये रिपोर्ट कार्ड कैसे उनके पिताजी को दे। नंबर बताऊं,

0: क्या हाल होगा। उन्होंने कितनी मेहनत की थी केशव को पढ़ाने में।
1: केशव ने पिताजी की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि नहीं भाई, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ है। उसने पिता की आंखों में दुख देखा।
0: जब वह रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर निकले तो एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई। केशव भैया, केशव भैया, ये लो अपनी पेंसिल। और उसने पेंसिल केशव के हाथ में रख दी। अंकल, जब मेरे पास पेंसिल नहीं होती है ना, तो केशव भैया अपनी पेंसिल मुझे दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए केशव रोज घर से पेंसिल लेकर जाता है। वो पेंसिल देकर दूसरों की मदद करता है। पिताजी थोड़ा आगे चले, एक आदमी दिखा। अरे केशव बेटा, तुम जो रोज कुत्ते को रोटी खिलाते हो, देखो कितना बेहतर हो गया ये कुत्ता। पहले कितना दुबला पतला था। केशव के पिता को बात समझ में आई कि इसलिए केशव अपनी माँ से ज्यादा रोटियां बनवा कर ले जाता है, क्योंकि वो रोटियां कुत्ते को खिलाता है। थोड़ा और आगे चले तो एक पड़ोस वाले अंकल, जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा, बेटा तू रोज दवाई लाता है मेरी और रोज पूरे के पूरे पैसे गिन कर वापस करता है। जीता रह बेटा, जीता रह। पिता को समझ में आया कि इसलिए केशव को स्कूल से आने में थोड़ी देर होती है। केशव के पिता घर पहुंचे। माँ ने पूछा, कैसा रहा रिजल्ट? रिपोर्ट कार्ड देखा तो सब्जेक्ट्स में तो नंबर कम थे, पर जिंदगी में जो चीजें जरूरी हैं, लोगों पे दया, लोगों की सहायता करना और जानवरों की रक्षा करना, उनको खाना देना, उसमें केशव के नंबर बहुत बहुत बहुत ज्यादा थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप किसी एक चीज में हार गए हैं। जीवन के बहुत से पहलू होते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, पर आप गाना अच्छा गा लेते हो। हो सकता है आपके मैथ्स में मार्क्स कम आते हो, पर आप दूसरों की सहायता करते हो। तो जब भी कभी आप हारें, जब भी कभी आपको ये लगे कि जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है और आपको हार महसूस हो रही है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे कर पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप वो क्या कर पा रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। हार हमेशा अकेली नहीं होती। जब भी कभी आप हारें तो एक चीज ध्यान रखिए कि हार कभी फाइनल नहीं होती है। हार केवल सफल मार्ग तक पहुंचने का केवल एक रास्ता होती है। और कहते भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तब तक आप हार ही नहीं सकते। आपने हैरी पॉटर किताब का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत चर्चित किताबों में से एक है। इस हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके राउलिंग, उनको कितनी बार वो अपनी किताब लेके गई लोगों के पास छापने के लिए और सबने मना कर दिया। तो क्या वो हार मानकर बैठ गई? उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वह कोशिश करती रही, कोशिश करती रही, और फिर एक दिन हैरी पॉटर दुनिया की सबसे चर्चित किताब बन गई। अमिताभ बच्चन की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अमिताभ बच्चन जी का जीवन अगर आप कभी पढ़ें तो फिल्मी दुनिया में उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था। उनको पिक्चरें नहीं मिलती थीं, लोग कहते थे ये इतने लंबे हैं, उनको कास्ट नहीं करते थे लोग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने उनकी प्रतिभा देख ली। तो क्या उन्होंने काम करना

0: छोड़ दिया। जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी। हार तब होती है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करना छोड़ दें। वह आपने कविता सुनी या पढ़ी होगी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार गिरती है और फिर चढ़ती है, लेकिन वो दाना ले जाना नहीं छोड़ देती। तो करना क्या है, हमको केवल कोशिश करते रहना है। हर बार देखना है कि पिछली बार हमने क्या ऐसी भूल की थी, कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ की थी कि जो हम सफल नहीं हो पाए, और फिर उस चीज़ पे ध्यान देनी है। मान लीजिए आप कभी स्टेज पर गए, माइक पकड़ा और जो आप तैयार कर कर आए थे आप बोलना भूल गए, आप घबरा गए, आप उतर कर आए और आपको लगा कि मैं तो हार गया हूँ, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं असफल रहा। लेकिन अगर आप इस चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचें तो शायद अगली बार आप वो चीज़ें करके जाएंगे जो आपको बोलने में फ़ायदा दे। तो शायद अगली बार आप वो सब चीज़ें तैयार करके जाएंगे जो आप पहली बार नहीं कर पाए। जैसे छोटी सी चीज़ है कि स्टेज में जाने से पहले 2-3 बार डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना जिससे आप नर्वस ना हो, या फिर 2-3 बार जिन जगह आप अटके हों उन चीज़ों को और ध्यान से पढ़ना। कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप मैथ के एग्ज़ाम में, मान लीजिए मैं इसलिए बार बार मैथ कह रही हूँ क्योंकि मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मान लीजिए आपको मैथ का कोई सवाल नहीं आता है और आपके कई स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में मेरी गलती हुई है, दोबारा उसको जा सकते हैं या कोई और दूसरा तरीका अपना सकते हैं याद करने का, समझने का, तो बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो कुछ लोग होते हैं जो दुनिया जिनको देखती है कि ये कभी कोई गलती ही नहीं करते, ये तो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको देख के लगता होगा कि शायद इनमें दिमाग ज़्यादा है या इनमें काबिलियत ज़्यादा है। हो सकता है कि उनमें दिमाग ज़्यादा हो सकता है कि उनमें काबिलियत ज़्यादा हो सकता है कि वो चीज़ें 2 बार में कर पाएं जो कोई दूसरा 4 बार में करे, पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप कोशिश करते रहें और कर ना पाएं। एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, उस लड़की की कहानी जो कभी कोई गलती करती ही नहीं थी। सारे लोग स्कूल में, उसका नाम वृंदा था, उस नाम से नहीं जानते थे, वह जानते थे ऐसी लड़की जो कभी गलती नहीं करती। परफेक्ट काम होता था उसका, सुबह उठती थी, अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी, दोनों मोजे पहनती थी, पानी की बॉटल लेती थी, अपना टिफिन अच्छे से बैग में रखती थी, उसने क्लास में होमवर्क किया होता था, वो क्लास में सब चीज़ ध्यान लगा के सुनती थी, टीचर को गुड मॉर्निंग करती थी, जब शांत होने को बैठा जाए, बोला जाए, तो शांत होके बैठती थी क्लास में। माने कोई गलती नहीं, परफेक्ट स्टूडेंट। सारे घर में लोग भी उसे कहते थे, वृंदा तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। वृंदा कोई गलती नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी कि सारा काम मुझे ठीक ठाक तरीके से ही करना है। कभी हंसती नहीं थी, उसका सारा दिमाग लगा रहता था कि अब इस काम को परफेक्ट ढंग से, बिल्कुल ठीक से कैसे किया जाए। वहीं पर उसका छोटा भाई बंटू से कोई काम ठीक से नहीं होता था, पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता था, रिमोट बिस्तर के नीचे रह जाता था, जब स्कूल पहुंचता तो देखता मोजे दूसरे अलग अलग पहने हुए हैं, होमवर्क अगर हिंदी का कर लिया तो इंग्लिश का भूल जाता था, क्लास में हंसता ही रहता था, हंसता ही रहता था, हंसता ही रहता था। और वृंदा बिल्कुल चुपचाप। एनुअल फंक्शन वाले दिन वृंदा बहुत नर्वस थी। उसको एक सोलो सॉन्ग यानी एकल गीत गाना था। सबको पता था वृंदा ने बहुत मेहनत की होगी, वो गलती तो कर ही नहीं सकती। बंटू उसको पेड़ बनाया गया था क्योंकि लोगों को लगता था पेड़ थोड़ा बहुत हिल भी गया तो चल जाएगा। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सारे स्कूल के पेरेंट्स बैठे हुए थे और वृंदा हाथ में माइक लेके स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, कहीं से एक चूहा आके तार के पीछे और भड़ाम, वृंदा स्टेज में गिर गई। वृंदा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई काम उससे गलत होगा या कोई काम वो कर नहीं पाएगी। वो थोड़ी देर तक खड़ी हुई, तभी बंटू जो पेड़ बना हुआ था चलता चलता आया और बोला, वृंदा दीदी उठो। और सारा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज गया। वृंदा भी हंसने लगी, वह पहली बार हंसी थी। अब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में किसी भी छोटी चीज को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वह पहली बार हंसी थी और वो भी अपनी हार पर। तो एक चीज बताऊं, जिस दिन आप अपनी हार पर हंसना शुरू कर देंगे, जीवन की परेशानियां वैसे ही कम हो जाएंगी। और एक और तरीका बताऊं आपको, जब भी कभी आप किसी चीज में असफल हों तो अपने आप से वैसे ही बातें करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड रेस में हार गया, तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अगली बार और कोशिश कर लेना, अरे तू दौड़ा तो अच्छा था ना। तो यही चीज आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी। हो सकता है कोई कमी रह गई हो सकता है एक दो बार करने के बाद मुझे ये चीज आ जाए। तो जिंदगी में हार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कई चीजें सीखते हैं। तो बच्चों, जब हम हार पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जरा आंखें बंद करिए और उन अनुभवों को याद करिए कि जब आप कभी हारे हो। आंखें बंद करिए, हो सकता है कोई क्रिकेट मैच हो सकता है स्टेज पे कुछ बोलने में, या कि कभी क्लास में असफल हुए हो, या खाना बनाना सीखा हो, घर में कोई नई डिश बनानी सीखी हो और आप उसमें असफल हो गए हो, या म्यूजिक क्लास में या किसी कोचिंग में। सारी चीजों को याद करिए। बड़ा खराब लगता है ना जब हारते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम सबसे कमतर हैं, हमें कोई चीज आती नहीं है। हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं। हमको अपनी ये सेल्फ टॉक बदलनी है। जब भी आप कभी हारें तो 3-4 चीजों पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं कर सकता था, या जिस पर मैं ध्यान देता तो शायद बेहतर कर लेता? आगे मुझे ऐसी कौन सी स्किल या खूबियां डेवलप करनी है अपने आप में कि मैं जब वो काम करूं तो उसे अच्छे से कर पाऊं? और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस असफलता से क्या सीखा? आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मान लीजिए कि आप एक मैच हार गए तो आप की क्या क्या सीखे रही होंगी? हो सकता है आपने सीखा हो कि टीम वर्क जरूरी है, हो सकता है आपने सीखा हो कि शांत रहकर खेलना जरूरी हो, या कि धैर्य रखना जरूरी है?
1: कुछ भी चीजें हो सकती हैं।
0: आप ध्यान देंगे तो आप उन सब चीजों को ढूंढ पाएंगे जो आपको और बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक हो जाएं। मान लीजिए आपने मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती थी जो आपकी इस सफलता में बाधक हुई। हो सकता है आप नर्वस हो रहे हों, तो जैसा मैंने पहले बताया, गहरी सांसें लेकर स्टेज पर जाएं। हो सकता है अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार नहीं 20 बार प्रैक्टिस करते तो आप स्टेज पर और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। सीखे आपकी हो सकती हैं, लेकिन सीखे होती जरूर है। हर हार में, हर असफलता में कुछ न कुछ सीख हमें जरूर मिलती है, जो हमें जिंदगी में हमेशा काम आती है। वो कहते हैं ना, जीत खुश करती है पर हार समझदार बनाती है। तो समझदार तो सबको बनना है ना, तो हार में कभी भी दुखी नहीं होना है। हाँ, जरूर हमें थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन हमें उन ख्यालों को सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है, जब तक कि हम वो चीज़ थोड़े और बेहतर ढंग से ना कर पाए। वो कछुए की बात याद है ना आपको? कछुआ तो बेचारा इतना धीमे धीमे चलता था, पर उसने खरगोश से बाजी मार ही ली, क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। बस हमें यही करना है, जिंदगी आसान हो जाएगी। हार के सामने हार नहीं माननी है, बस यही कहना चाहूंगी आपसे आज। तो प्यारे दोस्तों, आशा करती हूं कि आज आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि जीवन में हार का कितना महत्व है और हारना क्यों जरूरी है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। तकनीकी ज्ञान पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए, टेक गुरु।
2: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
3: धन्यवाद मनीषा जी।
2: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
3: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
2: जी।
3: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो। इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
2: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की, अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
3: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है
2: जी।
3: हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर हैं।
2: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
3: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था, क्योंकि वो सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास एक मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके। वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वही आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं, उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है। अब लोग सजग हो गए।
2: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
3: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
2: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
2: जी।
3: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
2: जी।
3: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल इक्विटी
2: जी।
3: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, और बच्चों की क्या, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
2: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं?
3: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है, और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है
2: जी।
3: भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है
2: जी। ने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
3: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेशा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है, इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी, अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं, जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देखकर ही वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहां पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
4: जी।
3: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
4: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
3: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में, बहुत सिंपल, आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
4: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा, हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्वजिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
3: एकदम सही बात,
4: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
3: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
4: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
3: एकदम सही।
4: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
3: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं
4: जी।
3: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें, ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
4: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
3: एकदम।
4: अगर
3: एक
4: हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दांव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
3: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में। जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें।
4: जी,
3: स्वयं लिखे और भेजे।
4: जी, पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज़ से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
3: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया।
4: जी।
3: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है। कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ। उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है। लोग मुझे शंकरगढ़ की पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
4: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहाँ खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
3: जरूर।
4: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
3: आपका भी धन्यवाद और आभार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे तकनीकी ज्ञान पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम टेक गुरु। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। भारतीय सेना की आन बान और शान पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत है हमारी सेना हमारा गर्व।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओ, हर सुबह जब हम उठते हैं तो उठते हैं एक लक्ष्य को लेकर कि आज हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। फिर चल पड़ते हैं अपने उन गंतव्यों की ओर, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो हमने अपने भविष्य को लेकर देखे हैं या जो हमारे वर्तमान को संवार रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, हमारे बीच ही हम में से ही कुछ लोग थोड़ा अलग हटकर सोचने वाले होते हैं, जो होते तो हैं हमारी ही तरह समाज का एक हिस्सा, लेकिन जब देश को जरूरत पड़े तो एक वर्दीधारी सैनिक भी बन जाते हैं। कौन है ऐसे लोग जो समाज के सामान्य नागरिक जीवन को जीते हुए भी भारतीय सेना के एक वीर सिपाही की भूमिका भी निभा लेते हैं? तो श्रोताओं, ये हैं भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी के सतर्क और शूरवीर सैनिक, जो कि जब जब भी देश को उनकी जरूरत हो देश की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि किस तरह हमारे देश की टेरिटोरियल आर्मी काम करती है और किस तरह हम भी इसमें शामिल होकर देश सेवा के सपने को पूरा कर सकते हैं, और इसमें शामिल होने के लिए क्या क्या सीमाएं और शर्तें हैं, और टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े वे सभी तथ्य जो हमें जानना चाहिए, इन सभी की चर्चा आज कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम की कड़ी में। कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व, और एक बार फिर इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
3: जय हिंद पूर्वा जी। जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, टेरिटोरियल आर्मी, जैसे आपने कहा
2: जी,
3: रिजर्व मिलिट्री फोर्स होती है जो कि वॉलंटियर्स के द्वारा, मतलब जिसमें जो भी उसमें सर्विस करते हैं
2: जी।
3: तो टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर भारतीय को एक मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि वो देश की सेवा यूनिफॉर्म में कर सके
2: जी, वर्दी,
3: देश की सेवा तो हर एक कोई करते हैं
2: जी,
3: लेकिन
2: जी,
3: वर्दी पहन के
2: हाँ,
3: देश की सेवा कर सके
2: जी।
3: तो टेरिटोरियल आर्मी जो होती है वो इंडियन आर्मी जो रेगुलर आर्मी है एक तरह से उसका ही हिस्सा है, और इनका जो मेन काम होता है
2: जी,
3: वो होता है कि जो रेगुलर आर्मी है जब जरूरत पड़ती है देश को तो उनको वो स्टैटिक ड्यूटीज जो होती हैं उससे रिलीव करके आगे, मतलब वॉर में अपना जो है योगदान देने के लिए रिलीव कर रहे सकती है
2: जी,
3: और बाकी जो काम बॉर्डर के ऊपर होते हैं उसके लिए मतलब रिलीव कर सकती है।
2: यानी सर, जब सेना को सीमा पर आवश्यकता है तब जब सेना के जो पुराने ठिकाने हैं या जो पहले जो कार्य कर रही थी, जो कर्तव्य कर रही थी, उनमें अब ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है,
3: जैसे हमारे एमिनेशन डंप्स पे ड्यूटीज होती हैं
2: हाँ जी,
3: या जैसे अगर सीआई हम काउंटरटेरिज्म जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उसमें रोड ओपनिंग पार्टीज लगती हैं
2: जी,
3: और गैरिसन ड्यूटीज होती हैं, तो ऐसी काफी सारी महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती हैं, ब्रिज गार्डिंग वगैरह होता है
2: हाँ।
3: तो जिसके लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, और इनसे जो है सेना को बहुत बड़ी मदद मिलती है। ये सेना का एक तरह से अभिन्न अंग है। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मदद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मतलब इनकी सहायता ली जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आती है वहां पे भी मतलब जो है ये लोग कार्य करते हैं। अब इसके बारे में क्या है कि डीए जो होती है वो रेगुलर जॉब नहीं होती है, इसलिए क्या है कि जो डीए में जो लोग सर्व करते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, उनके लिए एक मैंडेटरी होता है कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हो
2: जी
3: आर्मी और पुलिस को छोड़ के, मतलब
2: अच्छा,
3: आर्मी
2: अच्छा,
3: पुलिस जी, ये जी, को छोड़ के या सेमी गवर्नमेंट जॉब में हो या पीएसयू में हो या कहीं प्राइवेट भी हो सकता है, कोई वो नहीं
2: का पेशा हो उसका,
3: मतलब वो उनकी जो रोजी रोटी है
2: जी,
3: वो उनके लिए मतलब वो कहीं ना कहीं कार्यरत होने चाहिए,
2: यानी उनके जीवन निर्वाह का कोई ना कोई साधन अलावा होना चाहिए,
3: इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो
2: सकता है,
3: कोई व्यवसाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक बड़ा अच्छा मौका सबके लिए होता है
2: जी,
3: जो भी मतलब चाहते हैं
2: जी।
3: इसमें जो इंडियन सिटीजंस हैं जिनकी की एज ग्रुप 18 to 42 के बीच में होती है,
2: अच्छा जी,
3: वो एलिजिबल होते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए।
2: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि यदि किसी को टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं, हम कब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कौन व्यक्ति इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं?
3: कोई भी इंडियन सिटीजन
2: जी
3: ज्वाइन कर सकता है। पहले ये सिर्फ मेल्स के लिए होता था, अब 2019 में जो है इवन फीमेल्स had started coming, तो अभी पहले initially they had joined as officers, as a officer जो join कर रहे थे, but even अब soldier के तौर पे भी join कर सकते।
2: अच्छा।
3: उसके अलावा क्या होता है कि और जो सर्विस के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस जो है उस लेवल की होनी चाहिए, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो मेडिकली फिट होना चाहिए, उनकी हाइट वगैरह जो है वेट जो भी रहता है वो सब रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि हर साल
2: जी
3: उनको जो है ट्रेनिंग के लिए आना होता है।
2: अच्छा।
3: और अगर उनको गवर्नमेंट बुलाती है, एम्बॉडीमेंट होता है, तो कंपल्सरीली दे हैड टू पार्टिसिपेट इन इट। ये शर्तें जो होती हैं
2: जी जी,
3: अगर ये मंजूर होती हैं तो उसमें कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है।
2: अच्छा।
3: इसमें आप मतलब एज ए ऑफिसर, एज ए जेसीओ, एज ए ओआर
2: जी जी
3: जो है मतलब अदर रैंक्स
2: जी जी
3: ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सर्विस दे सकते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब ये डीएम है, जब आप सर्विस कर रहे होते हैं तो आपकी जो पेज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं
2: जी,
3: वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इंडियन आर्मी में।
2: अच्छा, मतलब समकक्ष होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता?
3: कोई अंतर नहीं होता।
2: अच्छा,
3: है
2: अच्छा।
3: इवन यूनिफॉर्म भी वो ऑलिव ग्रीन ही पहनते हैं
2: जी,
3: आर्मी की ही यूनिफॉर्म पहनते
2: अच्छा,
3: हैं
2: जी।
3: इसके बारे में हम और जिक्र करेंगे आगे चल के।
2: हाँ जी बिल्कुल।
3: तो जैसे किसी ने अगर एज ए कैप्टन कोई सर्विस कर रहा है तो उसके पे पर्क्स जो है, अलाउंसेस है, वो सारे के सारे उसको एज ए कैप्टन ही मिलते हैं। लेकिन इसमें एक फर्क ये होता है, ये पेमेंट, ये जो पे है उसको सिर्फ वो एक्टिव सर्विस में जितने दिन रहते हैं, जैसे अगर उन्होंने वहां पे 6 महीने सर्विस करी है तो वो 6 महीने के लिए ही मिलेगी।

0: दूसरे व्यवसाय का होना आवश्यक है
1: है ना। तो जब एम्बॉडीमेंट डिसएम्बॉडीमेंट होता है उसमें भी क्या होता है, उस दौरान भी जो न्यूक्लियस होता है, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन का एक
0: संगठन का केंद्र
1: जो है वो यूनिट का वो तो मेंटेन रहता है।
0: अच्छा,
1: और जो टीए बटालियंस होती हैं इनको रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं कर्नल्स होते हैं वो कमांड करते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो सर मैं यही पूछ रही थी कि इसका जो टेरिटोरियल आर्मी का जो संगठन है वो किस तरह का होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है।
1: टीए जो है ये जो बनी थी ये 10 सितंबर 1948 को टीए बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में।
0: अच्छा,
1: उसके तहत जो है एग्जिस्टेंस में आई थी
0: आजादी के बाद।
1: जी, और जो फर्स्ट टीए कैंप था वो उसका इनॉग्रेशन किया था हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, श्री सी राजागोपालाचारी सर जो है, उन्होंने 9th अक्टूबर 49 को किया था। तो इसीलिए 9th अक्टूबर को जो है टीए डे मनाया जाता है, टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है। और इसकी जो जरूरत महसूस हुई थी क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आजादी के मिलते ही 47 में अक्टूबर में जो है पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, पर्सन वॉर हुआ था, तो उस समय एक रियलाइजेशन आया था कि हमारे पास एक रिजर्व फोर्स होना बहुत जरूरी है जो कि समय पे अगर मतलब रेगुलर आर्मी को मदद करने के लिए आ सके। दैट वाज द बेस,
0: मुख्य उद्देश्य यही था
1: जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बनी। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टर जनरल टीए टेरिटोरियल आर्मी होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं वो इसको कमांड करते हैं।
0: तो सर इसका मुख्यालय भी दिल्ली में
1: है और ये इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्मी, ठीक है। और जो ये है इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स।
0: अच्छा,
1: डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
0: अच्छा,
1: और इसमें फिर इसके नीचे जो है ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
0: अच्छा जी,
1: तो इनके जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं जनरली मतलब दे आर अलाइन विद द कमांड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के जो पांच कमांड्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एंड सेंट्रल कमांड, वैसे हमारे पास सात हैं, नॉर्थ वेस्टर्न भी है ना, और उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग कमांड भी। तो लेकिन ये पांच जो कमांड्स हैं तो जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ ही ग्रुप हेडक्वार्टर्स लोकेटेड होते हैं। और ये होते हैं कि ताकि इनका कमांड कंट्रोल के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए, फॉर रिक्रूटमेंट के लिए चार भागों में मतलब फोर जोन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया।
0: अच्छा,
1: जैसे हमारा मध्य प्रदेश जो है वो जोन टू में आता है।
0: अच्छा,
1: तो मतलब जोन वाइज जो है रिक्रूटमेंट होता है।
0: अच्छा, भर्ती जोन के हिसाब से,
1: जोन के हिसाब से होती है। तो वो उसके लिए उन्होंने इसको चार जोन में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम उनकी बटालियंस के बारे में बात करें, टीए की बटालियंस जो होती है, टीए की बटालियंस जो होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक डिपार्टमेंटल यूनिट्स हम बोलते हैं उनको, एक उनको बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स। आप बताइए डिपार्टमेंटल यूनिट क्या हो सकती हैं?
0: डिपार्टमेंटल सर इसका ये मतलब हो सकता है कि जो अलग अलग विभागों के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं वो विभागीय हो गई।
1: बिल्कुल सही बोला आपने, जो टीए बटालियंस जो डिपार्टमेंटल है जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या कोई स्पेशल टास्क के लिए बनाई गई है रहती हैं, उनको हम डिपार्टमेंटल बोलते हैं। जैसे एक बटालियन की होती है ऑयल सेक्टर की, ठीक है, तो जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी जो क्रूशियल फंक्शनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो है टीए बटालियंस है, जो 801 इंजीनियर रेजिमेंट है जो आगरा में है, 811 इंजीनियर रेजिमेंट है ONGC की जो बड़ौदा में है, उसके अलावा 414 एसी बटालियन है मार्केटिंग की जो कामटी में है नागपुर के पास। तो ये जो है स्पेसिफिकली ऑयल एंड ऑयल रिफाइनरीज ऑयल सेक्टर के लिए काम करने के लिए है। तो इसका जो विचार बना था आई थी रिक्वायरमेंट हुई थी क्योंकि कहते हैं कि 1980 में असम में जो है अनरेस्ट हो गया था, सिविल अनरेस्ट हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो उस समय जो हमारी वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बंद हो गई थी।
0: अच्छा।
1: जिससे कि देश को बहुत भारी नुकसान हुआ था, कहते हैं 5,000 करोड़ का नुकसान, से भी ज्यादा का नुकसान हुआ
0: जी।
1: तो 1980 में तो 5,000 करोड़ बहुत ज्यादा मायने रखते थे
0: जी।
1: तो फिर उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कभी देश के ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो असेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए हमारे पास यूनिट होनी चाहिए,
0: उनकी सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए। टेरिटोरियल
1: ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये उनके ऑपरेशंस के लिए।
0: अच्छा, संचालन के लिए जी।
1: तो इसीलिए इसमें जो लोग भर्ती भी होते हैं, जो वॉलंटियर्स भी आते हैं, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं।
0: अच्छा सर, मतलब उस संस्थान के कार्यकलापों की जानकारी रहती
1: है, जो टेक्निकल पीपल है वही होते हैं। जैसे अगर ONGC है, 811 इंजीनियर रेजिमेंट है, तो उसमें आपको वो लोग मिलेंगे जो ONGC का कार्य अच्छे से जानकारी रखते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
0: जी जी, अच्छा,
1: ये इसलिए इनको स्पेसिफिकली डिपार्टमेंटल अच्छा। बोला जाता है। अब जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का भी जो है टीए बटालियन होती
0: अच्छा,
1: है
0: हाँ,
1: तो अभी तो फिलहाल उनके जैसे एक ही बटालियन है, एक जमाने में उनके पास नौ नौ बटालियन होती थी टीए बटालियन, एंड दे हैव डन वंडरफुल जॉब। मतलब इन टीए बटालियन ने ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे जो है 65-71 में तो रेलवे की फंक्शन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फौज के लिए,
0: बिल्कुल सामान रसद पहुंचाना,
1: एग्जैक्टली मतलब एवरीथिंग
0: सब कुछ,
1: तो उस समय जो है टीए बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया था इनके लिए। तो अभी तो फिलहाल जैसे इनके पास एक टीए बटालियन है जो जमालपुर में है बिहार में, अदरवाइज दे हैड द मोर एंड दे हैड द कैपेबिलिटी जरूरत पड़ने पे और भी मतलब रेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जैसे अभी मैंने बोला था कि स्पेशल टास्किंग के लिए ये होते हैं, तो हमारे देश में जो है एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए एसोसिएटेड इन्फेंट्री बटालियन के साथ जो है रेजिमेंट है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का है, तो इन लोगों ने मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलके स्टेट्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाई है।
0: हाँ जी सर, जैसे ही वो शिवालिक पहाड़ियों पर भी इनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहा।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल,
0: आप वृक्षारोपण वन संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका है सर,
1: बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो फर्स्ट यूनिट थी ये 82 में रेज हुई थी और जैसे आपने जो बताया वो उसी के लिए रेज हुई थी शिवालिक, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी जो है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जो है वापस मतलब डेवलप करने के लिए रेज हुई थी। और आज जो है 10 ETFs काम कर रही हैं इंडिया में एंड दे आर रियली परफॉर्मिंग एन एक्सेलेंट जॉब। मतलब ट्री प्लांटेशन का जो बहुत ही रगेड एरियाज हैं, इकोलॉजिकली डिग्रेडेड एरियाज हैं, माइनिंग्स वगैरह के कारण जो है उसमें लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं थ्रू आउट द कंट्री,
0: मिट्टी का संरक्षण
1: बिल्कुल बहुत अच्छा इनका काम रहता है। एंड इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जब शुरू में भी देखा गया था कि मतलब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर किया था तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए भी एक उनको लगा था कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है।
0: हाँ,
1: और बहुत अच्छा देश सेवा का
0: अच्छा अवसर है,
1: अच्छा अवसर है
0: जी।
1: तो कहते हैं कि अभी तक इन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा प्लांटेशन किया है,
0: क्या बात है जी।
1: और अप्रोक्सीमेटली जैसे कि दे हैड कवर्ड ऑलमोस्ट 1,80,000 एकर्स ऑफ लैंड,
0: तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है,
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये अभी भी कर रहे हैं। ऐसे ही रिसेंटली अगर आपको याद होगा गंगा स्वच्छ गंगा मिशन शुरू हुआ था
0: जी।
1: उसके लिए भी एक यूनिट 2018 में बनी थी जिसको कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये यूनिट भी जो है ये 100% मतलब जो है ESM एक्स सर्विसमैन की है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा
0: जी।
1: उन्होंने जो है इनको ट्रेनिंग दी पूरी कि रिवर वाटर कैसे टेस्ट करते हैं
0: जी,
1: उसकी सफाई कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, तो इसमें ये लोग कार्य में दक्ष होके ये कार्य कर रहे हैं
0: जी।
1: इनका बड़ा बहुत बड़ा योगदान है।
0: हाँ जी सर, ये तो दोहरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है और जो आर्मी से रिटायर्ड जो लोग हैं या जो सैनिक है, हमारे पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कहते हैं, उनको फिर से वापस एक रोजगार।
1: बिल्कुल बहुत सही है। और इसके अलावा ये लोग जो है रिवर बैंक्स के साथ साथ जो है प्लांटेशन भी करते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो काफी अच्छा काम है उनका। तो ये तो देखे जाए तो ये है डिपार्टमेंटल यूनिट्स जो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स में काम करती है। अब दूसरी होती है नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स। नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो हमारी रेगुलर आर्मी जो है जैसे हमारी यूनिट्स होती हैं उन जैसी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो इन्फेंट्री के साथ एसोसिएटेड है, बटालियंस जो है टी की वो इन्फेंट्री के साथ एसोसिएटेड है, बट उसके अलावा भी है यूनिट्स होती है
0: जी।
1: इस समय जो है टीए के साथ जो इन्फेंट्री रेजिमेंट का एसोसिएटेड है कम से कम 31 बटालियंस है ऐसी। अच्छा, ये लोग सेम ड्रेस पहनते हैं, जैसे मैं मद्रास रेजिमेंट में था तो हमारी जो दो टीए बटालियन 710 टीए एंड 122 तो दोनों जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो मद्रास रेजिमेंट की ही यूनिफॉर्म पहनती है।
0: तो फिर सर भेद कैसे पता चलता है, अंतर कैसे पता चलता है?
1: हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं है, लाइक इट इज सेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, आर्मी के हमारे हिस्सा है। तो जो हमारी इन्फेंट्री की जो हमारी रेजिमेंट है जैसे मद्रास रेजिमेंट है, तो उसमें जब हमारी जितनी यूनिट्स है उसके साथ हम टीएस को भी अपने यूनिट ही मानते हैं, यूनिट एज ए इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। अगर हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है बटालियन इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन तो टीए भी उसमें भाग लेती है।
0: बस यही मेरा प्रश्न था सर कि अंतर कहाँ आता है?
1: अंतर यही आता है कि जो बताया आपको कि ये वॉलंटियर फोर्स है और ये रेगुलर आर्मी नहीं है, ये प्रॉपर सर्विस में है बाकी लोग, वो लोग जो है वॉलंटियर्स होते हैं।
0: मैंने लेकिन जितने समय रहेंगे वो बिल्कुल सेना का हिस्सा रहेंगे,
1: सेना का हिस्सा रहेंगे। जितने समय रहते हैं वो अपनी बटालियन के साथ वैसे ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनको कमांड भी उनकी रेगुलर आर्मी। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे अब मद्रास रेजिमेंट है जैसे, या मराठा रेजिमेंट है, या राजपूताना राइफल्स है, तो उन्हीं के ऑफिसर्स जनरली, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली उन्हीं के ऑफिसर टीए बटालियन भी कमांड करते हैं।
0: अच्छा,
1: ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब सिकलाई का ऑफिसर जाके मद्रास रेजिमेंट की टीए नहीं कर सकता, लेकिन 99% टू मेंटेन द कोहेसिवनेस, ठीक है, वो ऐसा रखा जाता है। तो इसी तरह से इंजीनियर रेजिमेंट्स के साथ जो है इस समय मतलब तीन बटालियन से एसोसिएटेड है। एक अभी नए कंसेप्ट पे उसको बोलते हैं होम एंड हर्थ, सन ऑफ सॉइल। ये जो कंसेप्ट होता है, जो अभी हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है हमारा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो चलते हैं, इसमें ये देखा गया है कि जो ये लोकेशंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया
0: जी,
1: तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इस यूनिट्स में शामिल किया जाता है।
0: अच्छा,
1: ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वहीं के लोग उसमें शामिल होते
0: हैं, वहीं के क्षेत्र के।
1: हाँ, इसलिए उनको सन ऑफ द सॉइल बोलते हैं,
0: मिट्टी के बेटे,
1: मिट्टी के बेटे। तो मैंने खुद मतलब इसमें मैंने सर्विस नहीं करी है, लेकिन मेरे साथ एक बटालियन रही है।
0: अच्छा,
1: फर्स्टली क्या होता है कि उनको उस एरिया के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उनको भाषा के बारे में ज्ञान होता है,
0: ये सबसे महत्वपूर्ण।
1: दूसरा क्या है कि उनको क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पूरी तरह से तैयार रहता है, जब वो पहाड़ी के इलाके हैं तो उनको उनको पहाड़ों में मतलब ऑपरेशन का तो बचपन से वहां रहे हुए हैं, इसलिए उनको सन ऑफ सॉइल्स बोलते हैं। उनको रास्तों के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होती है। इट हैज बीन ए वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी अप्रिशिएटेड कंसेप्ट जो जिसको किया था। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो यूथ है उस इलाके में, जो यूथ है स्पेशली, दे गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी,
0: लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा,
1: बिल्कुल मिलता है, और उनको जो है मतलब एक तरह से फायदा ये रहता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलते हैं जो है,
0: ये भी सही बात है।
1: तो इट इज ए नेशन बिल्डिंग, ठीक है, एंड मतलब जो इस एरिया के जो उनकी नॉलेज होती है, इक्विटेंस होता है, इट हैज गॉट अ ट्रेमेंडस वैल्यू, तो दे बिकम वेरी गुड सोल्जर्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये लोग काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर जो बटालियंस होती हैं वो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स कमांड करते हैं, उसके अलावा जो है सीओ के अलावा 2IC या 102 स्टाफ ऑफिसर्स जो होते हैं वो जो है रेगुलर आर्मी के होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो टीए कैडर के आते हैं। तो जो कंपनीज जनरली कमांड कर रहे होते हैं वो टीए के आपको मिलेंगे, ऑफिसर्स मिलेंगे
0: जी।
1: इसी तरह से जो है एसोसिएशन के बारे में, जो जनरली जो टीए बटालियंस होती है हमारी रेजिमेंट्स के साथ, जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहती है,
0: इनको फिर ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है यदि ये अंशकालिक है, पूर्णकालिक है नहीं है, तो फिर इन्हें ट्रेनिंग का क्या व्यवस्था होती है और किस तरह से, क्योंकि हमें फिटनेस तो हमारी एक सैनिक के तौर पर बना के रखनी है, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं?
1: देखिए, इसमें जो डिपार्टमेंटल यूनिट्स और नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं
0: जी,
1: दोनों अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है।
0: अच्छा,
1: और ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जब कोई भी बंदा जो कोई भी भर्ती होता है टीए में
0: जी,
1: तो उसके साथ एक शर्त ये रहती है कि आपको साल में इतने दिनों के लिए आके हमारे साथ ट्रेनिंग करना कंपलसरी रहेगा, और उस दौरान जो है साल में एक महीना दो महीना जो भी वो ट्रेनिंग का उनका शेड्यूल रहता है उसमें कंपलसरी होता है उनको उपस्थित होना, उसके लिए कंपलसरी होता है। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से फिर उनकी ट्रेनिंग होती है।
0: अच्छा,
1: तो ये तो एक होता है मतलब मेथड होता है जिसमें ट्रेनिंग होती है। बाकी क्या होता है कि 99% पीपल कीप देमसेल्फ फिट बिकॉज उनको भी तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने होते हैं हर साल जो है, अगर उनको एम्बॉडीड रहना है, हिस्सा रहना है, तो उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है। उसके अलावा जो कोई रेजिमेंट्स जो होती हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं अलग से वो करवाते हैं, तो वो जो भी डायरेक्टरेट होते हैं वो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं।
0: तो सर, प्रतिवर्ष वो ये समय बंधा हुआ है कि वर्ष में कभी भी बुलाया जा सकता है ट्रेनिंग है तो?
1: हाँ, ये होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी बताया जाता है, क्योंकि इसमें एक और चीज है, जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे होते हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट से भी छुट्टी लेनी होती
0: है। जी, वही।
1: तो
0: जी।
1: वो अरेंजमेंट करने के लिए ऑलरेडी उनको बताया जाता है, एंड आई थिंक दे आर गिवन द चॉइस आल्सो कि आप इस दौरान से इस दौरान आ सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें जो है वो आके उस दौरान ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो करते हैं। जैसे मुझे याद है हमारी यूनिट ट्रिवेंड्रम में थी, तो हमारे साथ एक प्रिंसिपल थे, वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, मतलब वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड मतलब वेरी एजुकेटेड पर्सन, तो वो उस दौरान हमारे साथ रहे थे, तो ऐसा है वो कभी मतलब आके जो अपनी ट्रेनिंग उनको वो रहता है वो पूरी कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो सर पूरा समूह को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है या हर व्यक्ति का अलग अलग समय होता है?
1: नहीं, इसमें जो प्रॉपर एनुअल ट्रेनिंग होती है उसमें तो सब लोग आते हैं एक साथ, क्योंकि वो जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। फिर कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो मतलब जैसे एक अफसर के लिए ट्रेनिंग है अलग जो है, उन्होंने अपना कमीशन की पूरी ट्रेनिंग कर ली है, अगर उनको किसी यूनिट के साथ ट्रेनिंग करना है वर्किंग सीखने तो वो अलग से आ सकते हैं,
0: विशेष प्रशिक्षण के लिए अलग समय दिया जाता है,
1: अलग समय दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा आ रहे हैं तो जैसे साल का होता है तो 99% उनको इकट्ठा ही बुलाया जाता है।
0: जी,
1: अब ये जो बटालियंस होती है जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि दे आर एबल टू रिलीव द रेगुलर फोर्सेस, तो उनको जो एसेंशियल ड्यूटीज के लिए जो है मौका मिलता है
0: जी।
1: उनको ये सपोर्ट रहता है इनसे जो है
0: जी।
1: और टीए बटालियंस ने अभी तक जो है मतलब ऑलमोस्ट सारे वॉर्स में 62, 65, 71 में सब जगह पार्टिसिपेट किया है।
0: अच्छा,
1: इवन जो ओपवन श्रीलंका में हुआ था, ओपरक्षक पंजाब में, फिर ओपरिनो और बजरंग असम में हुए थे, हर जगह पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। और अभी भी जो है एक्टिवली काफी यूनिट्स हैं जो सीआई ऑपरेशंस जेएनके में नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी भी ऑपरेशनल हैं। एंड ये भी एक मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एंड उसके कारण जो है टीए पर्सनल्स जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स से काफी मतलब उनको सम्मानित किया गया।
0: अच्छा,
1: है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए उनको अवार्ड्स मिले हैं। आई थिंक ओवरऑल दे गॉट उनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और इवन वीआरसी और काफी सारे जो है अदर डेकोरेशंस से ये जो है टर्टल आर्मी सम्मानित की गई है। इस समय अगर हम देखें तो इंडिया में तकरीबन 50,000 पर्सनल्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: हाँ
0: जी,
1: और आपको याद होगा काफी सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज ही हैं, स्पोर्ट्स पे हैं, मूवीज पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रीज में है जो कि टीए में सर्व कर चुके हैं।
0: खिलाड़ी लोगों के ज्यादा नाम आते हैं इसमें, जैसे एमएस धोनी है, कपिल देव है
1: जी,
0: और एक्टर में देखे तो मोहनलाल जी हैं।
1: जी, करेक्ट है ना, मोहनलाल जी हमारे मद्रास रेजिमेंट के।
0: हाँ जी। तो सर अब मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इसके सर्विस बेनिफिट्स क्या हैं टेरिटोरियल आर्मी में जाने के?
1: सबसे बड़ा तो सर्विस बेनिफिट यही है कि आपको यूनिफॉर्म पहनने मिलती है।
0: ये तो सही बात है सर, उस वर्दी का गौरव ही एक अलग ही है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: इसके अलावा क्या है कि जब आप टीएमएस सर्व करते हैं तो उस समय जैसे मैंने पहले बोला था यू आर एट पार विद द रेगुलर आर्मी, उनको प्रमोशंस जो होती हैं उसी तरह से ऑथराइज हैं अगर वो सर्विस कर रहे हैं। जैसे आर्मी में राशन ऑथराइज है, सीएसडी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है आपके लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए, वो जब ये एम्बॉडीड होते हैं उस दौरान के लिए या जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको ऑथराइज होता है। जब ये लोग एम्बॉडीड होते हैं तो जैसे नॉर्मल आर्मी को जो लीव मिलती है, लीव एनकैशमेंट होता है, अकोमोडेशन होता है, वो सब फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो इनको भी ऑथराइज होती हैं। जितने जैसे मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं जो सर्विसेज को ऑथराइज है वो इनको भी होते हैं।
0: प्रमोशंस भी उसी तरह से,
1: प्रमोशन भी उसी तरह से ऑथराइज है, उतना ड्यूरेशन अगर आपने सर्विस किया होता है तो। अगर एक जवान है, अगर उसने सर्विस करी है तो उसको लांस नायक, नायक जो भी है, या अफसर जिन्हें करी है तो उसको प्रमोशन मिलता है। रैंक पे डीए जो है जैसे रेगुलर आर्मी का होता है वैसे ही उनको मिलता है। स्पेशल इंक्रीमेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है इनको मिलते हैं। एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसके ऊपर मिलते हैं। फिर इवन जो पेंशन्स होती है, ऑफिसर्स गेट द पेंशन आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस, जेएसयूस एंड अदर रैंक दे गेट आफ्टर 15 इयर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, एग्रीगेट होता है जैसे टीए का, क्योंकि उनका काउंट किया जाता है एक्टिव सर्विस काउंट किया जाता है,
0: अवधि जोड़ी जाती है जब तक आपने सर्विस दी है।
1: हाँ, तो आपने जितने दिन की सर्विस दी है वो अगर आपका पीरियड पूरा हो जाता है तो दे आर एक्चुअली ऑथराइज द पेंशन आल्सो। उसमें वो एक्चुअल फिजिकल सर्विस काउंट होती है, जैसे कि एक नॉर्मल रेगुलर आर्मी वाला भी करता है ना, आर्म फोर्सेस में भी जो बंदा होता है वो करते हैं, वो ऐसे ही होता है। फिर अगर उन्होंने 10 इयर्स अगर लगातार किया होता है तो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो है उनको मतलब हाउस की फैसिलिटी मिलती है। देन ग्रेच्युटी है, एक सर्विसमैन स्टेटस होता है जो रिटायर होते हैं, है ना, जो पेंशनर्स होते हैं उस तरह से ये सब चीजें उनको मिलती हैं। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो कैश अवार्ड्स वगैरह भी देती हैं। अच्छा। और भी जो है उनको जॉब में भी जो है फैसिलिटीज देती हैं। बाकी जो टीए के बेनिफिट्स हैं जैसे नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं वो जो है उनको ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह के फैसिलिटीज देती हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और अगर कोई टीए में सर्विस करते समय उसको डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन का प्रोविजंस अच्छा। होते हैं। अगर कोई फर्टिलिटी हो जाती है तो फैमिली पेंशन के प्रोविजंस हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब जो इंडियन आर्मी को ऑथराइज है वो उनको समय ऑथराइज होता है। तो आई मस्ट से दैट इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु फॉल्स इन द ब्रैकेट ऑफ 18 to 42 एंड हु आर विलिंग टू सर्व इन द यूनिफॉर्म एंड एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू अवेल इट एंड बिकम पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। बाकी तो हम जितना जिक्र कर चुके हैं उससे आपको लगा ही होगा कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है इसमें जो है रेगुलर आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है
0: बिल्कुल
1: काम करना।
0: बस एक अंतिम क्वेश्चन ये बनता है सर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीन भाग हैं, तो ये क्या तीनों भागों के लिए टेरिटोरियल आर्मी है?
1: नहीं, ये टेरिटोरियल आर्मी सिर्फ आर्मी में ही है।
0: अच्छा,
1: एयरफोर्स और नेवी में नहीं है।
0: तो श्रोताओं, टेरिटोरियल आर्मी के गठन का मकसद ही है देश के हर नागरिक को राष्ट्र की रक्षा का सहभागी बनाना। आपदा हो या युद्ध की स्थितियाँ, राहत हो या पुनर्निर्माण, टीए हर मोर्चे पर सेवा और साहस के साथ खड़ी रहती है। ये भारतीय सेना का वो हिस्सा है जहां अनुशासन मिलता है नागरिकता से और सेवा जुड़ती है शौर्य से। इसीलिए देश के कई प्रतिष्ठित नागरिक इस गौरवशाली बल का हिस्सा रहे हैं। सलाम है देश के टेरिटोरियल आर्मी के वीरों को जो सावधानी व शूरता के मंत्र से देश की रक्षा, सेवा और सम्मान की मिसाल बने हुए हैं। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और आपने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू पूर्वा जी, थैंक यू श्रोताओं, जय हिंद।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा घर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। अगले कार्यक्रम की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
3: उद्योग व्यापार ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और भारत देश औद्योगिकी में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रमुख संस्थानों पर आधारित है हमारा कार्यक्रम देश के संस्थान। तो सुनिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और BDL के बारे में। ये किस तरह हमारी सेनाओं की आंख, कान, तकनीकी और दिमाग बनकर देश की सुरक्षा को मजबूत करती है। रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से BEL ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: लेकिन आज एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि अगर BEL सैनिकों को तकनीकी शक्ति देती है, हाल आकाश में उड़ने वाले विमान बनाती है, तो समुद्र की विशाल लहरों पर भारत की शक्ति का निर्माण आखिर कौन करता है, कौन बनाता है वो विशाल युद्धपोत जो हजारों टन वजनी होते हैं, कौन तैयार करता है वे पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराइयों में रहकर देश की सुरक्षा करती हैं?
0: इन सारे प्रश्नों के उत्तर माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में छिपे हुए हैं। आइए चलते हैं रुचि और दादू के पास। रुचि के सवाल और दादू के उत्तर से हम और बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या है। और श्रोताओं, अब हमारी रुचि बिटिया भी सियानी हो गई है, वो कॉलेज जाने लगी है। तो आइए सुनते हैं देश के संस्थान।
2: दादू, ये आप कितनी अच्छी जगह मुझे लेकर आए हैं। ये समुद्र कितना दूर तक फैला हुआ है ना, जहाँ तक नजर घुमाओ वहाँ तक बस नीला पानी। थैंक यू सो मच दादाजी मुझे यहाँ लाने के लिए, वरना मुझे तो लगा था इस बार मेरी छुट्टियाँ यूं ही बर्बाद हो जाएंगी।
3: मुझे लगा इस बार मैं बिटिया रानी को क्यों ना एक संस्थान की कहानी सुनाने की बजाय दिखाई दूं। अब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगी तो फिर तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा हैं? अपने दादू के साथ कहीं घूमने जा पाओ।
2: अरे दादू, आप भी ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ अपने ही शहर में, आपसे कहीं दूर थोड़े जा रही हूँ।
3: वो देखो बेटा, समुद्र में दूर एक जहाज भी है।
2: कहाँ है दादू?
3: अरे वो देखो, एकदम सामने।
2: हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा। वाव दादू, कितना बड़ा शिप है। अच्छा दादू, पिछली बार आपने मुझे BEL BDL के बारे में बताया था। रडार, मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन दादाजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई।
3: कौन सी बात बिटिया?
2: ये बात कि यदि कोई युद्धपोत समुद्र में तैनात हो और उस पर BEL की तकनीक लगी हो, तो सवाल ये है कि उस युद्धपोत को बनाता कौन है?
3: भाई, तुमने तो आज का पूरा विषय ही पूछ लिया। यही देखने तो आज हम यहाँ पर आए हैं बेटा।
2: सच में दादू?
3: हाँ हाँ बेटा, सच में। तो चलो, आज हम ऐसे संस्थान की कहानी जानेंगे जो भारत की समुद्री शक्ति का निर्माता है।
2: और उसका नाम क्या है?
3: उसका नाम है बेटा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे संक्षेप में MDL कहा जाता है।
2: सच में दादू? आज आप MDL की कहानी सुनाने वाले हैं?
3: क्या तुम जानती हो? हाँ भाई, हम तो जमीन पे रहते हैं, फिर समुद्र की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
2: ये तो मैंने सोचा नहीं दादू।
3: देखो बेटा, भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है, और ये सब तो तुम जानती ही हो।
2: आपने पहले बताया था दादू।
3: तो ये भी याद रखो कि दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता हुआ जाता है। भारत का भी बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। तेल, गैस, मशीनें, खाद्यान्न और अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं जहाजों से ही आती जाती हैं बच्चे।
2: तो दादाजी, समुद्री मार्ग सुरक्षित ना हो तो समस्याएं हो सकती होंगी।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उनके लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाता है माझगांव डॉक।
2: अब समझी दादाजी मैं। अच्छा ये बताइए ना कि ये MDL की स्थापना कब की गई थी?
3: इसकी कहानी बहुत पुरानी है बच्चे। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी।
2: सच में?
3: 18वीं शताब्दी में मुंबई क्षेत्र में एक छोटे जहाज निर्माण और मरम्मत यार्ड के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी बेटा।
2: 18वीं शताब्दी दादाजी? इसका मतलब उस समय भी जहाज बनाए जाते थे?
3: बिल्कुल, समुद्री व्यापार उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे ये यार्ड विकसित होता गया, लेकिन बेटा इसके पहले ये कई विदेशी कंपनियों के अधीन भी रहा। फिर 1934 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में संगठित किया गया।
2: तो फिर आजादी के बाद क्या हुआ?
3: 1960 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद से इसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया, भारत के लिए युद्धपोत बनाना, भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
2: यानी दादाजी, पहले ये सामान्य जहाजों पर काम करता था जो समुद्री व्यापार के काम आते थे, और बाद में युद्धपोतों का निर्माण शुरू हुआ होगा।
3: बिल्कुल बेटा, और यही बदलाव इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्ड बनाता है।
2: दादू, तभी लोग इसे राष्ट्र का पोत निर्माता कहते होंगे।
3: हाँ बेटा, क्योंकि भारत के अनेक प्रसिद्ध युद्धपोत और पनडुब्बियां इसी संस्थान में बनी है।
2: मतलब भारतीय नौसेना की शक्ति का बड़ा हिस्सा यही बनाया गया है।
3: बिल्कुल बेटा, लेकिन बिटिया, युद्धपोत निर्माण कोई आम काम नहीं है, क्योंकि एक आधुनिक युद्धपोत में लाखों पुर्जे, हजारों किलोमीटर तक फैली तारें, अत्याधुनिक रडार, मिसाइल प्रणाली, हेलीकॉप्टर, डेक और कंप्यूटर नेटवर्क लगे होते हैं बेटा।
2: दादू, मतलब ये समुद्र में चलता फिरता कोई शहर जैसा होता होगा।
3: एकदम सही कहा बेटा, वास्तव में आधुनिक युद्धपोत एक तैरते हुए तकनीकी नगर की तरह ही होता है।
2: दादू, माझगांव डॉक का पहला बड़ा युद्धपोत कौन सा था?
3: INS नीलगिरी।
2: और उसकी खास बात क्या थी?
3: वो आधुनिक भारत में निर्मित प्रमुख युद्धपोतों में से एक था बेटा। उसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी सहयोग से हुआ था, लेकिन उसके निर्माण ने भारतीय इंजीनियरों को युद्धपोत निर्माण की बारीकियां सीखने का अवसर दिया।
2: मतलब ये भारतीय इंजीनियरों के लिए युद्धपोत निर्माण सीखने की शुरुआत थी।
3: बिल्कुल, अक्टूबर 1968 में उसका जलावतरण हुआ बेटा, और 1972 में वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
2: दादाजी, ये जलावतरण क्या होता है?
3: अरे बुद्धू रानी, नाम से समझ नहीं आया क्या?
2: क्या दादू आप भी?
3: अरे बेटा, जब जहाज पहली बार पानी में उतारा जाता है उसे जलावतरण कहते हैं।
2: अब समझी मैं। अच्छा ये बताइए, क्या उस समय लोगों को विश्वास था कि भारत इतने बड़े युद्धपोत भी बना सकेगा?
3: हर कोई विश्वास नहीं करता था। कई लोगों का मानना था कि भारत को हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने मेहनत की, दिन रात काम किया, नई तकनीक सीखी, और जब INS नीलगिरी समुद्र में उतरा तब वो केवल एक जहाज नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था बेटा।
2: वाह दादू, इसका मतलब वो दिन किसी सपने के पूरा होने जैसा था।
3: बेटा,
2: तो फिर हमारा बिना किसी बाहरी सहयोग के बनाया गया पहला युद्धपोत कौन सा था दादाजी?
3: INS गोदावरी। इसका जलावतरण मई 1980 में हुआ बेटा, और दिसंबर 1983 में इसे नौसेना को सौंप दिया गया।
2: अच्छा दादू, इसके बाद क्या भारत ने और भी युद्धपोत बनाए थे?
3: हाँ बिटिया, नीलगिरी की सफलता ने भारतीय इंजीनियरों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय नौसेना ने देखा कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक युद्धपोत बनाने में सक्षम है, इसीलिए आगे और बड़ी जिम्मेदारियां माझगांव डॉक को सौंपी गईं।
2: दादू, ये श्रेणी क्या होती है? मैंने कहीं सुना था कि नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी।
3: बेटा, युद्धपोतों में श्रेणी का मतलब होता है एक जैसे डिजाइन और विशेषताओं वाले जहाजों का समूह।
2: अच्छा।
3: जैसे किसी परिवार के कई सदस्य एक ही परंपरा से जुड़े होते हैं, वैसे ही एक ही डिजाइन पर बने कई युद्धपोत एक श्रेणी के कहलाते हैं।
2: ओह, यानी नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी अलग अलग पीढ़ियों के युद्धपोतों के समूह थे।
3: हाँ बच्चे, और हर नई श्रेणी अपने से पहले वाली श्रेणी की तुलना में कुछ नई क्षमताएं लेकर आती थी।
2: दादू, ये गोदावरी श्रेणी की जिम्मेदारी क्या थी?
3: बेटा, नई पीढ़ी के युद्धपोत विकसित करने की। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक आधुनिक, अधिक सक्षम और अधिक स्वदेशी तकनीक से बने हों।
2: दादू, तो क्या गोदावरी श्रेणी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी?
3: हाँ बेटा, क्योंकि ये केवल एक नया युद्धपोत नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना और भारतीय अभियंताओं के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था।
2: वो भला कैसे?
3: नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों के निर्माण में विदेशी सहयोग अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन गोदावरी श्रेणी में भारतीय नौसेना, भारतीय डिजाइनरों और अभियंताओं की भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई थी।
2: यानी भारत केवल युद्धपोत नहीं बना रहा था, बल्कि उन्हें खुद भी डिजाइन करना सीख रहा था दादाजी।
3: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
2: अच्छा, और गोदावरी श्रेणी की क्या खासियत थी?
3: देखो बेटा, इन युद्धपोतों का आकार पहले की तुलना में बड़ा था। इनमें अधिक हथियार और उपकरण लगाए जा सकते थे, साथ ही इन पर दो बड़े हेलीकॉप्टर संचालित किए जा सकते थे, जिससे समुद्र में उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती थी।
2: वाह दादाजी, यानी ये केवल बड़े जहाज नहीं थे, बल्कि चलते फिरते समुद्री सुरक्षा केंद्र जैसे थे।
3: हाँ बेटा, इनमें बेहतर रडार, उन्नत संचार प्रणालियाँ और अनेक आधुनिक सुविधाएं थी।
2: यानी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में ये भारत की एक नई छलांग थी।
3: हाँ, नए प्रकार के युद्धपोत विकसित करने की छलांग। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक आधुनिक और अधिक स्वदेशी हों।
2: दादाजी, यानी नीलगिरी श्रेणी की तरह ही गोदावरी श्रेणी भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी।
3: बिल्कुल, इसे भारतीय युद्धपोत निर्माण की परिपक्वता का प्रतीक माना जाता है।
2: फिर
3: इसके बाद INS गंगा और INS गोमती बनाए गए। इन युद्धपोतों ने वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की बेटा।
2: दादाजी, एक बात समझ में नहीं आई मुझे।
3: पूछो पूछो बेटा।
2: क्या सभी युद्धपोतों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे?
3: हाँ बच्चे, भारत की महान नदियों के नाम पर, ताकि वे हमारी संस्कृति और शक्ति दोनों का प्रतीक बन सके।
2: अच्छा, चलिए दादाजी, और बताइए ना कि युद्धपोत और क्या क्या करते हैं?
3: देखो बेटा, जरा कल्पना करो कि समुद्र में हजारों जहाज चल रहे हैं। कुछ व्यापारिक हैं, कुछ मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन उनमें से किसी में कोई दुश्मन की गतिविधि भी हो सकती है। बस इसीलिए हमारे युद्धपोत ऐसी घुसपैठ से बचने के लिए निगरानी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, समुद्री डाकुओं से मुकाबला करते हैं और आपदा के समय सहायता पहुंचाते हैं और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते हैं बेटा।
2: मतलब हमारे युद्धपोत समुद्र के प्रहरी हैं दादाजी।
3: बिल्कुल बिल्कुल प्रहरी हैं बेटा।
2: अच्छा दादू, युद्धपोत निर्माण तो मुझे समझ में आया, लेकिन उसके बाद इस डॉक को कौन सी बड़ी परियोजना मिली है?
3: इसके बाद इसे दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व मिला बेटा।
2: विध्वंसक, ये क्या होता है दादाजी?
3: देखो बेटा, हर युद्धपोत का काम एक जैसा नहीं होता। कुछ जहाज सैनिकों और सामान को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ समुद्र में गश्त करते हैं और कुछ दुश्मन पर तेज और प्रभावी आक्रमण करने के लिए। विध्वंसक, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
2: अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर।
3: हाँ, ऐसा ही एक शक्तिशाली युद्धपोत होता है बेटा वो।
2: तो उसका मुख्य काम क्या होता है दादाजी?
3: इसका काम अपने बेड़े की सुरक्षा करना होता है, दुश्मन के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों का सामना करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं आक्रमण करना होता है। इसीलिए इसे नौसेना के सबसे सक्षम और बहुउद्देशीय युद्धपोतों में गिना जाता है।
2: यानी एक ही युद्धपोत कई तरह की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
3: इसमें अत्याधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, टॉर्पिडो, हेलीकॉप्टर और उन्नत संचार प्रणालियां होती हैं बच्चे। इसीलिए इसे समुद्र का एक चलता फिरता युद्ध केंद्र भी कहा जा सकता है।
2: वाह दादाजी, यानी दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक बनाना किसी भी शिपयार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी।
3: हाँ, जब किसी भारतीय शिपयार्ड को इतने उन्नत युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी मिलती है, तो ये केवल उस संस्थान पर नहीं, बल्कि भारतीय अभियंताओं, डिजाइनरों और तकनीकी क्षमता पर देश के विश्वास का प्रतीक भी होता है बेटा। अंग्रेजी में इसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये सामान्य युद्धपोतों से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है।
2: सच में? कितना शक्तिशाली दादाजी?
3: लगभग 6,700 टन वजनी। उस समय एशिया के क्षेत्र में बने सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक था बेटा, और इस श्रेणी का पहला पोत था INS दिल्ली। इसका जलावतरण 1991 में हुआ। और 1997 में ये नौसेना में शामिल हो गया।
2: और उसके बाद?
3: उसके बाद INS मैसूर और INS मुंबई, ये तीनों भारतीय नौसेना शक्ति के प्रतीक बने।
2: दादाजी, क्या इन पर मिसाइलें भी होती हैं?
3: हाँ बेटा, आधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, हेलीकॉप्टर और भी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ।
2: दादू, मैंने कार्वेट का नाम भी सुना है, ये बताइए ना ये क्या होता है?
3: कार्वेट छोटे आकार का युद्धपोत होता है बच्चे, लेकिन उसकी गति और कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है।
2: मतलब छोटा लेकिन ताकतवर, मेरे जैसा।
3: बिल्कुल, माझगांव डॉक ने INS खोखरी और INS कुठार जैसे कार्वेट भी बनाए बेटा।
2: और दादाजी, ये मिसाइल बोट?
3: ये छोटे लेकिन बेहद तेज युद्धपोत होते हैं। इनका मुख्य हथियार मिसाइलें होती हैं बच्चे।
2: दादू, ये कितने घातक होते हैं?
3: इतने घातक कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता।
2: वाह।
3: INS विभूति, विपुल, नाशक और प्रबल जैसी मिसाइल बोट भी माझगांव डॉक ने बनाई है।
2: दादू, क्या ऐसी कोई घटना आपको याद है जिससे हमें भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा लग सके?
3: 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर साहसिक हमला किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम है?
2: ऑपरेशन ट्राइडेंट।
3: हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पूरी दुनिया को उस समय भारतीय नौसेना की क्षमता दिखाई थी।
2: क्या उस समय भी स्वदेशी जहाजों का महत्व था दादाजी?
3: हाँ बेटा, उस युद्ध ने भारत को ये समझा दिया कि समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बाद में युद्धपोत निर्माण को और अधिक गति दी गई।
2: दादू, मुझे सबसे ज्यादा पनडुब्बियों के बारे में जानना है आपसे। वो कैसी होती हैं, किस तरह से काम करती हैं?
3: पनडुब्बी समुद्र के भीतर चलने वाला युद्धपोत है। ये पानी की सतह के नीचे कई दिनों तक रह सकती है
2: और दिखाई भी नहीं देती।
3: हाँ, इसीलिए इसे समुद्र की अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है।
2: वाह दादाजी, वाह। दादू, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिक कैसे रहते होंगे?
3: बहुत अनुशासन के साथ, क्योंकि उसमें सीमित जगह होती है बच्चे। हर वस्तु का उपयोग सोच समझ कर किया जाता है। पनडुब्बी में दिन रात का अंतर भी महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए उन कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं बच्चे।
2: सचमुच दादाजी, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
3: इसीलिए तो पनडुब्बी निर्माण दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। बिटिया, आप जब भी तुम समुद्र में किसी बड़े जहाज को देखो तो केवल उसका आकार मत देखना, उसके पीछे हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डिजाइनरों और श्रमिकों की मेहनत को भी देखना।
2: जी दादाजी, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगी। अच्छा ये बताइए कि माझगांव डॉक में काम करने वाले कितने मेहनती होते हैं?
3: बहुत मेहनती होते हैं बेटा, उनकी यही मेहनत और समर्पण राष्ट्र की समुद्री शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: दादू, माझगांव डॉक ने नीलगिरी, गोदावरी, दिल्ली, खुकरी और अनेक युद्धपोतों के माध्यम से भारतीय नौसेना को नई शक्ति प्रदान की है। ये भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की नई शुरुआत थी। आगे चलकर कई प्रसिद्ध युद्धपोत श्रेणियां विकसित हुईं। इसका मतलब है कि माझगांव डॉक का भारत को दुनिया के बड़े युद्धपोत निर्माताओं की श्रेणी में पहुंचाने में एक बड़ा और सराहनीय योगदान रहा होगा।
3: लेकिन बेटा, एक प्रश्न अभी भी बाकी है जो तुम पूछना भूल गई हो।
2: अब कौन सा प्रश्न है दादाजी?
3: वो ये कि आखिर इतना विशाल युद्धपोत बनता कैसे है? क्या इसे किसी कार की तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है?
2: सच में दादू, मैं आपसे ये वाला सवाल बस पूछने वाली थी कि एक युद्धपोत को किसी इमारत जितना बड़ा होता है, उसे आखिर बनाया कैसे जाता होगा?
3: लेकिन तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछ लिया। युद्धपोत बनाना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में गिना जाता है बच्चे।
2: इसका मतलब ये किसी एक इंजीनियर के बस की बात तो नहीं है दादाजी?
3: अरे नहीं बिटिया, एक युद्धपोत के निर्माण में हजारों लोग मिलकर काम करते हैं। नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, वेल्डर, टेक्नीशियंस, गुणवत्ता विशेषज्ञ और कई सारे वैज्ञानिक।
2: दादू, जब मैं इतने बड़े बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में आपसे सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या साधारण परिवार का कोई बच्चा भी भविष्य में ऐसे बड़े संस्थान का हिस्सा बन सकता है?
3: क्यों नहीं बिटिया, ये सभी लोग एक साधारण परिवार से ही आते हैं।
0: दरअसल माझगांव डॉक BEL, हाल DRDO, इसरो, इन सभी संस्थानों की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा ही तो हैं। यहाँ काम करने वाले ये अधिकांश वैज्ञानिक, इंजीनियर और अधिकारी कभी तुम्हारी तरह ही स्कूल में पढ़ने वाले आम बच्चे थे।
2: इसका मतलब कि मेहनत करके कोई भी यहाँ पहुँच सकता है?
0: बिल्कुल पहुँच सकता है। सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा से होकर गुजरता है बेटा।
2: समझ गई दादाजी। अच्छा ये बताइए ना कि नेवल आर्किटेक्ट क्या होता है?
0: नेवल आर्किटेक्ट बेटा जैसे कोई वास्तुकार भवन का नक्शा बनाता है, वैसे ही नेवल आर्किटेक्ट जहाज का नक्शा बनाता है। वो तय करता है कि जहाज कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना वजन उठाएगा और समुद्र की ऊंची लहरों का सामना कैसे करेगा।
2: मतलब जहाज का जन्म सबसे पहले कागज पर होता है?
0: हाँ, लेकिन पहले कागज पर होता था, अब आजकल कंप्यूटर पर बेहद आसानी से कोई भी डिजाइनर मिनटों में बना जाता है।
2: सही कहा दादाजी आपने, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है।
0: CAD, CAM इसी से संबंधित है बिटिया। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर की सहायता से किसी भी वस्तु का डिजाइन या नक्शा तैयार कर सकते हो। और वहीं पर CAM का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कंप्यूटर की सहायता से उस डिजाइन के अनुसार वस्तु का निर्माण कर सकते हो।
2: यानी दादाजी CAD और CAM में अंतर है। अच्छा इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना।
0: समझाता हूँ बच्चे। मान लो तुम एक घर बनाना चाहती हो, पहले उसका नक्शा बनाओगी, फिर उसी नक्शे के अनुसार निर्माण होगा। CAD कंप्यूटर पर नक्शा तैयार करता है और CAM उसी नक्शे के अनुसार मशीनों को निर्देश देता है, ऑर्डर देता है।
2: दादाजी इससे तो किसी भी निर्माण में गलती की संभावना बहुत कम हो जाती होगी।
0: हाँ बेटा, इसीलिए तो आज आधुनिक युद्धपोत अत्यंत सटीकता से बनाए जाते हैं।
2: और जब डिजाइन तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है दादाजी?
0: फिर आती है स्टील की बारी। विशाल स्टील प्लेटों को विशेष मशीनों से काटा जाता है।
2: ये किस तरह की मशीन होती है?
0: माझगांव डॉक में CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन जैसी अत्याधुनिक मशीन है बेटा।
2: दादू CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन, ये तो कोई कमाल की मशीन लगती है।
0: हाँ बेटा, ये वाकई कमाल की मशीन है। CNC का अर्थ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें कंप्यूटर मशीन को निर्देश देता है कि धातु या अन्य सामग्री पर कहाँ कट लगानी है, कितनी गहराई तक कट लगानी है और किस आकार में काटना है। यानी कमांड देने पर सब कुछ मशीन ही तय करती है।
2: मतलब मशीन इंसानों की कमांड पर काम नहीं करती बल्कि कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करती है।
0: हाँ बेटा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए सटीक निर्देशों के अनुसार इस मशीन से कटाई और निर्माण का काम बेहद तेज, सटीक और गुणवत्ता पूर्वक होता है। माझगांव डॉक की ये प्लाज्मा कटिंग मशीन स्टील, एल्युमिनियम और कई अन्य तरह की धातुओं को काट सकती है।
2: लेकिन दादू जहाज तो गोलाकार और घुमावदार होता है, फिर एक सीधी प्लेट से ये आकार कैसे बनता होगा?
0: बेटा यहाँ काम आती है प्लेट बेंडिंग मशीन। ये भारी स्टील प्लेटों को मोड़कर जहाज के ढांचे का आकार कर देती है।
2: यानी जैसे कागज मोड़ते हैं?
0: हाँ, सिद्धांत लगभग वही है, बस यहाँ कागज की जगह कई टन वजनी स्टील प्लेट होती है।
2: और फिर इन टुकड़ों को कैसे जोड़ते होंगे?
0: वेल्डिंग के द्वारा।
2: वेल्डिंग? हाँ, ये काम तो मैंने कई बार होते देखा है दादाजी, हमारे लोहा मार्केट की कई लोहा दुकानों पर। लेकिन दादू जहाज को जोड़ने के लिए तो ये बहुत ही सावधानी से किया जाता होगा।
0: बहुत सावधानी से किया जाता है बेटा, यदि वेल्डिंग कमजोर हो तो पूरा जहाज खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए माझगांव डॉक में सैकड़ों अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीनें काम करती हैं।
2: दादू ये तो मुझे समझ में आ गया, अब आप मुझे स्टील्थ युद्धपोत के बारे में बताइए।
0: स्टील्थ का अर्थ है बेटा दुश्मन की नजर से यथासंभव छिपा रहना।
2: दादू इतना बड़ा जहाज भला छिपाया कैसे जा सकता है?
0: पूरी तरह नहीं छिपता, लेकिन उसकी डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि रडार पर उसका संकेत बहुत कम दिखाई दे।
2: जैसे कोई जादू?
0: ये जादू नहीं है बेटा, विज्ञान है। रुचि बेटा तुमको पता है भारत का पहला स्वदेशी स्टिल्ट फ्रिगेट था INS शिवालिक,
3: इसका निर्माण माझगांव डॉक में हुआ था।
2: दादू, ये हमारी विशेष उपलब्धि थी।
3: बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया के केवल कुछ ही देश ऐसी तकनीक विकसित कर पाए थे जो इसके निर्माण में उपयोग की गई थी।
2: दादू, क्या केवल इंजीनियर ही जहाज बनाते हैं?
3: नहीं, युद्धपोत निर्माण एक टीम वर्क है। इसमें नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर, इन सबके विशेषज्ञ लगे होते हैं बेटा। फिर पाइपिंग विशेषज्ञ, गुणवत्ता निरीक्षक, डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सबसे बेहतरीन टेक्नीशियंस, ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं।
2: मतलब हर व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: हाँ, एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है और एक पूरे जहाज को डुबा सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा।
2: दादू, यदि कोई छात्र ऐसे जहाज बनाने में अपना योगदान देना चाहे तो उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए?
3: उसे पढ़ना चाहिए गणित, भौतिकी और विज्ञान की मजबूत नींव बनाना चाहिए। फिर नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय चुने जा सकते हैं।
2: दादू, क्या लड़कियां भी इस क्षेत्र में जा सकती हैं?
3: क्यों नहीं जा सकती, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती बेटा।
2: सो तो है।
3: क्यों नहीं बेटा, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती। भारत की अनेक महिला इंजीनियर युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: दादू, क्या आत्मनिर्भर भारत में माझगांव डॉक की बड़ी भूमिका है?
3: बहुत बड़ी। जब हम अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां स्वयं बनाते हैं तो विदेशों पर निर्भरता कम होती है, देश का धन बचता है, नई तकनीक विकसित होती है और हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।
2: दादू, रोजगार तो समझ में आता है मुझे, लेकिन एक डॉक यार्ड देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता होगा भला?
3: बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हो। देखो बेटा, एक युद्धपोत केवल लोहे की चादरों से नहीं बनता, उसके लिए इस्पात, विद्युत उपकरण, केबल, रडार, इंजन, कंप्यूटर प्रणालियां और हजारों छोटे बड़े पुर्जों की आवश्यकता होती है।
2: मतलब एक जहाज के निर्माण से बहुत सी दूसरी कंपनियां भी जुड़ जाती होंगी।
3: बिल्कुल, जब माझगांव डॉक किसी युद्धपोत का निर्माण करता है तो देश भर की अनेक उद्योग इकाइयों, आपूर्तिकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों को भी काम मिलता है।
2: यानी लाभ केवल डॉक यार्ड को नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र को होता होगा।
3: हाँ, सही कहा बेटा, इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, नए कौशल विकसित होते हैं और देश के भीतर ही तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ती जाती है।
2: और यदि वही युद्धपोत विदेशों से खरीदा जाए तो?
3: तब बेटा अधिकांश धन दूसरे देश की कंपनियों और उद्योगों के पास चला जाता है। लेकिन जब निर्माण भारत में होता है तो वही धन भारतीय उद्योगों, भारतीय कामगारों और भारतीय वैज्ञानिकों के विकास में योगदान देता है।
2: यानी एक युद्धपोत का निर्माण केवल सुरक्षा का विषय नहीं है दादाजी, बल्कि आर्थिक विकास का भी विषय है।
3: हाँ बेटा, यही कारण है कि माझगांव डॉक जैसे संस्थान देश की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: अब समझ में आया आपकी रुचि को कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल अपने लिए कोई निर्माण करना नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए अवसर पैदा करना भी है।
3: शाबाश, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला बच्चे।
2: दादू, युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, ये भी मुझे समझ में आया है। उसमें वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और देशभक्ति की भावना भी जुड़ी होती है।
3: बिल्कुल बिटिया, और यही कारण है कि माझगांव डॉक को राष्ट्र का पोत निर्माता कहा जाता है।
2: अच्छा दादू, क्या ऐसी कोई कहानी आप मुझे सुनाना चाहेंगे जो विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सके?
3: हाँ बेटा, कई साल पहले एक युवा इंजीनियर ने शिपयार्ड में प्रशिक्षण शुरू किया। वो एक छोटे से कस्बे से आया था। शुरुआत में उसे विशाल मशीनों और बड़े जहाजों को देखकर डर लगता था। उसे लगता था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता, कुछ ना कुछ नया करता रहता। वरिष्ठ इंजीनियरों से मार्गदर्शन लिया और कुछ वर्षों बाद वही युवक एक महत्वपूर्ण युद्धपोत परियोजना की टीम का हिस्सा बन गया।
2: मतलब दादू, आत्मविश्वास और मेहनत बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल
2: दादू, सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना।
3: अब समझी बिटिया रानी, मैं बार बार क्यों कहता हूँ। अच्छा चलो अब वापस चलें, शाम होने वाली है। भाई तुम्हारे मम्मी पापा रिसोर्ट में हमारा रास्ता देख रहे होंगे। और बेटा अभी तो हमें पूरा का पूरा गोवा घूमना है।
2: समझ रही हूँ मैं आपको, रिसोर्ट में क्यों ले जाना चाहते हैं आप, आपकी चाय का वक्त भी है। वैसे दादू मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अगली बार आप किस संस्थान के बारे में बताएंगे।
3: तुम विषय चुनो और उसके बारे में बताने का काम मेरा है रुचि बेटा।
2: ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं।
3: चलो बेटा।
1: श्रोताओं, माझगांव डॉग की कहानी हमें बताती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और श्रमिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। समुद्र की लहरों पर तैरते युद्धपोत केवल जहाज नहीं होते, वे भारत की शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के प्रतीक होते हैं। इसी संदेश के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना।
3: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं हमारे स्वातंत्र समर की कुछ जानी अनजानी घटनाएं और क्रांतिकारी शहीदों की प्रेरक कथाएं।
2: और आपके लिए इस कार्यक्रम में होते हैं मधुर देशभक्ति गीत और राष्ट्र नायकों के प्रेरक प्रसंग। तो इतिहास, आज हम किस महान हस्ती की बात करेंगे आजाद हिंद में?
1: आज हम बात करेंगे नए मध्य प्रदेश के निर्माण के सूत्रधार और प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह पंडित रविशंकर शुक्ल जी की, जिनका जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में एक समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था और 31 दिसंबर 1956 को इनका स्वर्गवास हुआ था।
2: पंडित रविशंकर शुक्ला जी के पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ला और माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। रविशंकर जी ने 4 वर्ष की आयु में सागर के सुंदरलाल पाठशाला में दाखिला लिया। ब्रिटिश राज में ये पाठशाला सीपी में स्थित 6 शालाओं में से एक थी। इसी पाठशाला से 8 वर्ष की आयु में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद रविशंकर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर हाई स्कूल से पूर्ण कर ली और जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की पढ़ाई के लिए वे नागपुर चले गए। नागपुर में पढ़ते हुए शुक्ला जी राष्ट्रीय आंदोलन के निकट आए और ऐसा कह सकते हैं कि यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई।

0: स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने नौकरी ढूंढना आरंभ की। उन्हीं दिनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भयंकर दुर्भिक्ष फैला हुआ था और शुक्ला जी को दुर्भिक्ष के विशेष अधिकारी के रूप में शासकीय सेवा में लिया गया। वोडरा कैंप में आपकी पदस्थापना की गई। यह स्थान सिरपुर से 12 किलोमीटर दूर है। वो उनका कराहती मानवता से पहला साक्षात्कार था। छत्तीसगढ़ की दुर्भिक्ष से पीड़ित जनता को सहायता पहुंचाने की बजाय शासकीय अधिकारी और ठेकेदार उसे लूटने में लगे हुए थे। ये सब देखकर पंडित जी बहुत व्यथित हुए और उनके अंतर मन में जो भावनाएं अंकुरित हुईं, उसने ही आगे चलकर राष्ट्र सेवा का विशाल वृक्ष रूप धारण किया।
1: इसके उपरांत पंडित रविशंकर शुक्ला जी कुछ समय तक गजेटियर विभाग से भी संबद्ध रहे। उन्होंने नायब तहसीलदार और मुंसिफ के पदों पर भी कार्य किया। 1901 में शासकीय सेवा छोड़ने के बाद अध्यापक का पेशा अपना लिया और जबलपुर के हितकारिणी हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार की। 1902 में आपका विवाह हो गया। जबलपुर में अध्यापन के साथ साथ आपने कानून का अध्ययन भी शुरू किया और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद खैरागढ़ हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक भी बन गए।
0: 1904 में वे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने बम्बई गए। बम्बई में उन्हें महात्मा गांधी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गांधी जी ने इनके व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनांदगांव में वकालत शुरू की। इनके अथक परिश्रम और ईमानदारी ने अपना रंग दिखाया और शीघ्र ही इनकी गणना रायपुर के चोटी के वकीलों में की जाने लगी। जिस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने वकालत आरंभ की, उस समय देश में राष्ट्रवाद की लहर आई हुई थी। सारे देश ने अंग्रेज शासकों के खिलाफ कमर कस ली थी। बंग भंग की याद अभी ताजा थी। बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय होता जा रहा था। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर लाल बाल पाल की तिकड़ी छाई हुई थी। सूरत के ऐतिहासिक अधिवेशन में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ठाकुर हनुमान सिंह और श्री लक्ष्मण राव जी ने तिलक के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की
1: और पंडित रविशंकर शुक्ला जी भी राजनीति में सक्रिय हो गए। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय प्रगति और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के अपने अभियान शुरू कर दिए थे और सामाजिक उत्थान के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया। असहयोग आंदोलन के समय पूरा देश महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह में भाग लेने के लिए एकजुट हो गया था। विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर आ गए और वकीलों ने कचहरियों का बहिष्कार शुरू कर दिया। अब तक पंडित रविशंकर शुक्ल जी का अधिकांश समय सामाजिक कुरीतियों से जूझने में जाता था। अब गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त कर इन्होंने राजनीति को अपनी पहली जरूरत बना लिया।

0: असहयोग आंदोलन के वापिस लिए जाने के बाद मार्च 1922 में रायपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के समाचार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। शीघ्र ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी की गिनती प्रदेश के शीर्ष नेताओं में होने लगी। इन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। नवंबर 1933 में गांधी जी ने महाकौशल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, जबलपुर और सागर जिलों में गए और इस दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल जी महात्मा गांधी जी के साथ ही रहे। दोनों नेताओं ने 600 मील से अधिक की यात्राएं की। 1946 में जब केंद्रीय और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, जिसमें से मध्य प्रांत में कांग्रेस की सफलता का श्रेय पंडित रविशंकर शुक्ल जी को जाता है। 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: शुक्ल जी ने मध्य क्षेत्र की रियासतों के भारत में विलीनीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और विलीनीकरण के बाद नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। नया राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने शपथ ली।
0: मध्य प्रदेश के निर्माण के सूत्रधार और मध्य प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह पंडित रविशंकर शुक्ल उन महान विभूतियों में से हैं जिनका पुण्य स्मरण इस संसार में सदैव होता रहेगा। अपने आत्मीय जनों में कक्का जी के नाम से विख्यात पंडित रविशंकर शुक्ल जी अपने अंतिम क्षणों तक मध्य प्रदेश की सेवा में ही रत रहे और 31 दिसंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी का देहावसान हो गया। आज भी मध्य प्रदेश के निर्माण में उनकी भूमिका विस्मृत नहीं की जा सकती। ऐसी महान विभूति को हमारा सादर नमन।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनिए कार्यक्रम कविताओं पर आधारित काव्य गुंजन।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष उसके जन्म का वह रहस्य उद्घाटित किया जिसने वर्षों से दबे हुए घावों को फिर से हरा कर दिया। कर्ण की वाणी में पीड़ा थी, तिरस्कार की तपिश थी और उस पुत्र का मौन विद्रोह भी था जिसे संसार ने जन्म से पहले ही मानो किनारे कर दिया था। उसने जन्म देने वाली माँ से प्रश्न किए, समाज की कठोरता पर चोट की और राधा के वात्सल्य को अपने जीवन का सच्चा आधार बताया। अब काव्य कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां कर्ण केवल अपनी वेदना नहीं कहेगा बल्कि मित्रता, कृतज्ञता और अपने अटल धर्म पर ऐसा स्वर प्रकट करेगा जो इतिहास के आकाश में वज्र रेखा की तरह अंकित हो जाएगा। आइए सुनते हैं तीसरे सर्ग से भाग 5 को जहां कर्ण कृष्ण को कह रहे हैं,
4: पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है बढ़कर सोदर भ्राता से है, राजा रंक से बना करके यश मान मुकुट पहना करके बाहों में मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा, सच है मेरी है आस उसे मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर थाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेला खाया सौभाग्य सोयश उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है घनघोर प्रलय छाने को है तज उसे भाग यदि जाऊंगा कायर कृतघ्न कहलाऊंगा, कुंती का मैं भी एक तने जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा मन में वो यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला ये कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही ना सहूंगा विषम डंक अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई भी कहीं ना चूकेगा सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊंगा किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे आर्य कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही लज्जित होते हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता ना कर्ण दुर्योधन को पांडव ना कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है सूझता ना कुल का किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश सुयश क्या है? सिर पर कुलीनता काटी का, भीतर जीवन का रस भी का, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, कुल को खाते और खोते हैं।
2: श्रोताओं, दिनकर जी यहां ऐसे प्रतीत होते हैं मानो स्वयं हर पात्र की आत्मा में प्रवेश कर गए हों। कृष्ण की करुणा, कर्ण का कंपन और समय की थरथराती हुई प्रतीक्षा सब एक साथ धड़कते हैं। कृष्ण युद्ध का चित्र भी दिखाते हैं, रक्त की धार, विधवाओं की पुकार, अनाथ बच्चों की चीख और फिर शांति का स्वप्न भी रचते हैं, जैसे दो दर्पण सामने रख दिए हों, एक में विनाश और दूसरे में मिलन का आलोक। ये प्रसंग आज भी उतना ही सत्य है। जब हम अहंकार में निर्णय लेते हैं तब कोई भीतर से हमें पुकारता है, रुक जा, अभी भी समय है। पर क्या हम उस आवाज को पहचान पाते हैं? यही प्रश्न कर्ण के सामने है और यही प्रश्न हमारे सामने भी। अब देखना है करुणा की ये गंगा कर्ण के हृदय तट को भेद पाती है या नहीं।
3: श्रोताओं, जिसके हृदय में कृतज्ञता ही धर्म बनकर प्रतिष्ठित हो जाती है, वह अपने जीवन का मूल्य भी उसी ऋण के सामने तुच्छ मानता है। ऐसा मनुष्य संबंधों को अवसर के लिए नहीं त्यागता। आगे काव्य संवाद शेष है, लेकिन बात साफ है, यहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु प्रश्न ये है कि वास्तविकता किसे कहें। हर मनुष्य अपने अपने हिस्से का कर्ण है, अपनी अपनी कर्म भूमि में खड़ा, अपने निर्णयों के बोझ और संबंधों के ऋण के साथ। आज के समय में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ की तुला पर तौले जाते हैं ना, जब विश्वास लाभ हानि की गणना में खो जाता है, ऐसे युग में कर्ण एक तीखी रेखा की तरह उभरता है। वह अडिग है क्योंकि उसके लिए कृतज्ञता सौदे से बड़ी है। आइए हम दिनकर जी की इस भावपूर्ण काव्य कथा में कर्ण के भाव समंदर के साथ चलें। अब सुनते हैं तृतीय सर्ग का भाग 6, जहां स्वयं श्री कृष्ण साक्षी हो रहे हैं और प्रतिज्ञाओं की तरफ।
4: विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का था, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया।

0: उसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी नछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुरज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी ना सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा।
1: श्रोताओं, सूर्यपुत्र होकर भी छाया में पला वो महापुरुष नाम से नहीं, अपने कर्म से पहचाना गया, जिसने उपकार को ही धर्म बना लिया वो साधारण नहीं रह जाता, और कर्ण उसी असाधारणता का नाम है। उसके लिए वचन ही वेद है, कृतज्ञता ही तप है, और मित्रता ही उसकी मर्यादा। जन्म ने उसे पुकारा, राज्य ने उसे ललचाया, करुणा ने उसे समझाया, पर वो अडिग रहा। उसने सुविधा नहीं सिद्धांत चुना, अवसर नहीं उत्तरदायित्व चुना।
2: कर्ण के सामने अब ना राज्य का आकर्षण है और ना वैभव का स्वप्न, उसे चाहिए तो बस मित्रता का सहारा और अपने कर्तव्य की अग्नि में तपकर जीवन की प्यास बुझाने का अवसर। वह जानता है कि आगे रण है, संभव है विनाश हो, फिर भी उसके स्वर में डगमगाहट नहीं है, केवल धधकता हुआ संकल्प है। वह अपने सत्य पर अडिग है, अपने ऋण पर अटल है, और उसी दृढ़ता में उसकी महानता चमक उठती है। जिसे धूप ने पाला हो वह छांव से डर जाता है, जिसे जग ने ठुकराया हो वह नाम से डर जाता है। कर्ण हृदय में अग्नि लिए मुस्काता तो है, लेकिन भीतर कोई टूटा बचपन अब भी रोता जाता है।
1: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ कर्ण को केवल योद्धा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे मानवीय गरिमा का प्रतीक बना दिया है। जिस मनुष्य के लिए वचन ही प्राण बन जाएं, उसे संसार हरा सकता है, छोटा नहीं कर सकता। कर्ण का यही तेज इस प्रसंग को कालजयी बना देता है। आइए बढ़ते हैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, जहां कर्ण का तेज, उसका त्याग और उसका अटल संकल्प इतिहास के आकाश पर अमिट रेखा बनकर उभरता है। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ।
0: तुच्छ है राज्य, क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ पल विलास, पर वो भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से भी ना कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाव्य शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन,
3: मानव होता निज तपशील, सत्ता क्रीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझा वातों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय चुड़ाते हैं। मैं करुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोर। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, हां एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रही है, वैसे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में विहिरे, भूतल में दिव्य प्रकाश बने।
2: रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले,
4: वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।
2: और फिर जैसे समय स्वयं ठिठक गया हो, रथ के पहिए स्थिर, दिशाएं मौन, वायु निश्वास रोके खड़ी, ऐसा लगा मानो काल भी उस क्षण के आगे नतमस्तक हो गया हो, सूर्य पुत्र की दृढ़ता के आगे आकाश स्वयं झुक गया, और पृथ्वी ने उस संकल्प को अपने हृदय में अंकित कर लिया। कर्ण का चरित्र जितना तेजस्वी है उतना करुण भी, वह जानता है कि जिस पथ पर वह चल रहा है वहां पुष्प नहीं शूल बिछे हैं, फिर भी वह लौटता नहीं, क्योंकि कुछ लोग विजय पाने के लिए जन्म नहीं लेते, वे मर्यादा निभाने के लिए जन्म लेते हैं। आज के समय में जहां मनुष्य स्वार्थ की नाव पर बैठकर संबंधों की नदी पार करना चाहता है, वहां कर्ण किसी प्राचीन शंख नाद की तरह सुनाई देता है, जैसे कह रहा हो, उपकार का ऋण शब्दों से नहीं जीवन से चुकाया जाता है।
4: कृष्ण की दृष्टि गहन उठती है, वे जानते हैं ये केवल एक योद्धा का निर्णय नहीं, इतिहास की धुरी का घूम जाना है। कर्ण शांत है, पर उसकी शांति में महाप्रलय की आहट छिपी है। श्रोताओं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण की इस काव्य यात्रा में मानो स्वयं को पूरी तरह अर्पित कर दिया है। उनकी लेखनी में ऐसा ओज है, ऐसा तेज है कि कथा स्वयं केवल इतिहास नहीं रहती, जीवन का दर्पण बन जाती है। प्रत्येक पंक्ति हमें झकझोरती है, सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने संकल्प पर अडिग हो जाए तो परिस्थितियां भी उसके आगे सिर झुका देती हैं।
2: दिनकर जी चाहते तो किसी विजयी प्रतिष्ठित पात्र को अपना नायक बनाते, किंतु उन्होंने चुना कर्ण को, वंचित, उपेक्षित, परंतुत। यही उनकी दृष्टि की व्यापकता है। श्रोताओं, रश्मि रथी में कर्ण केवल पात्र नहीं, मानवीय गरिमा का प्रतीक बन उठता है। दिनकर स्वयं सारथी बनकर उसके रथ को शब्दों की दिशा देते हैं और कर्ण उस रथ का रथी बनकर इतिहास के आकाश पर अमिट रेखा खींच देता है। इसी मार्मिक ऊंचाई पर तृतीय सर्ग का समापन होता है। यही शब्द थम जाते हैं पर संकल्प अमर हो जाता है। अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है काव्य गुंजन में रश्मि रथी की इस अद्भुत यात्रा से आपको जीवन के कुछ अनमोल सूत्र अवश्य ही मिल रहे होंगे। यही इस काव्य की शक्ति है। ये हमें केवल कथा नहीं सुनाता, बल्कि हमारे भीतर छिपे तेज, साहस और स्वाभिमान को पहचानने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, रश्मि रथी के इस अद्भुत रथ पर सवार दिनकर जी के रचे इस ओजस्वी मार्ग से गुजरते हुए मन कह उठता है, जिसे समय ने ठुकराया था वह कालजयी बन बैठा, जो जीवन भर अकेला था वही लोग हृदय में बैठा। नभ का सूर्य ढल भी जाए तो ज्योति कहाँ मर पाती है, कर्ण सरीखे पुरुषों की गाथा अमरत्व कहलाती है।
4: श्रोताओं, जीवन केवल सुख की सरिता, केवल छाया, केवल मान नहीं, ये तो विषपान का तप भी है। ये केवल मधुमास नहीं जो विपदा के नागपाश में भी अपना धैर्य संभाल सके, जो टूटे फिर भी भीतर से अपने तेज को जगा सके। श्रोताओं, तृतीय सर्ग यहीं अपने चरम भाव पर पहुंचकर विराम लेता है, पर ये विराम वैसा नहीं जहां ये काव्य कथा थम जाए। ये तो उस श्वास जैसा है जो तूफान आने से पहले वातावरण में भर जाती है। आगे चतुर्थ सर्ग में नियति और अधिक विकराल रूप धारण करेगी, संबंधों के आवरण हटेंगे, युद्ध की छाया और सघन होगी और कर्ण का व्यक्तित्व एक नए आलोक में प्रकट होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे रश्मि रथी की उसी महायात्रा के अगले सोपान के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे।
2: जी हाँ, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। श्रोताओं, आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
4: मैं संदीप शर्मा
5: और मैं दीपक नेमा।
2: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा।
4: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना। बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें, कल सुबह प्रातः सुनिए 7 बजे जीवन सौरभ प्रकृति से जुड़िए। अक्षय निधि सुनेंगे आप 7:10 पर। 7:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम। 8 बजे वतन का राग पिंगली वेंगैया पर आधारित है। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी गुप्त धन मुंशी प्रेमचंद जी की। 9 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम कला कल्लोलनी। 9:30 पर विशेष कार्यक्रम श्री राम परिहार नर्मदा आंचल की मूरत और अमृत धरोहर पर होगा केंद्रित। 10 बजे परिक्रमा सुनिएगा कार्यक्रम। 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद पेश किया जाएगा नित्यानंद साहक की शहादत पर आधारित है। 11 बजे आप कार्यक्रम सुनेंगे शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आप मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। 11:30 पर सुनिएगा युग प्रवर्तक विवेकानंद। और 12 बजे आप सुनेंगे भारत भारती और साथ में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी के। तो ये थी हमारी कल प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।